0: और अब कैल्शियम कैसे हमें फायदा मंद कर है, और हम दही से इसको पूरा कमी कर सकते हैं कैल्शियम की?
1: जरूर, हमारे सुनने वालों भी इस बात को जानते हैं कि ज्योति का प्रकाश का यही लक्ष्य है कि हमारे जीवन का ज्योति जो जल रहा है उसमें कम से कम और सा प्रकाश आए। और जैसे कि आप भी इस कार्यक्रम में सहयोग देते हैं और अपने ओर से और भी प्रकाश डाल रहे हैं, तो हमारे सुनने वालों भी इस बात को सुन करके जरूर प्रसन्न होंगे। हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे और फिर गीत के बाद हम फिर जुड़ जाएंगे आपके साथ। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है सुनने वालों, और कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो इस समय ब्रॉडकास्ट किया जाता है।

0: हो, जैसे कि अभी आपने सुने, और जा कर के और प्रोटीन और कैल्शियम जो होते हैं हमारे शरीर के कितने ज़रूरत पाते हैं। अनुराधा जी जो इसके बारे में जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप अपना और संदेश को आगे रखिए।
1: तो सुनने वालों, आप अभी तक ये प्रोटीन और कैल्शियम तो आपने समझ लिया कि ये हमारी डाइट में रोज कितने जरूरी हैं, और अब सुनते हैं कि क्या तीसरी चीज है जो हमें अपना खान पान में हमें शामिल करनी चाहिए। तो वो है फाइबर। फाइबर आपको पता है, फाइबर, हाई फाइबर फूड खाना चाहिए। फाइबर क्या होता है, किस में होता है, कौन सी ऐसी चीज है जिस जो इसमें फाइबर इतना होता है कि जो 60 साल की उम्र वाले ऊपर वाले लोग हैं उनको अपना ये रोज खाना चाहिए। वो है ब्रोकली। आपको पता है ब्रोकली, ब्रोकली खाने के क्या फायदे होते हैं? आप सबको पता है जो ब्रोकली बाजार में मिलती है, बहुत ये एक तरह से ये गोभी की फैमिली से होती है, कॉलीफ्लावर की फैमिली से होती है। तो पर ब्रोकली में बहुत फायदेमंद इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये हाई फाइबर फूड है। बूढ़े लोगों को ब्रोकली का सेवन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ब्रोकली ना सिर्फ हाई फाइबर फूड है जो पाचन को सही रखती है, बल्कि ब्रोकली में मौजूद न्यूट्रिशन हार्ट डिजीज, डायबिटीज और आंखों की समस्याओं से बचाव भी देते हैं। तो ये तो आपने सोचा होगा कि ब्रोकली किसी को तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत लोग को लगता है कि ओ ये हमें पसंद नहीं है, पर ये याद रखें कि ब्रोकली में कितना कुछ इसमें गुण है, ये कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज और आंखों की समस्याओं से आपको बचाव हो सकता है। बुढ़ापे में आप अगर हार्ट पेशेंट हैं तो ये तो सबसे सुपर फूड कहलाता है, और जिनको डायबिटीज है क्योंकि इसमें शुगर नहीं होती ज्यादा, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। और जिनको आंखों में कोई भी समस्याएं हैं, आपकी आंखें उम्र के साथ कमजोर हो जाती हैं, तो ये तो नहीं कहेंगे कि आपको चश्मा नहीं पहनना पड़ेगा, पर ये जरूर है कि ब्रोकली खाने से आपकी आंखों की नसों में इससे ताकत मिलती है और आपकी आंखें ज्यादा कमजोर नहीं होंगी और आप हेल्दी रहेंगे। ब्रोकली के अंदर आपको पता है कि इसमें इतना फाइबर होता है, इसके अंदर फाइबर समेत विटामिन ए, तो विटामिन ए, विटामिन के और पोटेशियम, विटामिन सी जैसी न्यूट्रिएंट्स से ये भरपूर है। हम तो सोचते थे कि केवल ये हाई फाइबर फूड है, पर हाई फाइबर फूड में इसमें ये सोचिए कितना फायदेमंद खाना है कि अगर आप ब्रोकली खाएं तो इसमें आपके बॉडी में विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, बायोएक्टिव कंपाउंड जैसे कई पोषक तत्व होते हैं

0: और फिर मैं आगे आपसे चर्चा जारी रखूंगी।
1: और अनुराधा जी बता रहे थे किस कुछ के बारे में, तो उसको हम यहाँ से जरूर से आगे में सुनने गए अनुराधा की मुखारविंद से। तो अनुराधा जी और आप बताइए।
0: तो अभी हम सुनने वालों को खाने के फायदे बता रहे हैं कि क्या क्या खाना चाहिए जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। जो 60 साल की ऊपर वाले लोग हैं तो हमने प्रोटीन की बात कर ली, कैल्शियम की बात कर ली और हाई फाइबर फूड। और अब चलते हैं कि क्या ऐसी चीज खानी चाहिए जिससे कि हमें आयरन मिले। बुढ़ापे में देखा गया है कि खून की कमी होने की बहुत समस्याएं हो जाती हैं, लोगों को खून की कमी हो जाती है जो कि आम तौर पर शरीर में आयरन की कमी से होती है। इसलिए बुजुर्गों की डाइट में आयरन से भरपूर पालक, जो कि स्पिनच बोलते हैं, उसको शामिल कर लेना चाहिए। पालक में भरपूर आयरन होता है, वो रोज हम अगर पालक खाएं तो हमारे शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी। पालक में आयरन के साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फोलेट, प्रोटीन ये आदि से भरपूर होता है। स्पिनच तो भी एक सुपर फूड है जो हमें कितना कुछ आयरन देता है हमारे शरीर के लिए। यह हेल्दी फूड हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफी मददगार होता है। तो शांता जी, आप जैसे जानती हैं कि पालक आप कैसे भी खाएं, पालक पनीर के फॉर्म में खाएं या पालक को दाल में डाल के खाएं या पालक की पत्तियों का आप साग बना के खाएं, जैसी भी खाएं पर पालक जरूर अवश्य खाएं। ये बहुत हेल्दी फूड है और इसमें आयरन भरपूर भरा होता है।
1: तो जी जी हाँ, आयरन उसमें ढेर से है और सेहत के लिए हमारे बहुत लाभदायक है। तो लोग सोचेंगे कि पालक क्या है। पालक मेरे ख्याल से स्पेनासी है, बबली जी, स्पेनासी
2: सही बोला शांता जी, पिनासी कोई पालक कहते हैं।
1: अच्छा, नहीं क्योंकि मैं कभी भारत गई थी तो वो सब कहते थे पालक पनीर, पालक पनीर, मैं क्या मुंह बाकर ताकते थे पालक क्या है तो वो भी समझा नहीं पाते थे, पर हम समझ गए कि स्पेनासी को कहते हैं पालक। अनुराधा जी आप आगे जारी करें।
0: जी तो अभी मैं आपको जो मैं सुपर फूड के बारे में बता रही थी कि क्या खाएं, तो अभी हमने बात करी आयरन की कमी से हमारे शरीर में, क्योंकि आयरन हमारे शरीर को बहुत जरूरी होता है बुढ़ापे में, जिससे ब्लड बनता है, ब्लड सेल्स बनते हैं और इसकी कमी से शरीर हमारा कमजोर हो सकता है। तो पालक खाना बहुत ही आवश्यक है। आइए चलते हैं अगले चीज की, क्या खाएं जिससे कि हमारे बॉडी में ताकत बनी रहे। और ये आइटम है कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर में दही के साथ तो मिलता ही है, पर दूसरी क्या पदार्थ, क्या खाना खाएं जिससे उसमें कैल्शियम भरा होता है। तो बुजुर्ग लोगों को दूध अवश्य पीना चाहिए। अब बहुत लोगों को दूध नहीं पसंद होता है, मैं जानती हूं, वो चाय में डालकर दूध पी सकते हैं। गर्मी के टाइम में आप उसको दूध की रूह अफजा डालकर कुछ बनाकर पी सकते हैं, उसमें आम डालकर उसको दूध का मैंगो शेक बना सकते हैं, ये आप कैसे भी पिए, या उसमें चॉकलेट डालकर चॉकलेट मिल्क की तरह पिए पीजिए, या कॉफी डालकर कॉफी, उसका दूध का फ्लेवर अच्छा बना लीजिए, पर दूध बहुत ही जरूरी।

0: फ्री है। शांता जी, आप को आप मानती हैं कि दूध जरूरी है?
1: जरूर मानती हूँ, दूध जरूरी है, पर आप एक शब्द ने इस्तेमाल की है, लस्सी। लस्सी को कैसे कहते हैं? लस्सी यानी कि योगर्ट।
2: अनुराधा जी, लस्सी कैसे बनती है आप बताइए जरा।
0: तो बबली जी, तो लस्सी तो हम पहले बता रहे थे कि दही से बनती है लस्सी, और जो उसमें भरपूर कैल्शियम है, और दूसरी जो चीज है दूध, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं कि दूध से हम क्या बना सकते हैं जिससे कि हम उसमें से पीने से हमारे शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम भरपूर हमारे जाए, तो ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। इसमें आप जानते हैं दूध में आप इसको आम मिलाकर, आम का गूथा जो होता है पल्प, उसको मिलाकर हम मैंगो शेक बना सकते हैं। तो मैंगो शेक बहुत ही आसान है, आप एक ग्लास दूध लीजिए, थोड़ा सा मैंगो पल्प लीजिए, ताजा मैंगो है तो उसको छीलकर उसका गूदा निकालकर थोड़ा डाल दें मिक्सर में, और बस चला लें, और इतना स्वादिष्ट मैंगो ड्रिंक बन जाएगा।
3: अनुराधा जी, जैसे आप कह रहे हैं तो कुछ ख्याल आ रहा है हमारे बचपन का, और बचपन में जो हम सब घर पे जब घर घर पे और ख़रीदने लगा, परिवार में आने लगा रेफ्रिजरेटर जो कहते हैं ना कूलकास्ट, तो उस समय पे हम लोगों ने वहाँ तो लस्सी सूरीनाम में हम शायद नहीं जानते थे, पर चीनी डाल करके और दूध में और उसे आइस ब्लॉक बनाया जाता था। शांता, नरियर, वो नरियर का दूध था, दूध के साथ। क्या आपने उस वो भी बनाए?
1: जी, हमने भी बनाए, और हमारे गांव में एक लड़का था तो नवजुक था, तो वो भी बना कर और बेचते थे शाम के वक्त में, दोपहर ऐसे जो होते गर्मी वक्त के वक्त में, तो वो बेचते थे, और घर पर भी हमारे मामा जी भी बनाते थे कोकोनट। वो कोकोनट कोकोस कच्चा पक्का कोकोस को गिरित के उसका दूध निकाल के, और पका हुआ दूध में और थोड़ा से क्लोरसल चीनी डाल के खूब घोर के और फ्रिज में धर देते।
2: हाँ,
1: अरे मुंह में पानी आ जाता
3: ये बात कह कर के, और लोगों को आप तकलीफ दे देते हैं शांता जी, क्योंकि बिल्कुल ये पुराने बातें और ख्याल आ जाता है, और यहाँ की वो स्वाद को, और पर कहने के तात्पर्य ये है कि वो भी ठीक होता है ना अनुराधा जी, कि कुछ भी और दूध में डाल करके, पर दूध प्रयोग करना बहुत आवश्यकता है।
0: जी संजय जी, आप पता है दूध में विटामिन डी बहुत भरपूर होता है, और उम्र बढ़ने के साथ शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसके कारण हड्डियों को कमजोर बनाने वाली ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी हो सकती है। जिस ये बीमारी है जिसमें घुटनों में दर्द हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो लेकिन अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस है, इसका मतलब जिनको दूध पीने से वो नहीं पी सकते, उनको वो टॉलरेट नहीं होता है, जो नहीं पी पाते उनको, तो उसको कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो यह हम क्या करें कि जिससे हम क्या पिए, अगर दूध नहीं पी सकते तो क्या पिए, क्योंकि ये डेयरी मिल्क गाय या भैंस का दूध की जगह हम क्या पिए जिससे कि हमें ये सब चीजें मिली जो दूध से है, तो वो है सोया मिल्क। सोया मिल्क ये भी बहुत फायदेमंद होता है, और इसमें हमें भरपूर कैल्शियम और विटामिन डी मिलता है। आप चाहते हैं कि उम्र के साथ आप स्वस्थ रहें तो दूध पिए या सोया मिल्क पी सकते हैं।
3: सुनने वालों, यहाँ जबकि कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश में आज का विषय जो स्वस्थ या रेनौदर, जो अपना स्वस्थ और कैसे और ध्यान दे सकते हैं, और हमारे जो इस पे ज़्यादा तादाद में और संदेश दे रहे हैं वो है अनुराधा जी, जो अपने ओर से और ये बढ़िया संदेश जो रख रहे हैं। हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे और गीत के बाद अभी आपके साथ फिर दोबारा जुड़ जाएंगे।
1: हाँ जी, तो गीत के बाद हम वापस आ गए हैं। यही उम्मीद है कि आपको गीत पसंद आए होंगे, और जो यहाँ हम आपको भी बता रहे हैं कि 60 बरस के ऊपर आप कैसे अपना शरीर को भी ध्यान में रख सकते हो, और वो भी हमारे अनुराधा जी की आवाज़ में, उनके आवाज़ से हम सुनते हैं कि क्या क्या आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। अनुराधा जी, आप आगे बढ़िए।
0: जी, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या खाना खाएं, क्या चीजें हम अपने डाइट में इंक्लूड करें जिससे कि हम स्वस्थ रहें, और ये बातें सबके लिए लागू होती हैं, परंतु 60 साल के उम्र से ज्यादा उम्र वाले लोगों को ये खाने पीने का अगर ध्यान रखें तो वो अपना जीवन स्वस्थ रख सकते हैं। तो आगे चलें, तो चलते हैं और देखते हैं कि और क्या चीजें हैं जो हम खाएं, रोज हमें अपने खान पीने में डालनी चाहिए। वो है सूखा मेवा और बीज। तो आप जानते हैं ड्राई फ्रूट्स, जिसको हम कहते हैं ड्राई फ्रूट्स या सूखा मेवा और बीज, यानी कि सीड्स।
1: अनुराधा जी, मेवा का मतलब मेवा क्या होता है?
0: जी, मेवा है अखरोट, बादाम, काजू, ये होता है मेवा। ये किशमिश, ये सब बहुत फायदेमंद होता है, और खास तौर की अखरोट होता है जिसको कहते हैं वॉलनट।
1: कोई भी अखरोट वॉलनट है, किशमिश यानी कि रसायन है
0: जी, रीजंस। तो बीज, आप कोई भी बीज भी खाएं, ये बहुत फायदेमंद करता है। नट्स कोई भी फॉर्म में, अक्सर बुजुर्ग लोग सूखे मेवा और स्वास्थ्य वर्धक बीजों का सेवन करने नहीं करते हैं, इसलिए हमने बुजुर्गों की डाइट में इन्हें शामिल करना चाहिए क्योंकि ये बहुत फायदेमंद है। बादाम, अखरोट, काजू, सूरजमुखी के बीज, ये सनफ्लावर सीड्स जो कहलाते हैं, ये आदि खाने से उम्र बढ़ने के कारण होने वाली आपकी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम से बचाव किया जा सकता है। आपको पता है शांता जी, बबली जी, कि 60 साल की उम्र के बाद टाइप 2 डायबिटीज होने की लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज, नसों की समस्या, नर्व्स बॉडी में नर्व्स होते हैं, नसों की समस्या, कमजोर याददाश्त जिससे हम डिमेंशिया या अल्जाइमर जिस लोगों को हो सकता है, स्ट्रोक यानी कि हार्ट आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खतरा ज्यादा हो जाता है। तो इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं? अगर हम ये हाई प्रोटीन, हाई फुल कैल्शियम, हाई फाइबर फूड और आप हाई फाइबर और ये जैसे मेवा, ये काजू, बादाम, अखरोट, ये खाने से बहुत फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। तो शांता जी, आप बताएं आगे क्या हम करेंगे?
1: बस हम तो ध्यान लगा कर सुन रहे थे, और मेरे ख्याल से सभी सुनने वालों ने भी बहुत ध्यान से इसको सुन रही है, पर बबली जी उंगली उठा रही है कुछ कहने के लिए, तो जरूर हम बबली को यहाँ से भी सुनेंगे।
2: मेरा एक प्रश्न था अनुराधा जी, क्योंकि बड़ी उम्र में ये सब चीज़ें पचती भी नहीं हैं तो पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, तो उनको फिर ये चीज़ें कैसे खानी चाहिए?
0: ये आपने बहुत अच्छी बात कही बबली जी और शांता जी, कि बड़ी उम्र में ये कैसे खाएं। तो एक तरीका ऐसा होता है कि हम बादाम अखरोट, इसको पानी में भिगो कर रात को अगर हम भिगो दें पानी में, तो उसकी जो कहते हैं ना कि बादाम, ये अखरोट ये बहुत गर्मी चढ़ देता है, तो पर अगर इसको हम पानी में भिगो दें रात को और सुबह उठकर इसका हम बादाम का छिलका निकाल कर खाएं, तो ये बादाम हमें हमारे शरीर में बहुत ठंडक देता है। अखरोट, अखरोट तो आप उसको तोड़कर आप सुबह नाश्ते में दही का सीरियल या उसमें मिलाकर अखरोट को आप पीस कर आप दूध में मिलाकर आप उसका सेवन कर सकते हैं, वो बहुत फायदेमंद होता है। आप अखरोट है, आप खीर खाएं, कुछ बनाएं ऐसी चीज जिसमें आप ये सब खा सकते हैं। और बीज जो है ये सनफ्लावर सीड, ये सूरजमुखी के बीज, इसको तो आप एक चम्मच ऐसे ही थोड़ा सा एक चम्मच ऐसे ही डाल लें चलते फिरते नाश्ते के तौर से, आप एक चम्मच खा लें और इसका बहुत आपको फायदा होएगा। ये आपने सुना ना जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, नसों की समस्या, कमजोर याददाश्त, हार्ट अटैक, ये सब इससे आपको बचाव होएगा।
2: मैं सोचती हूँ राधा जी, अगर बुजुर्ग लोग पंजीरी बना के खाएं और उसमें ये सब चीजें पीस के खाएं तो उनको जल्दी पचेगी।
0: ये आपने बहुत अच्छी बात कही बबली जी। पंजीरी तो बहुत ही सबसे सही तरीका है खाने का, क्योंकि उसमें आप कई तरीकों के, कई किस्म के बादाम, किशमिश, अखरोट सब चीजें मिलाकर इसको कूट कर खाएंगे और आपको आसानी से पच भी जाएगा और स्वाद का स्वाद और हेल्थ की हेल्थ आपको उसमें मिलेगी। तो पंजीरी तो आप बता सकती हैं कैसे बना सकते हैं बबली जी?
2: हाँ जी जरूर, पंजीरी बनाना भी आसान ही है अनुराधा जी। जैसे मैं बनाती हूँ मैं अपना तरीका बता सकती हूँ, दूसरा तरीका तो नहीं मैं जानती
0: जी। बताएं कैसे बना सकते हैं पंजीरी?
2: हाँ जी, घी लेके घी को अच्छी तरह गर्म करें और आटा यानी पिसान और ये जितने भी आपने मेवे बताए ये सब मेवे उनको अच्छी तरह पीस लें, और वो जो भूरा चीनी होती है जिसको क्रिस्टल सैकर कहते हैं शांता जी, वो ले लें और अच्छी तरह आटा भून के उसमें फिर ये सब चीज़ें मिला के तो फिर उसको थोड़ी देर रख दें, तो फिर अगले दिन आप खा सकते हो। अगर वैसे खाने उसके लड्डू बना के भी खा सकते हो शांता जी। तो अगर लड्डू बना के खाने हैं तो लड्डू बना लो, अगर वैसे खानी है तो रोज़ सुबह 2-3 चम्मच खा सकते हो। और जिनके घुटनों में दर्द है और वो जो मेथे होते हैं मेथा दाना, वो भी पीस के डाल सकते हैं बीच में, तो उससे घुटनों का दर्द भी दूर हो जाएगा।
1: तो आप कब बनाओगे मेरे तो मेरे आप कब बनाओगे बबली जी?
2: क्योंकि यहाँ पर तो हमेशा ठंडा मौसम है, जब मर्जी हॉलैंड में खा सकते हैं। भारत में तो हमारी दादी हम बनवाते थे सर्दी के मौसम में ज़्यादातर, कि गर्मी में ये चीज़ें सब गर्म है तो गर्मी लगती है खाओ तो सर्दी में बनाते थे वो मेथे दाना डाल देते थे और हम बच्चे थे तो हमें कड़वी लगती थी। हाँ तो हमने थोड़ा हमारे बच्चों के लिए दादी ने मीठी बनवा देनी पंजीरी और अपने लिए कड़वी मेथे दाने वाले, क्योंकि हमारी दादी के घुटनों में दर्द रहता था। तो फिर सुबह रोज़ हमारी दादी खाते थे पंजीरी।
0: तो आपने ये तो बहुत ही अच्छा बताया बबली जी, और शांता जी आप भी बता रहे थे कि ये आप लोग कैसे क्या खाते थे बचपन में। ये पंजीरी सुनकर तो और लड्डू सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आने लगा।
1: तो वही तो मैं बबली को बबली से पूछ रही हूँ वो कब बनाएगा। हाँ
0: क्योंकि हम तो इसका इंतजार करते हैं कि कब घर में कोई पूजा हो या कोई त्योहार हो जिससे कि इसी बहाने हमें पंजीरी और लट्टू खाने को प्राप्त हो, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि मनपसंद चीज भी खाओ, उससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। क्यों ना इसी बात पर एक गाना हो जाए। शांता जी,
1: आपने गुजारिश की है तो जरूर से होगी, तो यहाँ से संजय जी भी तैयार कर रखी है। शांता जी के पिटारा से नहीं, आज संजय जी के पिटारा से निकाला जाता है। हाँ, तो ये गीत आपके लिए, आप सभी सुनने वालों के लिए।
3: सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत के बाद फिर हम सब कार्यक्रम को आगे और बढ़ा रहे हैं। अनुराधा जी, आप आगे और संदेश रखिए।
0: तो संजय जी, आप जैसे सुनने वालों को आप तो गीत पेश कर रहे हैं, और मैं उनके स्वास्थ्य के लिए है, उनकी अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे स्वस्थ रहे, बड़ी उम्र में उनको तकलीफ ना हो। तो मैं अभी तक सब बता रही थी कि क्या खाना चाहिए, तो आखिरी में ये जो एक सबसे महत्वपूर्ण खाने की चीज है वो है, वो हर घर में सबने खाई होगी, वो है खिचड़ी, वो है, और वो भी हरी मूंग दाल की खिचड़ी।
3: तो ये इसके बारे में तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मास्टर जी जो इस समय 8000 किलोमीटर दूर है और हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, तो हॉलैंड आकर उन्होंने हम सभी को खूब खिचड़ी खिलाया और इतना स्वादिष्ट खिचड़ी खिलाया कि आज तलक वो खिचड़ी का और अभी तलक वो याद आता है, और पता नहीं कब फिर दोबारा और जा कर के उतना स्वादिष्ट खिचड़ी हम सब खाएंगे। पर आगे संदेश रखिए अनुराधा जी।
0: तो देखिए, खिचड़ी तो बहुत प्रकार के, आप कितनी भी प्रकार की दालों से बन सकती है, पर बड़ी उम्र के जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनको चाहिए कि मैं हल्का कुछ खाऊं, तो सबसे अच्छा जो उनके लिए फायदेमंद चीज है वो हरी मूंग की दाल। देखिए, मूंग की दाल तो पीली होती है और दूसरी होती है हरी मूंग। बुढ़ापे में हरी मूंग दाल की खिचड़ी खाना काफी लाभदायक चीज है, क्योंकि हरी मूंग दाल की खिचड़ी ना सिर्फ पचने में आसान होती है बल्कि संतुलित वजन, बेहतर ब्लड सर्कुलेशन, भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन B1, जिंक जैसे कई सारे पोषक तत्व देना इसमें भरे होते हैं। तो आप ये सोचिए, मूंग की दाल तो लोग दाल तो खाते हैं, पर खिचड़ी खाने से, मूंग की दाल की खिचड़ी खाने से उनको कितना फायदा है। एक तो हल्की फुल्की होती है दाल, तो सहज स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। बबली जी, आप भी तो बनाती होंगी मूंग की दाल की खिचड़ी, तो आपको कैसा लगती है खाने में?
2: देखिए अनुराधा जी, हमारी मम्मी ज्यादातर पहले पीली दाल की खिचड़ी बनाते थे जब हम छोटे थे तो, और जब लोहड़ी आती है लोहड़ी पे मूंग की दाल की खिचड़ी बनती थी, तो उसको रात को बना के रख देते थे, सरसों का साग और खिचड़ी, फिर दूसरे दिन मकर संक्रांति वाले दिन ये चीज़ें खाते थे। खिचड़ी हाँ पसंद है, लेकिन जब बच्चे थे तो नहीं पसंद आती थी, लेकिन अब जब बड़े हुए तो पता चला कि खिचड़ी खानी बहुत ज़रूरी है, और अब तो मेरा बेटा भी पसंद करता है, पहले नहीं खाता था।
0: बबली जी ने तो बताया कि वो उनको उनका बेटा पहले नहीं पसंद करता था, खाता है। तो खिचड़ी हमारे में मानना होता था जब हम भी जब छोटे थे, खिचड़ी घर में तभी बनती थी जब घर में कोई बुजुर्ग है या कोई बीमार है। ये नहीं पता था कि खिचड़ी के क्या लाभ है, कितना अच्छी चीज होती है। जब आप, एक तो बड़ी आसानी से हजम हो जाती है। शांता जी, आप बताएं, आपको कौन सी दाल की खिचड़ी अच्छी लगती है खाने में?
1: कौन सी दाल की खिचड़ी मेरे को पसंद है? मैं, मुझे तो ये पता है, अगर शादी होता है ना, बाराती आता है, तो बारात जाने से पहले तो उनको खिचड़ी मिलते हैं खाने के लिए, है ना संजय जी?
3: बिल्कुल, जब बारात में बाराती पहले दिन में बारात हो आता था तो दीनी दिन और 24 पहले चल जाता था ना, पर जो बारात जो रात के लेकर आते थे तो और जाकर के रात के और जब कार्यक्रम पूरा हो जाए तो बारात में हम लोग जब जाए तो सवेरे पचलहरा और कहीं बांगी पे कहीं पायरा पे सोने को मिल रहा है, और उसके बाद में सुबह सुबह और बना करके खिचड़ी और माढ़ों में और खिलाते थे। तो उस समय तो जब छोटे थे तो अच्छा लगता था, वहाँ भी कुछ पैसा आदि भी मिलता था ना। पर कहने के तात्पर्य यह है कि हम सब ज़्यादा तादाद में खिचड़ी तभी खाते थे सूरीनाम में। और जैसे कि अभी आपने और सुना है कि खिचड़ी हमारे सेहत के लिए कितना ज़रूरत है, तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
0: जी संजय जी, बबली जी और शांता जी, कितना अच्छा लगा ये सब बताने पर कि क्या हमें खाना चाहिए। जो 60 साल की उम्र के लोग हैं उनको खास तौर से क्या चीज खानी चाहिए जिससे कि वो स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहेंगे तो उनकी आयु लंबी रहेगी और लंबी आयु रहेगी और वो चलते फिरते रहेंगे, अपने परिवार वालों से खुश होकर अच्छी स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो सुनने वालों, आप लोग याद रखिए ये चीजें जो हमने बताई, कैल्शियम, आपने प्रोटीन, हाई फाइबर और आयरन, ये सब चीजें हमने जो खाने से हमारे शरीर में क्या ये सब चीजें और स्पेशली मेवा ये सब खाने से हमें बहुत फायदा करता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसका ख्याल रखेंगे और ये खाना जब खाएंगे तो ये चीजें जरूर अपने डाइट में याद करके अवश्य खाएंगे।
1: शांता कारण जी, सुनने वालों, आपको हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने इस प्रोग्राम में भाग लिए है, दिल से सुने हैं, और स्वीकार कीजिए शांता की प्यार भरी राम राम नमस्कार हो जी।
0: तो सुनने वालों सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद, और आपको मैं ये सुनाना चाहूंगी, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। बहुत बहुत नमस्कार।
2: धैर्य रखो, निराश मत होना कभी, क्योंकि तुम्हें जिसने लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।
3: सुनो वालों, जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं, जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है, बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के कार्यक्रम में सहयोग दिए अनुराधा जी, शांता खेमई जी, बबली आसरा जी, राजेंद्र सिंह जी, और मैं हूँ आपका सेवक संजय। आशा ये रखता हूँ कि जरूर कुछ न कुछ संदेश आप तक पहुँचे होंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को नमस्कार।

किसी का पेट भरा पाए। क्या हम अपने बुजुर्गों के लिए कुछ कर पाए।

दिया है, जा दिए है अपने वतन तेरे लिए। सुन वालों, मैं हूं संजय और आपके साथ जुड़ गए हैं कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ। और ये प्रश्न रख दिया गया है कि क्या मैंने अपने जीवन जिए हैं अपने वतन के लिए, क्या किए हैं, क्या अपने औरों के लिए हमने कुछ किए हैं कभी। उस अंतर्गत में कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ और यहाँ तक भी कि कुछ संस्थाएं हैं जो अपने वतन के लिए कितना भीड़ भाड़ से काम करते हैं, उन सभी के लिए भी एक सुंदर सा गीत चलाने को कोशिश करूँगा।

जैसे कि हमें इस बात को भी पता है कि पाप शरीर नहीं करता है, विचारे हमारे करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं शरीर को धोते हैं। तो देखा जाए कि हम अपने समाज, अपने संस्कृति और अपने सभ्यता के लिए क्या किए हैं।

चलो जब देखा जाए कि सूरीनाम में कितना, जो हम सूरीनाम में हमारा जन्म हुआ, हम अपने सूरीनाम वतन के लिए और यहाँ रहते हैं हॉलैंड में, हम क्या किए हैं अपने वतन के लिए। संस्था जो मनाया गया सूरीनाम में इस समय पे खूब जोर तोर से काम करते हैं, FALS, एक संस्था जो अपने समाज के लिए जोर तोर से काम करते हैं, उसका मोटो यही है कि अंस्टर्क सामलेविंग दोर खुद लीडरशिप, अंस्टर्क सामलेविंग दोर खुद लीडरशिप, ये भी बहुत जरूरत है। और FALS के लिए जो इतना जोर तोर से काम करते हैं, उस अंतर्गत हम एक सुंदर सा गीत प्लेयर पे चुन करके रखे हैं।

चांद तारों सा देश है मेरा, इसका कहानी कहाँ मिट सकता है दोस्तों। तो देखा जाए कि हमारे रेडियो का जो डायरेक्टर है कुमार घिराव जी भी संस्था से जुड़े हुए हैं और अपने हाथ से मेहनत करवाते हैं FALS फोलक्स पार्टी लेफ बार सूरीनाम, एक संस्था जो न सिर्फ हमारे पुरखों के लिए पर जिनके जरूरत है और उनके लिए समाज सेवा के अंतर्गत जो FALS बनाया गया है उनमें खूब सहयोग देते हैं हमारे सभापति फाउन का डायरेक्टर श्रीमान कुमार घिराव जी, जो न सिर्फ हॉलैंड में पर सूरीनाम और इसी प्रकार से इंडिया में अपने ओर से सहयोग देते हैं।

क्या कभी आप अपने बच्चों के साथ या अपने भाई और बहन के साथ कभी सोचे कि क्यों ना हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और अपने औरों के लिए क्या कर सकते हैं? With my son, my power.

जिनका नाम कहा गया है कि नमामि गंगा। नमामि गंगा एक संस्था जो बनाया गया है, जिसे ये काम सौंपा गया है कि हम अपने पानी यानी कि जल में, कहीं कंडाल में तो कहीं जिसे कहते हैं गोत्रों और या नदी और समुद्र में, कहीं भी कोई प्रकार से ऐसा सामान ना छोड़े जो प्रकृति के लिए हानिकारक है। नमामि गंगा जो ऑपरेट हुआ है 2024 में,

0: कभी कभी हम लोग भी ऐसा काम करते हैं जो शायद हम सोचते हैं कि हम भगवान का नाम लिए, पूजा प्रार्थना आराधना किया और सामान कुछ उसमें फोली डाल करके और प्लास्टिक डाल करके जा करके उसे सिरवा दिया जाता है। तो दोस्तों सुनने वालों, इस बात पे ध्यान देना कि हमारे संस्थाएं जो बनाया जाता है और उसे उसका संदेश क्या है, उसमें हमारे प्रकृति के लिए क्या परिवर्तन होने वाला है, उस पे जरूर ध्यान दे, क्योंकि ये लक्ष्य रखे कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। और हम सब जब उस पे भी ध्यान देंगे कि कोई प्रकार से प्लास्टिक आदि जल में ना छोड़े जो जा करके ना फटेर हुए, जैसे कि प्लास्टिक फोली मेटल प्रोडक्शन मेटल का बनाया हुआ, और ये सब चीज़ें जल में ना छोड़े, कोई कोई कपड़ा आदि भी ले जा करके छोड़ते हैं। तो नमामि गंगा का यही लक्ष्य है कि हम अपने जो जल है और जा करके उसमें जो हम लोग कभी काल के छोड़ते आए हैं उस पे अब से परिवर्तन आ जाए। हम एक सुंदर सा गीत चुन करके रखे हैं।
1: सिरनम के गोद में जन्म लिया है, जलवायु अनसी

रॉबी उदित राम के आवाज में हम सब सुने सूरीनाम के हमारे कलाकार, और कहते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन दवाओं में से एक है जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी हम सब जब समझ जाए ना, जो भी इस दवा को एक बार ले लेता है फिर उसे कभी थकान नहीं होता है। तो ये जिम्मेदारी, हम इस पे थोड़ा से गौर करें कि हम क्या अपने जीना जी रहे हैं, क्या कोई जिम्मेदारी हम अपना निभाए या नहीं निभाए। देखा जाए कि सूरीनाम में भी एक मारियम बेरख में ना बयार्दन तहै सिम्बह ओपखरिख 25 नवंबर 2000 न्यू वोन सेंट्रम त मारियम बेरख। देखा जाए कि कितने लोग हैं जो ऐसे सोच रखते हैं कि हम अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, और ये सुंदर सा जो स्थान को और जो बना करके और रखा गया, जो त्वेदर्शन से बन के और तैयार हो करके आज वहाँ देखो कितने पुरखों और वहाँ जो उनके लिए व्यवस्था बनाया गया है। बयार्दन तहस सिम्भा के लिए एक सुंदर सा गीत अपने प्लेयर पे चुन करके रखा हूँ।

कि कल बुरा था आज अच्छा आएगा, वक्त ही तो है दोस्तों, यही वक्त है, रुक थोड़ी ही जाएगी। तो हम सब अपने वतन के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, या कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।

कहते अपने शब्दों पे ध्यान देना ना। अगर शब्दों के रेंज अच्छे हो तो लोगों का नेटवर्क कभी नहीं टूटता है।

दोस्तों इसी तरह से बनाया गया है भी संस्था विश्व हिंदू परिषद, संस्था विष्णु हिंदू परिषद, जिनका यही लक्ष्य है कि हमारे हिंदुत्व के लिए कुछ कर सके। वर्ल्ड हिंदू काउंसिल जिसे हम जानते हैं, फेहापे जिसे हम अफकोर्टिंग से जानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद,

2021 में बनाया गया संस्था श्री परमेश्वर ज्ञान यज्ञ, उसका लक्ष्य यह था कि समय महामारी का चल रहा है और क्यों ना हम एक ऐसा कार्य करें कि हमारे समाज को रक्षा हो सके। तो संस्था श्री परमेश्वर ज्ञान यज्ञ, जिनका सभापति देव जी जॉनी और मनोज जी के साथ मिलकर के एक ऐसा और कार्य को रचे थे और जो 7 दिवस के लिए यज्ञ को और करवाए थे, वो संस्था श्री परमेश्वर ज्ञान यज्ञ के लिए एक सुंदर सा गीत हमने चुन करके और रखे हैं।

कहते हैं कि वर्तमान से सुख लेने का प्रयास कीजिए, वर्तमान से सुख लेने का प्रयास कीजिए, भविष्य बहुत कपटी होता है। भविष्य कहते हैं तुकम्स को, और वो बड़ा कपटी हो सकते हैं। वो केवल आश्वासन देता है, गारंटी नहीं। तो सोचिए कि मैं अपने वतन के लिए, मैं अपने समाज के लिए, मैं अपने औरों के लिए क्या कर सकता हूं। ये वक्त ये है जो रुकता नहीं।

सकते हैं कि कल बुरा था, कल बुरा था, आज अच्छा आएगा, पर वक्त ही तो है, रुक थोड़ा ही नहीं जाएगा। तो दोस्तों सुनने वालों, इसी प्रकार से इस पे थोड़ा से ध्यान देना कि हम क्या कर सकते हैं। हम अगला गीत की ओर बढ़ने वाले हैं।

मोहम्मद शरीफ जी के आवाज में ये सुंदर सा गीत कि ऐ सुन लो मोर कहानियां, हम आए सुरिनाम। कुछ चीज जो यादें बन करके रह जाते हैं ना दोस्तों,

क्या कहे यादे के अंतर्गत, ये यादे भी ना। जिनका यादे अच्छे होता है जो ऐसा काम किए हैं, क्योंकि यादे ही तो जिंदगी का खजाना कहलाते हैं। यादे ही जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। कोई कुछ आज तक लेकर गया ही नहीं,

आधे भी ऐसा छोड़ के जाना, क्योंकि यादें ही जिंदगी का खजाना कहलाते हैं और जिंदगी का खजाना बाकी तो सबको खाली ही हाथ जाना है।

हमारी अपना ही देश के कलाकारों में से एक कलाकार मिशेल एंथ, उसके आवाज में ये सुंदर सा गीत को हम सुनेंगे।

कोई आयन या ना आए, मैं तो आऊंगा, सूरीनामी के झंडा लहराऊंगा। मिशेल अंत जी के आवाज में उन्होंने भी कुछ यादें छोड़ गए और कितना सुंदर रूप से क्या संदेश रखे। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम थोड़ा से दृष्टि डाले कुछ संस्थाएं हैं, ऐसे और भी संस्था है जो हमारे समाज के लिए, हमारे सभ्यता के लिए, हमारे संस्कृति के लिए, जो दूसरों के जीवन में उजाला करता है, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता है। यही संदेश लेकर के जो हमारे संस्थाएं जैसे कि FELS Volksparty Leefbaar Suriname जो जोर तोर से काम करते हैं, और बयार्दन तहै सिम्हा वोन सेंट्र मारियम बेरख में संस्था श्री परमेश्वर ज्ञान यज्ञ जो अपने ओर से अपने समाज के लिए क्या किए हैं, विद्वत हिंदू परिषद जिसे हम जानते हैं वर्ल्ड हिंदू काउंसिल से, सभी अपने अपने ओर से अपना और सहयोग देते हैं और कुछ ना कुछ करते हैं हमारे समाज और संस्कृति के लिए। तो दोस्तों, आज यहाँ तक जो संदेश रखा गया कुछ संस्थाएं के अंतर्गत जो मन तन और धन से अपना सहयोग देते हैं समाज सेवा में, हम यही आशा रखता हूँ कि इसे सुनकर के और आप इस पे थोड़ा से ध्यान दें कि हम कुछ यादें छोड़ के जाए, बाकी हम सब आप पर छोड़ देते हैं।

सैयारा फिल्म से निकाला हुआ ये सुंदर सा गीत एक नया फिल्म है जिसमें आहान पांडे जो काम किए हैं और मेरे ख्याल से ये आहान कोई और नहीं है चौंकी पांडे का भांजाल यानी कि उनका नेफ कहा जाता है। दोस्तों मैं हूँ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और कुछ नए नए गीतों के साथ हम कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करेंगे। दूसरा गीत जो हमने प्लेयर पर खोज करके रखे हुए है एक फिल्म जो 2025 में नई खंती मार्च में जो जिसका प्रीमियर हुआ है उससे पहले कितना पैसा कमा चुका थे और फिल्म जो एक मारतार वाला फिल्म है खूब धुरंधर नाम जिनमें रणवीर कपूर रणवीर सिंह ने काम किया है ना रणवीर सिंह ने काम किया है और आदित्य धार जो ये फिल्म को डायरेक्ट किए हैं। तो इसमें भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ देखते हैं और प्लेयर पे तो चुन करके मैंने रख चुका है तो चलाते हैं और देखते हैं उसमें क्या और

एक फिल्म जिससे बॉलीवुड काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, और एक फिल्म जो कि कहा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया के कुछ समस्याएं इसमें रखा गया है। दूसरा भाग जो बनाया गया है वो लगभग 4 घंटे के है, और एक फिल्म जिसे हम लगातार देखते रहते हैं। हमने तो कहा गया कि बियोस्कोप में ऐसा होता है माहौल कि शायद इंटरफॉल भी नहीं रखा जाता है, और कोई उठकर जब वहाँ से बाहर निकलता नहीं है, क्योंकि ये इतना सुंदर रूप में और बनाया गया है कि आप सौ न्यूज़ रखें हम नाटक आएगा। इसी प्रकार से और भी फिल्मों जो बॉलीवुड 2025 और 2026 में रिलीज करने वाले, एक और भी सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हैं, कोई और नहीं, और जिसमें अक्षय खन्ना और जानवी कपूर के

सोम कोई और नहीं, बस सिर्फ तुम हो, तुम ही तुम हो। और एक फिल्म जिसमें अक्षय खन्ना, जानवी कपूर ने काम किए, रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग जो 2025 में आया। अगला गीत हमने प्लेयर पर चुन करके रखे हैं सुनने वालों, टाइगर 3, सलमान खान और कतरीना का फिल्म।

प्रभु का नाम, तो सब कहते हैं कि कोई भी काम करो तो लेकर प्रभु का नाम। तो यहाँ तो अपना संगीत में उन्होंने ये रखा कि म्यूजिक स्टार्ट करो तो लेकर प्रभु का नाम, पर कहने के तात्पर्य ये है कि कोई भी काम शुरुआत करो तो प्रभु का नाम लेकर। अगला सॉन्ग जो हमने चुन कर रखे

रहे, वो हम सफर मेरे शाहिद कपूर और कृति सनान। एक रोमांटिक सॉन्ग है जो भी नया 2026 में, और ये फिल्म रिलीज किया गया

सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत निकाला गया एक फिल्म जिसमें शाहिद कपूर ने 2026 में फिल्म रिलीज हुआ और हम सफ़र मेरा। हम अगला गीत जो चुन करके रखे हुए है और अगला गीत का बोल ऑल्सो बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग देखते हैं और इसमें क्या संदेश रखते हैं, किस प्रकार से अपना रोमांस को और रखते हैं।

मेरा, तू ही मेरा आज और तू ही मेरा कल, अ हिंदी इंग्लिश डुएट जो एत शेरान और श्रिया घोषाल अपने आवाज में रखे अति सुंदर रूप से और अपना रोमांस को प्रकट किए। दोस्तों हम अगला गीत जो दिल तेरा नाम रणवीर सिंह जिस फिल्म में काम किया है 2026 में जो रिलीज हुआ धुरंधर उससे एक और गीत रखेंगे।

फिल्म जिसमें काम किए हैं रणवीर सिंह और नया कलाकार सारा जो अपना कला को प्रदर्शन किए हैं। दोस्तों मैं एक और सॉन्ग चुनकर रखे हुए है 2026 के नए सॉन्ग से निकाला हुआ तेरा प्यार में। और ये फिल्म में आर्यन खान जो शाहरुख खान का बेटा है उसने काम यानी कि उसके ओर से रखा गया। देखते हैं क्या सुना रहे हैं।

एक फिल्म जिसमें आर्यन खान और राश मीखा ने काम किया है 2026 में, और ये गीत जो रजिस्टर हुआ है और देखा जाए कि कितना सुंदर रूप से ये अपना कला को प्रदर्शन किए है। एक और फिल्म का नाम जो भूत बंगला है अक्षय कुमार का, और ये भी अभी रिलीज नहीं हुआ है, आने वाला है। अक्षय कुमार का भूत बंगला, जो उससे मैं गीत रखने को कोशिश करेंगे।

0: समझ रहे हो, ये जगह सही नहीं है अर्जुन।
1: ये भूत बंगला जो फिल्म बनाया गया है और 2026 में रिलीज होने वाला है, प्रिया दर्शन फिल्म, जो काफ़ी दिनों से प्रिया दर्शन ने फिल्म नहीं बनाए थे और अब अक्षय के साथ, अक्षय कुमार के साथ जो ये फिल्म बनाया गया है, एक भूत बंगला जो एक कॉमेडी फिल्म में कहा गया है। और प्रिया दर्शन के फिल्म में तो कॉमेडी और कुछ उस हर एक फिल्म में उसका देखा जाए कि लोग एक दूसरे के पाछे दौड़ते तो जरूर है। और अभी तो रिलीज नहीं हुआ पर हाल ही में रिलीज होने वाला है। और अगला गीत जो हमने चुन करके रखे हुए दोस्तों प्लेयर पे, वो भी एक 2026 का फिल्म जो कि इमरान हाशमी और राशि खन्ना का फिल्म है, रोमांटिक सॉन्ग दिल में तू।

लव स्टोरी 2026 का, जिसमें इमरान हाशमी और राशि खन्ना ने काम किया रोमांटिक सॉन्ग्स में, और जो 2026 से जुड़े हुए एक और गीत जो हमने चुन करके रखे हुए है, और आवान जवान वॉर 2 से निकाला गया है, जिसमें काम किए हैं ऋतिक रोशन और कियारा और अतवानी। कियारा अतवानी और ऋतिक रोशन ने इस फिल्म में अपना कला से प्रदर्शन दिए हैं।

ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी का फिल्म जो जिसमें से ये सुंदर सा गीत निकाला गया। दोस्तों यहाँ तक मैं आपके साथ जुड़े रहे, हम न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ रहे हैं।

यदि हम एक सरल विचार याद रखें तो जीवन अधिक खुशहाल और तनाव मुक्त हो सकता है। हमें वो सब कुछ नहीं मिल सकता जो हम चाहते हैं, लेकिन हमें वो सब कुछ मिलेगा जिसके हम हकदार हैं। फिर हम इस पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं मित्रों? विश्वास क्यों नहीं करते हैं? और हम दूसरों से बहुत ही चतुर और अनुचित तरीके से दूसरों से लेने की राह पर बढ़ते जा रहे हैं, जिससे दूसरों को दुख और दर्द महसूस हो रहा है। भाई बहनों, ये याद रखना कि जो आपने बोया है आपको उसकी कटाई करनी होगी, और ये बात हर किसी पर लागू होती है, हर किसी पर लागू होती है, ये मत भूलें।

दोस्तों, मोमबत्तियों की ऊंचाई अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो एक जैसी चमक देती है। ये आपकी पद नहीं है, लेकिन गर्माहट आती है जो आपको चमकाती है। मित्रों, पद खो सकता है, लेकिन आपका ज्ञान और योग्यता नहीं खो सकती है, और कोई भी

भाई बहनों, दो पल की जिंदगी के दो नियम याद रखना। दो नियम। पहला, किसी को प्यार देना सबसे बड़ा उपहार है, और दूसरी बात, किसी का प्यार पाना सबसे बड़ा सम्मान है। और कृपया ध्यान दें मित्रों कि क्रोध में किसी को कुछ शिकायत कर देना विचार करनी योग्य है, विचार करनी योग्य है। बेहतर होगा कि चिंता करने से आज का दर्द दूर नहीं होता, ये आज की शांति छीन लेता है। तो चिंता क्यों करे जब चिंता से आपकी जीवन बेहतर नहीं हो सकती है, नरक बन सकते हैं, तो चिंता क्यों करे। चिंता से बहुत बीमारी उत्पन्न होते हैं आपके शरीर में, तो जरा संभल के रहे मित्रों, संभल के रहे।

है बहनों, हर कोई अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन हर कोई में कुछ अच्छा है। हर कोई कभी भी हर किसी के लिए एक निश्चित छवि नहीं रखना है, क्योंकि लोग अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं। इसीलिए आपको कभी भी किसी के बारे में पहले बुरा नहीं सोच लेना चाहिए। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं मित्रों, बुरा नहीं सोचते हैं दूसरों के बारे में, तो आप एक अच्छे इंसान हैं और आप खुद भी एक अच्छा काम कर रहे हैं, ये मत भूलें।

गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णू गुरुर् देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

जिस प्रकार माता पिता की विरासत को संभालना हमारी कर्तव्य होते हैं, ठीक वैसे ही विरासत के साथ साथ माता पिता की संभालना हमारे संस्कार होते हैं। हम अपने भजनों का श्री गणेश करते हैं।

कहते हैं कि शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र।

धन्य धन्य हो भोलेनाथ, बांट दिया तीनों लोक पल भर में, ऐसा दीन दयाल मेरे शंभु, भरो खजाना पल भर में। प्रथम वेद तो ब्रह्मा को दे दिए, बने वेद के अधिकारी, विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी, इंद्र को दिया कामधेनु और ऐरावत सा बलकारी, कुबेर को कर दिया अपने सारी संपत्ति का अधिकारी, अपने पास पात्र नहीं रखा, मगन रहे बागंबर में, ऐसा दीन दयाल मेरे शंभु, भरे खजाना पल भर में। अमृत तो देवताओं को दे दिया, आप हलाहल पान किया, ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने शिव तेरा ध्यान किया, भागीरथ को दे दी गंगा, सब जग में स्नान किया, बड़े बड़े पापियों को तारा, पल भर में कल्याण किया, आप नशे में मस्त रहो, पियो भांग नित कापर में, ऐसा दीन दयाल मेरे शंभु, भरो खजाना पल भर में। लंका तो रावण को दी 20 भुजा 10 शीश दिया, रामचंद्र को धनुष्यवान और हनुमत को जगदीश दिया, मनमोहन को दी मोहनी और मुकुट बख्शीश दिया, मुक्त हुए काशी के वासी, भक्ति में जगदीश दिया, आप नशे में मस्त रहो, पियो भांग नित कापर में, ऐसा दीन दयाल मेरे प्रभु, भरो खजाना पल भर में। वाणी तो नारद को दे दी, हरि भजन को राग दिया, ब्राह्मण को कर्म कांड और सन्यासी को त्याग दिया, जिस पर तुम्हारी कृपा भई उसी को अनगन राग दिया, जिसने ध्याया उसी ने पाया, महादेव तेरे वर में, आप नशे में मस्त रहो, पियो भांग नित कापर में, ऐसा दीन दयाल मेरे प्रभु, भरो खजाना पल भर में।

चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है।

तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया, ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया, खाली हाथ आए और खाली हाथ चले, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा, तू इससे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता ही तुम्हारी दुखों का कारण।

परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो।

ये शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो, ये अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान के अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानते हैं वे भय चिंता शोक के सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल, इसी से तुम सदा जीवन मुक्त का आनंद का अनुभव करेंगे।

कोई पसंद अपना आकर्षण हो सकता है, पर जीवन भर वही पसंद बने रहना निश्रित ही ये प्रेम कहलाते हैं।

भाई राजकुमार लक्ष्मण की आवाज में हम सब ये सुंदर सा भजन सुने। कहते हैं कि टूटी चीजें हमेशा परेशान करती है, जैसे कि दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी का उम्मीद। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता है, समय और परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है।

सुनवाला एक कहावत है कि जो बातें हम पी जाते हैं वो बातें हमें खा जाते हैं। हम अगला भजन जो हमारे भाई राजकुमार जी के आवाज़ में सुनेंगे।

माँ बाप से बढ़कर मित्र, माँ बाप से बढ़कर हितैषी, माँ बाप से बढ़कर अपना इस संसार में नहीं हो सकता है।

पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो कि पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है।

परिवार हो या संगठन, सब में सफलता का कारण है एक दूसरे के विचारों को धैर्य से सुनना, समझना और सम्मान देना।

0: एक फिल्म जो बनाया गया 1973 में, जंजीर 1973 में बनाया गया, जिसमें अमिताभ बच्चन ने और अपना काम किए ना बबली जी।
1: हाँ जी, आपको पता है कि इससे पहले जब ये फिल्म बननी थी तो सब एक्टरों से पूछा, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेश खन्ना, राजकुमार, सब ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इस फिल्म में एक भी गाना नहीं था जो एक्टर ने गाया,
0: यानी कि हीरो के लिए कुछ नहीं था,
1: हीरो के लिए गाना नहीं था, इसलिए सबने मना कर दिया।
0: तो इसलिए सबने मना कर दिया ये फिल्म को, और तभी अमिताभ बच्चन को और प्राप्त हुआ ये फिल्म करने को।
1: तो अमिताभ बच्चन को फिल्म मिली और फिल्म इतनी हिट बॉक्स ऑफिस में हिट हुई कि अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन नाम दिया गया।
0: उस समय पे एंग्री यंग मैन कहा गया अमिताभ बच्चन को।
1: हाँ जी,
0: सुनो लो हम एक और सलीम जावट का लिखा हुआ फिल्म जो हम सभी जरूर देखे होंगे। फिल्म का नाम शोले है और उस फिल्म से एक गीत को और आपके लिए रखने के तैयार हूँ।

0: सुना लो जब तक है जान मैं नाचूंगी फिल्म शोले से निकाला गया और हेमा मालिनी ने खूब एक्ट किया ना बबली जी।
1: हाँ जी, और जब ये फिल्म बनी थी और उन्होंने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी हिट होगी,
0: क्योंकि ये फिल्म लगातार 5 साल तक वहाँ भी उसको ऊपर में चला ना।
1: हाँ जी,
0: भारत में।

0: गोपली जी, आप भी कुछ कहने वाले थे अभी कुछ पुरानी फिल्म के अंतर्गत।
1: हाँ जी जरूर, मैं बताने वाली थी एक दो जोड़ी बहुत मशहूर हुई थी 70-75 में। एक हुई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी और एक थी सालिम जावेद जी की जोड़ी।
0: सालिम जावेद जी की जोड़ी, क्योंकि ये 2024 में सब दोबारा फिर एक दूसरे को मिलाया गया ना।
1: हाँ जी,
0: और ख़ास करके फिल्मी के अंतर्गत जिन्होंने बहुत सा बड़े बड़े फिल्मों मिल करके लिखे थे।
1: हाँ जी, इनकी फिल्में बहुत हिट हुई। ये फिल्मों में लेखक थे, राइटर थे, स्टोरी लिखते थे और इन्होंने शोले, जंजीर जैसी फिल्में बनाई।
0: ऐसे बड़े बड़े फिल्मों में और अपना यानी कि बनाए। हम फिल्म शोले का एक गीत की ओर बढ़ेंगे, सुनो लो।

फिल्म शोले से निकाला हुआ ये इंस्ट्रूमेंटल, और आप एक गीत की ओर बढ़ेंगे।

0: सुनने वालों, एक फिल्म जो 1975 में बनाया गया, बबली जी ये किस दिन रिलीज किया गया था ये फिल्म जो 1975 में, और ये डायरेक्टर कौन थे इस फिल्म का?
1: 1975 में जो फिल्म बनी उसका नाम था शोले, और 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई। 15 अगस्त यानी भारत का स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, और इसके डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी।
0: भारत में तो दुनिया पे सबसे ज़्यादा फिल्म जो कहा जाता है कि बॉम्बे में बनाया जाता है, एक साल में कुछ 600 फिल्में कहा जा गया कि बनाया गया, तो ये देखा जाए तो एक दिन में 2 फिल्म भी और बन सकते हैं, पर ये बड़े बड़े फिल्म, कितने प्रकार के फिल्म होते हैं ना,
1: हाँ जी,
0: जो बड़े बड़े फिल्में होते हैं तो उसके लिए डेट निकाला जाता है, और हर साल ऐसे 15 अगस्त को भी बड़े बड़े फिल्म जो और प्रीमियर में जाते हैं, तो 1975 में ये एक बड़ा फिल्म था, रमेश सिप्पी जी ने बनाए थे ना,
1: हाँ जी।
0: कलाकार उनमें
1: कलाकार थे संजीव कुमार जी, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, और एक नया विलन आया अमजद खान।
0: उस समय के लिए एक नया विलन आया था अमजद खान,
1: हाँ जी। और जो इस फिल्म के डायरेक्टर है रमेश सिप्पी जी, उनको लोगों ने बोला कि आप नया विलन क्यों ले रहे हो, क्योंकि ये फिल्म कहीं पिट ना जाए, आपको एक अच्छा मजबूत और विलन लेना चाहिए।
0: तो उस समय के बात है कि जब अजीत आदि जो विलन,
1: अजीत, प्रेम चोपड़ा, प्रेम नाथ,
0: ये लोग जो विलन का रोल करने,
1: हाँ,
0: लगे थे, पर अमजद खान के लिए ये एक नया रोल था जो जिसमें उसका नाम भी रखा गया था गब्बर सिंह ना,
1: हाँ जी। और जो इस फिल्म के लेखक हैं, अरे सलीम जावेद जी, दोनों जोड़ी है जिनकी, वो कहते हैं कि हमने जब उनके गांव में, उन्होंने एक कहानी सुन रखी थी गब्बर सिंह, और सच्ची कहानी है, तो इसी के ऊपर उन्होंने गब्बर सिंह, अरे सुझाव दिया डायरेक्टर जी को कि विलन का नाम गब्बर सिंह ही रखना चाहिए।

0: और इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, फिल्म फेयर अवार्ड, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर।
1: उस समय के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और अमिताभ बच्चन जी उस समय

0: सुपरस्टार बन गया था ना इसी फिल्म से, यानी कि सुपरस्टार का और जो जगह प्राप्त किए थे ना।
1: हाँ जी, लेकिन इनसे पहले उनकी फिल्म आई थी जंजीर,
0: जंजीर में जिससे हाँ वो पहचाना गया,
1: एंग्री यंग मैन
0: एंग्री यंग मैन के नाम से पहचाना गया था। तो ये फिल्म शोले का और एक गीत और मैं कोशिश करूंगा रखने के

0: क्या आपको पता है जब शोले फिल्म के पोस्टर लगे तो उसमें जो राइटर थे सलीम जावेद जी, उनका कहीं नाम नहीं था।
1: उनका कहीं नाम नहीं था तो क्या पोस्टर पे नाम लगाया जाता था उस समय पे?
0: हाँ जी, निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, लेखक सबके नाम होते थे।
1: सलीम जावेद का नाम नहीं रखा गया था वो पोस्टर पे, और तो हुआ क्या?
0: तो फिर उन्होंने दोबारा से पोस्टर बनवाए और उस पर अपना नाम लिखवाया।
1: यानी कि पोस्टर पे अपना नाम लिखवाए ये सलीम जावेद का, रिटन बाई सलीम जावेद। ये सुंदर सा फिल्म जो 1975 में जाकर के रिलीज हुआ, और कहा जाता है कि रमेश सिप्पी ने ये बड़ा फिल्म बनाने का फैसला लिया था, पर उनका बजट कहा गया था 1 करोड़ था ना?
0: हाँ जी, उस समय में 1 करोड़।
1: उस समय के लिए 1 करोड़ बड़ा बड़का पैसा होता था।
0: बहुत ज़्यादा, अब भी ज़्यादा है।
1: और पर बनते बनते ये फिल्म बन गया था 3 करोड़।
0: हाँ जी, 3 तक पहुँच गई।
1: और 3 करोड़ हो गया था और ये फिल्म यानी कि बजट से बाहर को और खर्चा हुआ।
0: सही बात।
1: और शुरू शुरू में तो जब प्रीमियर पे आया तो डर गए थे कि ये फिल्म चलेगा नहीं।
0: हाँ जी, तो फिर सब कहते हैं अच्छा 1 हफ्ते तक देख लो कि क्या रिजल्ट निकलता है।
1: तो हफ्ता बाद जब रिजल्ट अबे पूरा नहीं हुआ था फिल्म, बस फिल्म के डायलॉग के माध्यम से फिल्म खूब चल पड़ा ना।
0: हाँ, इतनी लंबी लंबी लाइनें कि लोगों को कितनी, अरे घंटे लाइनों में लगना पड़ता था टिकट लेने के लिए।
1: कितने घंटे लाइनों में लगता था और टिकट लेने के लिए।
0: हाँ जी।

0: बड़ा बोझ है आप पर।
1: लेकिन बेटा इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता। बुरा नहीं मानना, इतना तो पूछ नहीं पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है।
0: कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा।
1: तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता?
0: नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा।
1: हार जाता है?
0: हाँ मौसी, अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ।
1: है तो क्या जुआरी है?
0: छी छी छी छी मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष।
1: ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं।
0: मौसी आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं, वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए, ये जुए और शराब की आदत तो दो दिन में छूट जाएगी।
1: अरे बेटा मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो, ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक?
0: मौसी आप वीरू को नहीं जानती, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी।
1: हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी, तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है?
0: तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं। हाँ
1: अच्छा, तो बेटा ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे ये गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं?
0: बस मौसी खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे।
1: एक बात की दाद दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है।
0: क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं?
1: पक्का? भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं।
0: अजीब बात है, मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया, बेचारा वीर ना जाने क्या करेगा।

0: सलीम जावद के लिखा हुआ डायलॉग मौसी का भी कितना सुंदर सा डायलॉग है ना बबली।
1: हाँ जी, मौसी जी का डायलॉग, और वो भी डायलॉग जो धर्मेंद्र टैंकी के ऊपर चढ़ के मौसी को गाली देते हैं।
0: ऐसे उसमें मेरे ख्याल से उस समय पे भी डायलॉग, सिर्फ डायलॉग से एक एलपी भी बनाया गया था ना, वो जो भारत में लोग खरीद सकते थे, वो सूरीनाम में नहीं आया था मेरे ख्याल से। तो लोग लाइन में खड़े हो करके, और सभी डायलॉग जो बनाया गया, जो लिखा गया था और जो आवाज़ में रखा गया था, लोग बहुत पसंद करते थे उस समय पे, और आज भी वो अभी तक लोग भी पसंद करते हैं ना।
1: हाँ, क्योंकि जब मर्जी हो तो डायलॉग सुन सकते हैं।
0: हम एक गीत और, यानी कि सलीम जावद के फिल्म, उसी प्रकार से उन्होंने फिल्म शान मेरे ख्याल से और बनाए लिखे थे।
1: हाँ जी, शान भी थोड़ी शोले की तरह थी, लेकिन वो लोगों ने इतनी पसंद नहीं की जितना शोले पसंद की।
0: शान उतना नहीं चला था मेरे ख्याल से
1: ना, शान से ज़्यादा दीवार चली थी। दीवार भी 1975 में आई।
0: दीवार फिल्म, वो भी सलीम जावद के लिखा हुआ, 1975 में वो रिलीज हुई।
1: हाँ जी, और वो ये एक्शन और क्राइम ड्रामा फिल्म थी।
0: एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म। दीवार फिल्म में भी कुछ सुंदर सुंदर गीतों भी थे ना।
1: गीत भी थे, और ये दो भाइयों की कहानी थी।
0: दो भाइयों की कहानी।
1: हाँ जी, और उसके डायलॉग भी बहुत मशहूर हुए। और एक भाई इंस्पेक्टर होता है, और एक भाई, अरे बाद में पहले छोटे मोटे क्राइम करता है, फिर बाद में बड़ा चोर कह लो या कुछ ऐसे बन जाता है। यानी कि एक अमिताभ बच्चन और शशि कपूर, परवीन बॉबी, नीतू सिंह, इन सब ने इस फिल्म में काम किया था। इस फिल्म में काम किया था अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, नीतू सिंह, परवीन बॉबी, निरूपा राय।
2: क्या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है?
3: क्या है?

सुनने वालों, ये फिल्म दीवार से निकाला गया ये सुंदर सा गीत उसी समय के बात है जब सलीम जावद का जोड़ी थे तो बनाया गया फिल्म शान, और फिल्म शान से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत मैं प्लेयर पे चुन करके रख चुके हैं।

यहाँ तक जो मेरे हिस्से के कार्यक्रम हमने और आपके लिए प्रस्तुत किया। हमारे साथ दिए बबली आसरा जी भी और मैं हूँ आपका सेवक संजय, और यही आशा रखता हूँ कि आपका कार्यक्रम भी कुछ न कुछ रूप में अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

फिल्म मिलन से ये सुंदर सा गीत हम सब मिलकर श्रवण किए और आपके लिए पेश किया गया है। जी हाँ, फिल्म का नाम मिलन। U kunt hier ook terecht, mijn lieve mensen, bij Van Hindustani Radio voor uw vermaaise reclameberichten en anders wat u wenst te horen. Neem gerust contact. Telefoonnummer wat is aangegeven, dat is 070-365-2247. En u kunt ook eventueel bellen naar studio 070-362-2077. मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम सवार दो। फिल्म होली आई रे फिल्म का नाम। 1970 में ये पिक्चराइज किया गया है मुकेश जी की आवाज में।

सही तरीका पानी पीने का सही तरीका मेरे प्यारे सुनने वालों, और कौन सा वक्त आप ज़रूर से इसे सुने होंगे। और वैसे जब आप प्यास लगे तो ज़रूर से पी लेना।

मन्ना दे जी ने हाँ मेरे प्यारे सुनने वालों और कहते हैं आपसे ये बता दे मैं सोचती हूँ और वो खोज कर लाई हूँ तो अवश्य ये बताऊँगी। What's an almal notan? हाँ what's an almal notan? Under notan fallen, under notan fallen amandalan, cashew notan, paranotan, hazelnotan, macadamia notan, pecan notan, pistas notan, and

0: टाइटल सॉन्ग आपने सुने, मैं भी सुनी और जरूर से इसे पसंद की। फिल्म का नाम ही रास्ते का पत्थर है, टाइटल सॉन्ग मुकेश जी की आवाज में।
1: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: आपको लेकर चलते हैं दुनिया के शेयर करने के लिए।

कर क्या करोगे किसी से नाराजी रखकर, जिंदगी का तो वैसा भी कोई भरोसा नहीं, क्या पता कब कहाँ और किसका आखिरी दिन आखिरी सांस होगा। इसलिए मेरे दोस्त, इसलिए हर एक लम्हे को खोल कर जी लो, जो भी यादें हैं उन्हें संजो लो, जो भी बिखरा है उसके समेट लो, अगर कोई रूठा हो तो उसे मना लो, इससे मिलते इससे पहले कि कोई टूट कर या रूठ कर चला जाए, उसे जोड़ कर अपने पास रख लो, क्योंकि जिंदगी कभी भी फिर से कुछ भी नहीं दोहराएगी।

हसरत जयपुरी के लिखे हुए गीत है मेरे प्यारे सुनने वालों, मुकेश जी के आवाज में। वही फिल्म, वही मूवी अराउंड द वर्ल्ड 1977 से तक के पिक्चराइज किया गया है। करीबन 58 मेरे ख्याल से अख्तम फैफ तक यार हो चला ये।

फिल्म का नाम शबनम और यह फिल्म मेरे दोस्तों नेकन तेन नेकना फेर तक के पिक्चराइज किया गया है।

से हमने सुने नेखन 373 में पिक्चराइज किया गया है लता जी के आवाज में उलझन सुलझेना। और यहाँ से आपके लिए एक बार फिर हम ला रहे हैं किशोर दा जी की आवाज में कोई हमदम ना।

हम दम ना रहा, कोई सहारा ना रहा। फिल्म का नाम झुमरू। मेकन तीन एनन सेस तक के ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है किशोर दाजी के आवास में। इस बार है मैं ढूंढता हूँ जिसको। चलकर मिलकर सुनते हैं फिल्म का नाम ठोकर। और फिल्म ठोकर रिलीज किया गया है नेकन तीन फिरन से फन तक में। आप यहाँ से भी सुनते हो, रेडियो को फॉलो करते हो, आपको बहुत सारा प्यार यहाँ से हम भेज रहे हैं।

अति सुंदर क्या खूबसूरत बयान की है मुकेश जी की। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में, फिल्म का नाम ठोकर जैसे हमने आपको बताया है, लेकिन 3 फिर से 1 तक में ये पिक्चराइज हुआ है।

की आवाज़ में, मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में, याद न जाए बीते दिनों की, फिल्म का नाम ससुराल। मेरे प्यारे सुनने वालों, नेकंतीन इन सेस्तक में ये सुंदर सा फिल्म पिक्चराइज किया गया है। इसमें बहुत सारे ऐसे ही भूले बिसरे

मेरे प्यारे सुनने वालों, जिंदगी का सफर हाँ वाकई में कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। अगर समझना चाहते हो तो अंतर्मुखी होना चाहिए। फिल्म का नाम सफर, किशोर दा जी के आवाज में। इस बार सुनेंगे हम मोहम्मद रफी जी के आवाज में। फिल्म का नाम बिंदिया।

करते हैं दर्द भरी बयान। रफी जी के आवाज में श्रवण की है फिल्म का नाम बिंदिया। लेकिन 3 से 6 तक में ये सुंदर सा फिल्म पे पिक्चराइज किया गया है।

जिंदगी मुझको दिखा दे रास्ता। एक बार फिर हमने श्रवण की है मोहम्मद रफी जी की आवाज में, फिल्म का नाम राजकुमार। ये फिल्म नेखंती फिर सस्तक में पिक्चराइज किया गया है। हम देखे तो सोचे तो जिंदगी मुझको दिखा दे रास्ता। फिल्म का नाम कोरेक्सी कोरेक्सी सांझ और सवेरा। फिल्म का नाम सांझ और सवेरा नेखंती फिर सस्तक में ये पिक्चराइज किया गया है। शंकर जय किशन हसरत जयपुरी की साज और संगीत।

वाकई में आप ही प्यार हो। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से आप जुड़े हैं, चलते हैं आपको लेकर चलते हैं सुनने के लिए। फिल्म अपना खून से।

सुन सजना, फरमा दी है आशा भोसले जी मोहम्मद रफ़ी जी के साथ फिल्म का नाम अपना खून नेहन दिन अख्तन सैफन तक के ये पिक्चराइज हुआ फिल्म है। सुनो

मुकेश जी और लता, नहीं नहीं मुकेश जी और आशा भोसले जी की आवाज़ में कि एक बार मुस्कुरा तो दो, फिल्म का नाम है मेरे दोस्तों, एल्का न्यू अवेक, इस अनकाउंस ओम फ्रेश एनर्जी और द द्रोमन वार्तमाकन।

ख्याल में किसी के नेकंती फेफ तक के ये पिक्चराइज किया फिल्म है मेरे प्यारे सुनने वालों। गीता दत्त और मुकेश जी के आवाज में यहाँ से मिलकर हमने श्रवण की है। आज के प्रोग्राम में उनको भी शामिल कर दिया गया है। विनार सैंखे मेंशन दी नोइट इट्स फाउट दून विनार सैंखे मेंशन दी नोइट इट्स फाउट दून मार दैट सेम मेंशन दी नोइट ऑफ हेवन सो आज यू

खूब फरमा दी और हमने सुन ली कि पायल की झनकार रस्ते रस्ते मेरे दोस्तों। अनमेंस अनमेंस सोमस्ता एक ऑप मेतनलाख सोमस्ता एक ऑप मेतनलाख सोम्स ओक एन अ नॉर्स बॉय सोम्स बार्स्ट एक फान द एनर्जी मार सोम्स ओक बेन एक लय सोम्स रियाखेर एक नोख फेल सोम्स लात एक आलस सोम्स लात आलस म काउत सोम्स फूल एक म गवोन वात फ्रेम मार सोम्स ओक हेल फर्ट्राउत सोम्स स्टा एक ओवरऑल फॉर ओपन सोम्स स्लुइट एक आलस बुइटन सोम्स लोप एक गवोन ते नोरन मार सोम्स ook wel te fluiten. Soms gaat het helemaal niet goed. Soms gaat het wel naar wens. Het hoort er denk ik allemaal bij. Bij het zijn van mens.

फिल्म अप्रैल फूल से ये सुंदर सा गीत और कितने ही प्यार से फरमाए हैं रफी जी अपने मशूका के लिए, अपने प्रेमिका के लिए इतनी सारी दुआएं हैं लफ्जों में आपने सुने होंगे। सिंगर सैन बते कनित दैट मैन निट्स ओवर द लिफ्ट द वेट हैट बते कन दैट मैन खनुख वेट om op de juiste persoon te wachten.

0: కరటుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సంప్రభా నిర్విధినం కురుమే దేవా సర్వకార్యషు సర్వదా రుబ్రరు మిల్నే కా మౌకా నహీ పా రహా హూ అతః శబ్దో సే అప్నో కో నమన్ కర్ లేతా హూ ప్రత్యేక వ్యక్తి కిసి న కిసి రూప్ మే శ్రేష్ఠ హోతా హై ఇసిలియే ఆప్కీ శ్రేష్ఠతా కో హృదయ సే నమన్ కర్తా హూ ఫౌన్ రేడియో కే సభీ సుననే వాలో కో హార్దిక్ సే నమన్ కర్తే హువే ఔర్ యే కహనా చాహూంగా కి హమ్ సబ్ ఫిర్ బ్రాడ్కాస్ట్ पे उपस्थित हो गए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बबली जी जो अपना एंट्री ले रहे हैं और शांता खेमई जी भी। तो बबली जी,
1: हर हाल में राधा का
2: जश्न मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।
3: प्यारे सुनने वालों, प्यारे प्यारे सुनने वालों, आपको भी हार्दिक से स्वागत है सेविका शांता की। और आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी गरीब होते हैं जिनके पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पैसा ही पैसा है और कुछ नहीं है। सोचो तो कितना गरीब एक इंसान हो सकता है पैसा होते हुए। परिवार नहीं है अगर आपके, दोस्त नहीं हैं, कोई से आप कुछ दो बात नहीं बोल सकते, तो सोचो कितने धनवान हो तुम पैसे के साथ।
0: कितना धनवान हो तुम
3: कि कितने गरीब हो,
0: पैसा तो गरीब?
3: पैसा है आपके बेमिसाल और आपके पास कोई नहीं जो आपके साथ, जिसके साथ आप दो बोल सके, तो गरीब ही गरीब है ना।
0: कहने के तात्पर्य यह है सुनने वालों की, शांता जी ये भी कहना चाहेंगे कि भाई पैसा से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है ना शांता जी।
3: हाँ, पैसा के साथ साथ सबसे प्रेम भाव से रहो, प्रेम से पेश आओ, तो साथ ही साथ दोनों साथ में चलेगा।
0: बबली जी, इस पे आपके क्या संदेश है कि पैसा होते हुए आपके साथ कोई नहीं है लड़ने के लिए, या कोई नहीं है आपको डांटने के लिए, या कोई नहीं है आपसे बातें करने के लिए, या कोई नहीं है आपसे और या कुछ सुझाव देने के लिए, इसे कोई भी रकम से आप ऐसा होते हैं ना। देखो, मौसम भी बदल रहे हैं, हमारा वातावरण भी बदल रहे हैं, प्रकृति में जो बदलाव आ रहे हैं ये आते जाते रहते हैं। हर बार सोमर आता है, लेंथ आता है, विंटर आता है, हेरोस्फीयर, इस प्रकार से मौसम बदलते रहते हैं। पर हम मनुष्यों के कभी कभी ऐसा हो जाता है ना शांता जी कि बदलाव नहीं आता, पैसा होते हुए उसमें कोई प्रकार से बदलाव नहीं आता।
3: गुरूर होता है, अहंकार होता है, तो इस जिसके पास गुरूर और अहंकार है तो लोग उनके करीब नहीं आना चाहते हैं।
2: जैसे आपने बोला कि मौसम बदलते हैं, वैसे इंसान के हालात भी बदलते हैं। कभी हालात अच्छे होते हैं शांता जी, कभी हालात बुरे भी होते हैं।
0: हालात कभी अच्छे होते हैं और कभी, पर ये हालात पे लोग काम कर सकते हैं।
3: बिल्कुल, अपन नजरिया अपन दिमाग जो दोहराओ तो हालात बुरा नहीं होता।
0: कि देखो, कभी कभी सब लोग कहते ना फॉर कि यहाँ हॉलैंड एक इतना सुंदर देश है, पर एक इतना सुंदर देश है, पर फिर भी कितना लोग इंसान है, ऐसा क्यों?
2: मैंने भी देखे शांता जी, इतना सुंदर देश है, इतना अच्छा देश है, फिर भी लोग कहीं रोते रहते हैं।
3: हाँ, पर क्यों? ये क्यों के जवाब मेरे को आज तक नहीं मिलता है।
2: कि लोग हमेशा ताने देते हैं, सरकार ऐसे है, ये ऐसे है, वो ऐसे है, खुद नहीं बदलेंगे,
3: उंगलियां
2: सरकार बदले।
3: हाँ, उंगलियां दिखाते रहते पर अपने आप की तरफ उंगली नहीं करते कि अच्छा हमें ही कुछ बदले, कुछ बदलाव हमें ही लाए अपने आप में।
0: तो सुनने वालों, आप समझ चुके होंगे कि हमारे विषय आज किस ओर के तरह जाना है। हम उस ओर बढ़ने से पहले हर सप्ताह की तरह तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे,

0: तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तो सुनने वालों, आज के विषय जो हम सब इस ओर लेकर जाने वाले हैं कि हमारे जीवन में हम क्या क्या किए हैं और क्या हमें कैसे रहना चाहिए, या हम सफ़र आदि करते हैं तो क्या देखने के इच्छा होते हैं लोग के ना, इस पे एक फिल्म जो निकाला गया 2024 में दिवाली को और प्रीमियर में आया था
1: ये?
0: सिंगम अगेन। तो डायरेक्टर ने उस पे ऐसा काम किया है
1: ये।
0: बबली जी, कौन कौन स्थान को कोशिश किया है डायरेक्टर उसमें रखने के? श्रीलंका तो रखे हैं,
2: रामेश्वरम
0: और मदुराई, केरला, त्रिवेंद्रम, यानी कि सौद के ओर ना शांता जी,
1: सौद के ओर, भारत के सौद और श्रीलंका,
0: भारत के सौद और श्रीलंका,
1: और श्रीलंका, हाँ, जहाँ पर हमारे ख्याल से रामायण के भाग में भी वो सब जगह के नाम प्रसिद्ध है उसमें है। रामेश्वरम मतलब यानी कि राम के ईश्वर जो है वो है शिव जी,
2: हाँ जी।
1: राम के इष्ट रामेश्वरम।
0: कभी ऐसा होता है कि देखो, जब वहाँ पर देखा जाए कि हम फकांसी से जाना चाहते हैं तो वहाँ का वातावरण, यानी कि गर्मी के समय पे वहाँ और ज़्यादा गर्मी होते हैं या उस तरफ और कम गर्मी होते हैं?
1: गर्मी तो मेरे ख्याल से एक ही भाव के होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर है कहाँ पे, कैसे एटमॉस्फेयर जैसे कैसे फर्देल करल है, तो इसी प्रकार से वहाँ पर अपने यहाँ पे जैसे ठंड होता है या मौसम के अनुसार यहाँ पे कैसे है, तो वही उस देश के मौसम जैसा होता है वैसे वहाँ पे भी होता, तो मेरे ख्याल से वहाँ पर गर्मी रहेगा। रामेश्वरम से श्रीलंका तक यहाँ पर भी पुल बनाया गया था,
2: सेतु,
1: हाँ,
0: राम सेतु,
1: राम सेतु, हाँ।
0: तो राम सेतु

0: शांता जी, ऐसा करते हैं, पहले हम एक झलक जो फिल्म सिंघम अगेन
1: आप लोग ने देखे है ना, जरूर से जाए के देखना चाहिए।
2: गूगल पे बाजीराव सिंघम टाइप कर ले, पता चल जाएगा तेरा बाप चीज क्या है। जिसे नफरत करता है और जिसे प्यार करता है, उसके लिए कहीं भी जा सकता है।

0: सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत निकाला गया फिल्म जो सिंघम अगेन से, और उसमें ख़ास करके आज जो हमारे तेमा जो है हमारे जिसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि भारत में कुछ स्थान हैं ऐसे हैं जैसे कि कहा जाता है राम सेतु जहाँ है जा करके साउथ में भारत के है ना रामेश्वरम में है, और जब रामेश्वरम जब जाए जाए बबली जी तो वहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्या है वहाँ पर जब देखा जाए कि वहाँ जब जाओ तो कोई जेंट्स लोग यानी कि आदमी लोगों ज़्यादा तादाद में जो जीन्स हम पहनते हैं ना पजामा लंबा वहाँ सभी लुंगी पहनते हैं, उसमें भी कुछ बात होगा ना।
1: हाँ उन सबके ड्रेस कोड वैसे ही ना लुंगी
0: पहने होते हैं सब। लुंगी के सिवा वहाँ पर रामेश्वरम जब हम जाए तो फ्रॉइड आदि भी वहाँ कुछ अलग से है।
1: जैसे कि
0: ये कहना चाहूँगा कि
2: जैसे शादे थोड़े से जैसे है सूरीनाम की तरह भी है वहाँ पर
1: सूरीनाम की तरह। हाँ, हाँ।
2: जैसे केला हो गया बनान छोटा बनान सॉकर बनान
1: हाँ
2: और नारियल पानी हो गया
1: हाँ।
2: तो और भी खाने की चीज़ें हैं जो
1: सब्जियां भी मेरे ख्याल से
2: सब्जी फल मेरे को तो फल भी हैं थोड़े से
1: हाँ।
2: जो सूरीनाम की तरह है
1: तो अगर वहाँ पहुँच जाओ तब ये महसूस होता कि आप जिसे सूरीनाम भी आ गए।
0: हाँ लेकिन शांता जी वहाँ करेला जो हम लोग सूरीनाम की करेला बोले सोप्रोपो
1: हाँ
0: करेला तो वहाँ पर उस प्रकार के और सब्जी भी है लौकी आदि इन चीज़ों को और भी और आप वहाँ पर देख सकेंगे। ख़ास करके जैसे कि बबली जी अभी कह रहे थे कि वहाँ जो केला कितना प्रकार के ना हम लोग जैसे जो सूरीनामा में अपल बनान कैसे बोले अपड़ा बकवा सुक्रू बकवा इंगी बगबा तो ये इस प्रकार के वहाँ पर भी अलग अलग है।
1: हाँ, उपलब्ध है वहाँ पर
0: उपलब्ध है और हाँ। एक वो जो खा ले तब बोले मन भर जा
1: पेट भर जाए
0: ऐसे कि इंडिया में जे घूमने को जाए और जैसे कि साउथ आदि जाए यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप इंडिया के मैप इंडिया के कार्ट पे जब देखा जाए तो इंडिया एगो फॉरम में एगो पॉइंट में नीचे आइंदा हुए है ना
1: जी।
0: तो पॉइंट में नीचे आइंदा हुए है और वो स्थान को कहा गया है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी में जब अगर आपके अपने जीवन में उसको दर्शन करने को इच्छा हुआ तो यानी कि दुनिया के सबसे एंड कोना जो होते हैं और वहाँ पर लोग कितना तादाद में सुबह सुबह और जाकर 5 बजे सवेरे से उपस्थित हो जाते हैं और सूर्य को किरणों जो यानी कि सूर्य जो उगते हैं तो अचानक पूरा सूर्य दिखाई देते हैं। अतिशन भी सुंदर है ओमदार दत्त खानसीन और वहीं पे आपको मिलेंगे जो कहा जाता है कि जो असली मोती वाला और जो मछली से निकलता ना असली मोती
1: हाँ ये।
0: तो असली मोती वाला यानी कि जो कैटिंग आदि होते हैं तो वहीं पर आप प्राप्त कर सकते हैं। पर कन्याकुमारी इसम भी सुंदर है आप अपने जीवन में दर्शन करना चाहते हो तो जरूर जा करके और दर्शन कर सकते हैं जब साउथ के और सफ़र करे तो। कहा जाता है कि कन्याकुमारी से रामेश्वरम तक तो 3-4 घंटा के सफ़र हो जाता है और उस सफ़र में भी देखने वाला चीज़ होते हैं कहीं लानबाव तो कहीं स्काफहर्तर्स होते हैं यानी कि अपने आँखों को वो खुशी देते हैं जिसे मन को कितना अच्छा लगता है।

0: संजय जी, आपने अभी बताई कन्याकुमारी के बारे में, और आप लगे हाथ भी बता दो वहाँ के मंदिर कैसा है।
1: कन्याकुमारी में तो कुछ ऐसा है कि वहाँ पर आपको जो जा कर के बोट से जा कर के, जहाँ पर कहा जाता कि कन्याकुमारी, वहाँ पर उनका पैर है ना कन्या माता माता के
0: जी।
1: तो दर्शन करने को तो बोट पे जाया जाता है, और कुछ एंट्री भी लगता है ना वहाँ।
0: अच्छा।
1: तो एंट्री लेकर के और जाया जाता है, पर आप उसमें भी हम लोग के, यानी कि अगर आप चाहे जो कटार होते हैं, जो रई होते हैं, तो उससे आप बच सकते हैं। और कुछ और फिर लोकल प्राइस एकदम सस्ता है, और तो आप एक स्पेशल रई VIP ले सकते हो। तो वहाँ पर आपको VIP के और तरह से और ले जा करके पहुंचाया जाएगा। वहाँ पर आप कन्या कुमारी का पैर जो फुटस्पोर है जा करके दर्शन कर सकते हैं, उसके बाद में फिर आप अपना सफ़र को आगे बढ़ा सकते हैं।

0: जी संजय जी, आप बताओ कि रामेश्वरम के मंदिर कैसा, क्योंकि उस मंदिर को हमने सिर्फ फिल्मों में देखे हैं, चित्र में देखे हैं, और हकीकत में कैसा दिख रहा है?
1: शांता जी, कहने के तात्पर्य ये है, अगर आप किस प्रकार से वो मंदिर का दर्शन करना चाहते हो, अगर जो आप गायत यानी हित्स द्वारा जो जा करके मंदिर का दर्शन करना चाहते हो, तो उन लोग के पास वो प्रकार से आपको दिखाने के लिए है। 24 घाट से आपको और स्नान करना पड़ेगा, फिर आपको और ले जा करके और यानी कि लिंगम का दर्शन कर सकते हो, और उसमें भी कुछ खर्चा आदि होते हैं।
0: अच्छा।
1: पर अगर आप अस्तुरिस्त और सिर्फ मंदिर को दर्शन करना चाहते हो, तो वो आप जा करके दर्शन कर सकते हो। और वो जो रामेश्वरम मंदिर है, इतना बड़का है कि आप अगर जब फरकीरदा अफसलाख ले लो, तो आपको लगेगा कि अरे कैसे हम यहाँ से निकले।
0: सच में
1: इतना बड़ा है, क्योंकि सेंट फर्स्केलन द इन एंड आउट खाना है, तो सो कोलोसाल खबाउत, आप उसमें बड़ा ध्यान देकर कि हम कैसे किस तरह से गए थे और फिर उसी तरह से हम निकल आए। दैट इज़ ओकम भी सुंदर है, बड़ा सुंदरता उस मंदिर में है। जो फोर आंसेख फन मंदिर और अख्तर आंसेख जो है, दिस हेल हो खमाक, हेल हो खमाक, और उसमें या तखीफ सो फेल फ्रग द अमदत बसेख तख। तो दोस्तों सुनने वालों, जरूर आपके मन में ऐसा उठ रहे होंगे कि आप अपने जीवन में जो जा करके मंदिरों जैसे साउथ कहा गया है इंडिया का, तो जरूर आप दर्शन कीजिए। हम जो जा करके वहाँ से कुछ संदेश और लेकर आते हैं, ताकि आपको कोई और तकलीफ ना पहुँचे और आप आराम से जो जा करके दर्शन कर सकते हैं।

0: अभी संजय जी ने कहा रामेश्वरम के बारे में, कितना बड़ा मंदिर है और अगर आप वहाँ पहुँच जाए तब 12 जगह पर,
1: वो कहते हैं कि वहाँ
0: 24 घाट
1: जल से स्नान करना चाहिए।
0: हाँ, तो मैं इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप वहाँ पहुँच जाए तो साथ ही साथ जो करना है ये 24 घाट जो है उसके साथ आप जो कर सकते ना कि सब वो एक भाव में करते जाओ, क्योंकि बार बार हम वहाँ पे नहीं जा सकते ना।
1: जैसे कि शांता जी कहते हैं कि आप ऐसा स्थानों ऐसा तीर्थ स्थान को दर्शन करें उस पे और ध्यान देना।
0: हाँ, जो नेक काम जो अच्छा अच्छा है वो सब करते चले जाना कि ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े।
1: तो शांता जी ये तो बताइए, क्योंकि आपने एक प्रोग्राम भी बनाए हैं श्रीलंका के बारे में, तो वहाँ पर भी जो अभी हम लोग जो फिल्म का एंट्री शुरू कार्यक्रम को शुरू किए गए
0: जी,
1: तो श्रीलंका के बारे में भी कुछ संदेश,
0: श्रीलंका के बारे में जरूर से यहाँ से हम सब मिलकर कुछ उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप श्रीलंका जाए तो श्रीलंका का खूबी ये है कि आप सिगिरिया जरूर दर्शन करें। सिगिरिया एक बड़ा पर्वत है, माउंट है। हाँ, इट इज ऑल्सो आदम बने मन आसुदार शेख पफिन एन आसुदा इन मालोक दार बैन प्रोबेर ओक उम सो होख मोखलक अब द बैरख तक न क्लेम या। और पहाड़ चढ़ने के लिए जैसे मुझे पता है तो अगर आप सुबह के वक्त में ये सब कार्य करें तो आसान होगा, धूप जो हो जाएगा आप उसमें जाकर और चढ़ान उठान करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर सिगिरिया एक अच्छा स्थान है श्रीलंका का, आप उसे ज़रूर से उसका दर्शन करें। और जहाँ पर भी सीता माता का हरण हुआ था और रावण जी भी उसी जगह पर रखे थे अशोक वाटिका में, तो वो सब वहाँ पर जरूर से देखने को मिलता है।
1: अभी हाल ही में हमारे कुछ फ्रेंड्स जो वहाँ पर भी गए थे शांता जी, तो वो स्थान को दर्शन किए, क्योंकि वो फिल्म में भी वो स्थान को दिखाया गया था कि जहाँ पर हनुमान जी और सीता माँ को मिले थे ना
0: जी।
1: तो दक्षिण लोक प्लक वार्य जो श्रीलंका में भी जा कर के देख सकते हैं लोग। और ये जो वहाँ का हुफ्सात जो है
0: कोलंबो, मेरे ख्याल से जी,
1: तो वहाँ भी कुछ देखने का है कि
0: अगर देखना चाहो तो देखने के तो बहुत कुछ है, पर हिम्मत जुटाना चाहिए और जानना चाहिए कि आप क्या चाहते हो देखने के लिए। अगर वहाँ पे भी भारत में भी अगर आप देखो तो वहाँ के जाति जीवन कैसे सब जीते हैं, अगर वो भी आप देखें तो कुछ और ज़िंदगी का अपना अपने आप को कुछ अंदर से कुछ और आप फील करेंगे कि आप हॉलैंड देश में रहकर आप राजा हैं और वहाँ पर लोग इतना मेहनत करते हैं दो वक्त के रोटी के लिए। ये सब चीज़ भी देखना चाहिए ना कि आलिन टूरिस्ट प्लेक जहाँ पे हम लोग के लोग ज़्यादा तौर पे बिटोड़ कर ले जाते हैं घुमाने देखाने, वो भी देखना चाहिए। पर वहाँ की नीची ज़िंदगी कैसे लोग जीते हैं, अपना रोटी कैसे कमाते हैं, वो भी देखना चाहिए। ये भी अगर आप चाहो तो भी वहाँ जाकर देख सकते हो, ना कि सिर्फ भारत के बात करते श्रीलंका के, हमारे सूरीनाम में भी वही हाल है, हमारे हॉलैंड में भी वही है।
1: हॉलैंड में भी वही है। तो सुनने वालों, हम एक सुंदर सा गीत के ओर बढ़ेंगे और गीत के बाद यही प्रोग्राम में अभी हम सब और संदेश रखने वाले हैं जो राम सेतु जो जो बनाया गया था ना, कैसे बोले उसे, एडम्स ब्रिज। अभी आज तक जो लगभग कुछ कितना लंबा है शांता जी, कुछ 35 किलोमीटर ना, और कोई 10 किलोमीटर तलक वो लोग बना करके पत्थर को बना दिया है, उसे कहते धनुष कोटी।
0: अच्छा,
1: तो फरहार वह में तो स्ट्रांड और काफी टूरिस्ट जो वहाँ जाते हैं। भारत में तो टूरिस्ट के लिए कमता ही नहीं है कुछ और बनते जा रहा है और हेलमाल फरहार्थ 3 किलोमीटर ऑंगफेर धनुष कोटी बनाया गया है तो वहाँ पर आप ना खाली मकई पाएंगे खाने को लिए अनानास भूटा खीरा काट के आम काट के और सुफनीर चेस आदि अतिस ओक हेल बिजोंदर दच द ओवर साइड फन श्रीलंका स्टात ऑंगफेर 25 किलोमीटर दार फंदान और जो इतना टूरिस्ट वहाँ भी जाते हैं सुनने वालों हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे और गीत के बाद
0: जी ये कहना चाहती हूँ आप तो रिश्ते के बात करते हो संजय जी तो ज़्यादा तौर पर हमने देखे है भी भारत में भी जैसे हम गए भारत में तो टूरिस्ट गोरा जात के लिए गोरा जात के हम मैं बात करती हूँ तो वो सब आम इंसान की तरह वहाँ पे घूमता है
1: क्योंकि अभी आपने इसके बारे में भी जिक्र किए थे कि हम अमीरों के जिंदगी शायद जी सकेंगे पर कभी गरीबों के और घर में साथ देखे कि कैसे उनका जीवन चल रहा है दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा

0: ये गीत जो निकाला गया मॉडर्न इंडिया फिल्म से, बबली जी साउथ के बारे में आप और क्या कह सकते हैं?
1: साउथ इंडिया अब्दुल करें।
2: हाँ जी, साउथ इंडिया में बहुत कुछ चीज़ें फेमस हैं, मशहूर हैं।
0: अब बहुत कुछ चीज़ें तो बहुत कुछ में तो अभी कुछ नहीं मिला,
1: कुछ नहीं मिला।
2: जैसे शांता जी खाने में मछली बहुत फेमस है।
1: हाँ, मेरे ख्याल से जो समुद्र किनारे रहते हैं ना, तो वहाँ मछली वाला पकड़ने वाला तो बहुत ज़्यादा भी होता है। तब
2: सही बात,
1: उसका रोजी रोटी मछली से शुरू होता है,
2: क्योंकि वहाँ मछली पकड़ने मछुआरे दो, उन्हें मछुआरे कहते हैं हिंदी में,
1: मछुआरे। हाँ,
2: तो वो पकड़ है ज़्यादातर मछली, झींगा सब कुछ है, क्राबू वगैरह,
1: ताज़ा।
2: हाँ जी, साउथ में। और वहाँ पर सुरीनाम में बारा कहते हैं और वो लोग बारा कहते हैं, बारा भी वहाँ पर है।
1: बारा?
2: हाँ जी।
1: अच्छा, बारा एंड चटनी एंड नौखमेर।
2: हाँ जी, ना वो बारा खाते हैं, यानी सांभर कहते हैं, सांभर
1: खाते हैं,
2: चटनी से नहीं। हाँ, चटनी होती नारियल की चटनी।
1: हाँ, नारियल की चटनी।
2: हाँ, नारियल की चटनी से वो खाते हैं बारा,
1: नारियल की चटनी। हाँ,
2: तो नारियल वो सब चीज़ में इस्तेमाल करते हैं खाने में, और नारियल के तेल से ही वो खाना पकाते हैं।
1: अच्छा, नारियल के तेल से ही खाना पकता था।
2: और कपड़ों में भी बहुत फेमस है, आदमी लोग ज़्यादातर लुंगी पहनते हैं।
1: अभी तो शुरुआत में हम लुंगी की बात कर रहे थे ना, तो सवाल भी उठा था कि क्यों लुंगी पहनते हैं।
2: हाँ जी, आप बताइए क्यों लुंगी पहनते हैं?
1: लुंगी, हमारे ख्याल से लुंगी पहनते हैं ताकि ब्लड दोस्त्रोम अच्छे से होवे, और हाँ, ब्लड दोस्त्रोम मोई से होवे और बहुत टाइट ना रहे नीचे के ओर।
0: तो इसी कारण यानी शांता जी लुंगी पहनना चाहिए। और बबली जी,
2: औरतें ज़्यादातर साड़ी पहनती हैं, और साउथ की सिल्की साड़ी बहुत फेमस है शांता जी।
1: सिल्की साड़ी सही है। हाँ,
0: जो साउथ गए यानी कि रामेश्वरम गए, तो जो अभी हमने जिक्र किया था ना, धनुष कोटी जो बनाया गया है, पर धनुष कोटी के नाम के एक दौरव भी है वहाँ पर, एक छोटा सा गांव भी है, एकदम छोटा सा, पर नेहदी फिरन सस्तक में सुनामी आया था।
2: हाँ,
0: गांव बिल्कुल लुप्त हो गया था। नेगेटिव फिरन सस्तक में जो कहा जाता है कि ऐसा आया था बाढ़ और वो बिल्कुल लुप्त हो गया था, तो उनको वहाँ पर अब फिर दोबारा कुछ ना कुछ बनाया गया। पर वहाँ पर मैं एक बात सुना एक बार कि किसी ने, और जो दुकानदार से कुछ खरीद रहे थे, एक मूर्ति खरीद रहे थे, तो मूर्ति खरीदने के समय वो हर बार कुछ ना कुछ किचकिच करते रहते हैं ना वहाँ पर इंडिया में, कि हाँ 100 का दाम 50 में दे दो, 50 का दाम 25 में कर दो ना, ऐसा होता है। तो वो मैडम जी ये प्रश्न रखा था कि भैया ये मूर्ति काला नहीं हो जाएंगे? तो वो कहा 100 भर रहे हो और ये प्रश्न कर रहे हो कि काला नहीं हो जाओ, ऐसा होता है कि पूरा गांव लुप्त हो गया था, तो ये मूर्ति क्या चीज़ है 100 रुपया?
2: सही बात
0: ना,
2: लोग सोचते 100 भर रहे हैं और चीज़ जिंदगी भर चले,
0: जिंदगी भर चले। इसी प्रकार से ये भी है। और अगर जब वहाँ जाओ तो एक रामेश्वरम में एक मंदिर भी है जहाँ पर शेषनाग का पूजा होता है, खाली शेषनाग यानी कि सांप कोबरा के, और मूर्ति वहाँ पर ढेर सारे, यानी कितना 100 गो, तो वहाँ पर आप परिक्रमा कर सकते हैं। और ख़ास करके शेषनाग के जो मंदिर है वहाँ पर लोग जाते हैं दर्शन करने को, ये भी रामेश्वरम में कहा गया है। मेरे ख्याल से फोटो बनाने के अलाउड नहीं है वहाँ, कि फोटो आप नहीं बना सकते, क्योंकि इतना ढेर सारे मूर्ति बनाया गया है शेषनाग के, पर फिर भी फोटो बनाने का अलाउड नहीं।
1: अच्छा हुआ फोटो बनाने के अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर किसी के हाथ में पड़ जाए ना, तो वो कॉपी बनाकर और बाजार में ला देगा,
2: बाजार में और फेसबुक में रख देते हैं। अच्छा, हम अयोध्या गए शांता जी, वहाँ पर भी फोटो अलाउड नहीं है।
1: अच्छा,
2: सब अपना सामान तुम लॉकर में रखो
1: जी,
2: नंबर ले लो, जब माथा टेक के पूजा करके अपने वापस आओगे तब अपना सामान लो, बाहर बैठ के बनाओ फोटो, अंदर नहीं। और दुनिया आजकल ऐसी है कि जहाँ उनको मौका मिला वो छोड़ती नहीं है।
1: बिल्कुल सही, अब देखो ना, हमारे पीतल के मूर्ति जो इतने महंगे से, इतने इतने मेहनत से भारत में लोग बनाते हैं ना, चाइना लोग देख कर यहाँ बना दे इस प्लास्टिक वाल ब्रोत, किस तरह बिका गया।
0: जरूर कहीं काल के प्लास्टिक का भी बना करके, पर देखा हम लोग के संत मुनियों ने दिया है, और हम लोग कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश में इसमें इसके बारे में भी कुछ प्रोग्राम भी बनाए हैं ना शांता जी, कि किस चीज का मूर्ति होना चाहिए,
1: धातु का, पांच धातु उसमें होना चाहिए,
0: धातु का मूर्ति होना चाहिए। हम एक और गीत राम सेतु के अंतर्गत में अपने सुनने वालों के लिए रखना चाहूंगा।

जीते हूँ किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों के सेवा में सादर सा प्रेम, नमस्ते, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल। ये फावन हिंदुस्तानी रेडियो है, www.fawnfm.nl पर, वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। घड़ी पर देखा जाए तो करीबन 3 मिनट बाकी है 12 बजने में, 3:12। ये लाइव कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है देनहाग शहर से। जो बीमार है, लाचार है, तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है, जिनकी घर में कोई शादी विवाह, कोई भी उत्सव हो, फावन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश है। मुझसे पहले आप कार्यक्रम सुन रहे थे पंडित संजय जी से और बबली जी से और शांता जी से। हम इन तीनों महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। आप सबको एक शुभ शाम पेश किया जा रहा है फावन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं के जरिए से, और मैं अपनी तरफ से भी इन तीन महानुभावों को, हमारे कोलेखा जो है कार्यक्रम पेश किए हैं, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, एक शुभ शाम पेश कर रहा हूँ। दोंदरदाख है आखिर तो इंदख मई, जी हाँ 28 मई है। दोंदरदाख गुरुवार भी लोग कहते हैं, बृहस्पतिवार को भी गुरुवार भी कहते हैं, और मैं तत्पर हूँ, रहूँगा करीबन 3 बजे तक, जी हाँ करीबन 3 बजे तक। इस आशा उम्मीद के साथ आप हमारा साथ अवश्य देंगे।

0: शायद हो सकता है आप कुछ कहना चाहते होंगे, कुछ बोलना चाहते होंगे जो हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। रेडियो द्वारा तो आप तार भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, नल से इवन तक द्री फाइव सस तक तुवें तुवें तक सेफ न फेयर तक, या तो नल से इवन तक द्री तुवें सस तक तुवें तक सेफ न सेफ तक आपको लाइव लाएंगे। अगर आप लाइव न भी आना चाहते हो तो हम आपको नहीं लाएंगे अवश्य। मौसम तो बहुत शानदार है, जहाँ तक देखूं क्या दिखा रहा है, तापमान है करीबन 21 ग्रेड, हाँ थोड़ी बहुत पवन चल रहा है, बहरहाल मौसम फिर भी बहुत प्यारा है। लीजिए कार्यक्रम में पेश कर रहे हैं एवरग्रीन किशोर कुमार जी को। जी हाँ, एवरग्रीन किशोर कुमार जी को वो आपको क्या सुना रहा है, बस आप लुत्फ उठाइए।
1: सा सा सा सारे गा गा गा गा रे, तार दिलों के
0: साथ दे रहे।

0: sa sa re. Ni da ni pa ma pa ga ma ni da ni pa ga ma re sa re re sa sa re re sa sa ga ga ga ma re re sa sa.
1: Ni da ni pa ma pa ga ma
0: ni da ni pa ma pa ga ma
1: ni da ni pa ma pa ga ma.
0: Pa to di ga ma utro sa me ga ma ta tin tin na
2: वाह शाबाश, क्या बात है। एवरग्रीन किशोर कुमार आशा जी के साथ पेश किया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का एक कार्यक्रम में एस डी बर्मन के साज पर, सचिन देव बर्मन के साज पर फिल्म नोटी बॉय में से निकाल कर निकली तू इंसेस्ट का हमने पेश की। आप चून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। जी हाँ, आप चून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप सबको हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको सुना रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

गीता राय जी और आशा जी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और गीत हमने निकाले हैं निकली फैफ तक से ओपन एयर के साज पर और पेश किए ये शानदार गीत। आपको एक बात बता दूँ, शायद आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, लेकिन फिर बता देते हैं। उस समय मैं 7 साल का था, जिंदगी में पहली बार ये फिल्म हमने देखे हैं थिएटर में। वैसे तो 83 साल में देखे हैं, लेकिन थिएटर में पहली बार गए हैं थिएटर लुक्सोर में गए ये फिल्म को देखने। बहुत अच्छा लगा था थिएटर में बैठ के, एक कुर्सी पर अच्छा लगा था। वैसे तो बांगी पर बैठ कर देखते थे। बहरहाल ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म सुनहरा संसार में से निकाले हैं नेकदी फैफिन सैफिन तक नौशाद अली के साज पर। और लता जी

लता जी और मैं तू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए फिल्म सुनहरा संसार में से निकाल कर 1975 का ये गीत नौशाद अली के साज पर हमने चलाए। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है, शाम का वक्त है तो लीजिए इस तरह से।

देखती हूँ जिधर आशा जी। जी हाँ, आशा जी फिल्म हांगकांग में से निकाले हैं निगेटिन ट्विन शस्त्र और ओपेन नैयर के साथ पर हमने चलाए हैं। चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं, जब आप भी हैं और मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है।

कारण कैसे हो मुकेश जी और लता जी मिलके आपको सुनाए मदन मोहन के साज पर। आपको बता दूं दनहाक जी नहीं, दनहाक ने उतरख उतरख के रहने वाली बेया जी ने तार की। बेया जी आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी एक शुभ दिन पेश किया जा रहा है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, वो है क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये सुनाऊं। महेंद्र कपूर जी, फिल्म का नाम है सम्राट, संगीत सम्राट तानसेन। जी हाँ, फिल्म का नाम है संगीत सम्राट तानसेन।

बदली बदली दुनिया है मेरी, महेंद्र कपूर जी और लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत। और फिल्म लिखती तो इसे कहाँ देखते हैं संगीत सम्राट तानसेन के साज फिल्म संगीत सम्राट तानसेन में से निकाल कर हमने पेश किए कल्याण जी आनंद जी के साज पर ये गीत था। चलिए अगला गीत है हम चलाने वाले हैं आपके लिए, बस आप भी हैं मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं मैं चला रहा हूँ, तो क्या ख्याल अगर आपको ये सुनाऊँ इस तरह से। अच्छा जी और रफी

इजाजत हो तो सुना दूं, ये गीत चला ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, आशा जी और रफ़ी जी ने आपको मिल के सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं द मैन विद द गोल्डन वॉइस, द मैन विद द गोल्डन वॉइस क्या ख्याल है।

एवरग्रीन, जी नहीं एवरग्रीन नहीं, लेकिन द मैन विद द गोल्डन वॉइस, तलत साहब ने आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की। जब आप भी हैं मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है, ये गीत तो आप बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम में फिर भी मैं चला रहा हूँ फिल्म अनुपमा में से निकाल कर नेक तीन सस्त और हेमंत कुमार के साज है लता जी है।

0: তোমাদের
1: উঠো না, গা।
0: চলো মুখ হাত ধুলো, याद नहीं আর দাওয়াত তো জানি।
1: अभी तो बहुत वक्त है, उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो ऐसा मालूम होता है

धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार फिल्म अनुपमा में से निकाले हैं हेमंत कुमार के साथ पर लता जी ने पेश की। और निगेटिव सेंसेस का ये फिल्म 1966 का ये फिल्म है। चलिए जब आप भी हैं मैं भी हूँ तो आपको हम क्या सुनाते हैं। ये गीत हमने चुन की है लेकिन हमने सुना नहीं, किशोर कुमार जी आपको सुना रहा है। फिल्म है देखते हैं संसार में से निकालते हैं चित्रगुप्त के साज पर। क्या ख्याल है एवरग्रीन किशोर कुमार?

हाँ, हाथों में किताब, बालों में गुलाब, जबरदस्ती की प्यार, हम आपको सुनाए हैं। ये चटपटा चुटकुला गीत एवरग्रीन किशोर कुमार ने आपको सुनाए हैं, ओ फरफाउन, हिंदुस्तानी रेडियो। अगर ये आपको किसी से प्यार है और आप उनके आँखों की तारीफ़ करना चाहते हो और आपको नहीं पता है कि उनकी आँखों की तारीफ़ कैसे किया जाए, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं। मैं आपको सुनाता हूँ, रफ़ी साहब सुनाता है आपको इस तरह से। मदन मोहन के चाज पर फिल्म चिराग में से निकाल कर निगति निघ्न शस्त्र 1969 का ये गीत।

तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा किया है रफ़ी साहब की आवाज़ में लता जी भी साथी, और हम आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, ये बंदा जैसे रफ़ी साहब कभी शराब नहीं पीता था, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है किशोर कुमार जी भी शराब नहीं पीता था, लेकिन मुझे पता नहीं पक्का, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल वो भी शराब नहीं पीता था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये गीत गाए हैं एवरग्रीन किशोर कुमार, फिल्म कटी पतंग में से हम आपको सुना रहे हैं।

सागर सागर नया सागर तो ही ले ले मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले। उठे अगर सागर नया सागर कोई ले ले मेरे खुदा दिल से

एवरग्रीन किशोर कुमार ने आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ, फिल्म कटी पतंग में से निकाल कर। चलिए, माई टू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस इस तरह से।

0: मैं तो पीता हूँ।
1: मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ, एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज़ में आपको सुनाया गया ये गीत। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। जी हाँ, तो अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊँ? गंवार में से निकाल रहे हैं आशा जी और रफी साहब।

फिल्म गंवार में से निकाले हमने नौशाद अली की साज पर, और रफ़ी साहब और आशा जी आपको सुनाई ये शानदार गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप चून हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर ये पेश करूं, बस धमाकेदार गीत है।

एक बेचारा प्यार का मारा रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश किया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है? जी हाँ, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस कंचन जी के साथ फिल्म धर्मात्मा में से है।

तुमने किसी से कभी प्यार किया है, ये शानदार गीत चला। जी हाँ, ये शानदार गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ, चलो देखते हैं सेलन सेलन फ्लिसिंगन्स के रहने वाली आनी सरजुमिसिर और ज्योति सरजुमिसिर कार्यक्रम सुन रहे हैं। आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर दराज से कार्यक्रम फिर भी सुन रहे हैं और ऐप की है कि आप सुन रहे हैं, तो आप दोनों को धन्यवाद देते हुए चलिए ये गीत आप दोनों के लिए हम पेश कर रहे हैं। सेलन फ्लिसिंगन के रहने वाले आनी सरजुमिसिर जी और ज्योति सरजुमिसिर जी, इस तरह से।

लता जी और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये गीत फिल्म पूर्णिमा में से निकाल कर हमने पेश किया और ये गीत पेश किया हमने सीला के रहने वाले श्रीमान और श्रीमती आनी और ज्योति सरजू मिश्र के लिए शुभकामना के साथ आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सब कार्यकर्ताओं की तरफ से और मैं अपनी तरफ से श्रीमती आनी और ज्योति सरजू मिश्र को बहुत बहुत धन्यवाद जो सीला फ्लिसिंग से तार किए हैं। तो चलिए कार्यक्रम में हम आगे कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं और क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से

0: दुनिया में हमारा दिल होते है, ये शानदार गीत हम निकारे फिल्म दिल ही तो है में से शंकर जय किशन के साज पर पेश हुआ ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जबकि लीजिए लता जी एक बार फिर है, जी हाँ, पंडित रविशंकर के त्रिभुत के लिए निगति शस्त्र का ये फिल्म है।
1: ये ऑल इंडिया रेडियो बम्बई है। अब हम आपको कुछ पुराने गानों के रिकॉर्ड सुनाएंगे। आज से 10 साल पहले इन गानों ने धूम मचा दी थी। पहले सुनिए सांवरे सांवरे, गायिका अनुराधा राय।
0: जिसे के पंडित रविशंकर वो मशहूर सितारिस थे। लता जी की आवाज में

ये साज कभी पंडित रविशंकर जी ने स्टेज पर बजाया था और इसी साज से उन्होंने ओपनिंग की यानी शुरू की। तो ये धुन को म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन ने इसमें जान डाल दी और इसे लता जी से ये धुन गवाया शब्दों के साथ। हमने पेश की ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत पेश करने वाले आशा जी उर्फ़ी साहब जी, हाँ फिल्म जिद्दी में से निकाले हैं।

आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म ज़िद्दी में से निकाले हैं ये गीत और हमने पेश किए आपके लिए। चलिए अगला गीत चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊँ, लता जी और मन्ना दे जी। जी हाँ, लता जी और मन्ना दे जी मिल के आपको सुनाएंगे ये शानदार गीत। और देखते हैं तो इसे मैं निकाल रहा हूँ फिल्म रात और दिन में से, शंकर जयकिशन के साज पर, बस इस तरह से।

लता जी और मन्ना दे जी फिल्म रातों दिन में से निकाले हैं और शंकर जय किशन के साज पर हमने पेश की है। लीजिए एवरग्रीन किशोर कुमार अपने प्यार की इजहार कर रहा है और आगे इन्हीं से सुनिए एवरग्रीन किशोर कुमार।

तुम कितनी खूबसूरत हो, क्यों दिल तुम पे है इतना दीवाना। एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए फिल्म जंगल में मंगल में से निकाल कर ये गीत हमने पेश की। देखते हैं अल्फर अंदरैन के रहने वाला श्रीमान चांद रघुनाथ, तो उनकी धर्मपत्नी खिसला जी भी कार्यक्रम सुन रहे हैं। तो श्रीमान चांद रघुनाथ और खिसला जी को धन्यवाद दे रहे हैं पावन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। और लीजिए श्रीमान चांद रघुनाथ और खिसला जी के लिए मैं ये गीत पेश कर रहा हूँ, इस तरह से आ रहा है।

तुमने देखा तो एक ख्याल आया। जगजीत सिंह जी आपको सुना रहे थे ये शानदार गीत, और हमने पेश की, देखते हैं, श्रीमान चांद रघुनाथ और उनकी धर्मपत्नी हिसला जी के लिए जो आफन अंदर इनके रहने वाले हैं। चांद जी और हिसला जी, आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है फौन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से, और साथ ही साथ मेरे तरफ से आप सबको एक शुभ शाम पेश किया जा रहा है। चलो देखते हैं, ये गीत हम आपको सुनाते हैं इस तरह से।

वाह क्या बात है रफ़ी साहब और लता जी, आपको सुनाए फिल्म माधवी में से निकाले हमने निगति निघ्न शस्त्र का ये गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ पर 1969 का ये गीत चला ओवर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। और ये गीत चला देखते हैं उत्तराखंड के रहने वाली बेया जी के लिए। बेया जी, उम्मीद है ये गीत आपको अवश्य अच्छा लगा होगा तो हमने पेश की कार्यक्रम में। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है, अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है क्या ख्याल है, चलिए सुनते हैं।

ये घर बहुत हसीन है। ये शानदार गीत चला ओवरफ्लावर हिंदुस्तानी रेडियो, जगजीत सिंह जी और चित्रा सिंह जी ये दोनों मिलके आपको सुनाए हैं फिल्म है साथ साथ में से निकाल कर। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आपका हृदय से स्वागत है। और तो लीजिए, अगर आप हैं इस वक्त, हम आपको सुनाते हैं क्या ख्याल है। ये गीत इस तरह से आ रहा है।

मस्ती भरा है शमाम, मन्ना दे जी और लता जी मिलके फिल्म परवरिश में से आपको हमने ये गीत सुनाए निकली अख्तम फैब तक 1958 का ये गीत देखते हैं दत्ताराम के साज पर। लेकिन उससे पहले दिल हिते है के गाना चल रहा था, लेकिन मुझे भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गीत ने कूद फान मचाकर बस फिल्म परवरिश का गीत बजने लगा। बहरहाल फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने जो लोग चुन की मीटर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं ये गीत।

छल का ये जाम रफ़ी साहब की आवाज़ में आपने आपके आपको हम सुनाए हैं इस तरह से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए देखते हैं ये गीत फिल्म दिल ही तो है का एक बार फिर कौन जाने अब की नाकूद है, लेकिन कोई और गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। इस तरह से आ रहा है

तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। माई तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, हमने पेश की वही फिल्म दिल ही तो है में से निकाल कर। अब की बार तो इन्होंने नहीं कूदा। बहरहाल आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, फिल्म का ही तो आपने देखे होंगे, एस डी बर्मन के साथ पर ये गीत।

तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं फिल्म गाइड में से निकाल कर एस देव बर्मन यानी सचिन देव बर्मन के साज पर। मैं तो मुकेश दहाड़ ऑफ मिलियंस, क्या ख्याल है?

हमको है तुमसे प्यार लता जी, और मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये गीत, और हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ, द मैन विद द बारीटोन वॉइस, दैट इज हेमंत कुमार जी।

न हम तुम्हें जाने न तुम हमें जानो। लता जी अब हेमंत कुमार जी, हेमंत कुमार के साज पर ये शानदार गीत हमने चलाए हैं और फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए हमने प्लेयर में क्या रखे हैं ज़रा देखूं तो। हाँ रफ़ी साहब की आवाज़ में चलो ये सुनते हैं।

तूने मेरे यार ना मिला यार, ये शानदार गीत चला। हम देखते हैं फिल्म शमा परवाने में से निकाल कर हमने चलाए हैं निगेटिव फिल्म 1954 का ये गीत हुसनलाल भगत राम के साज पर हमने पेश की। घड़ी पर देखूं तो धीरे धीरे समय हो रहा है कि हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। जो जो लोगों ने तार किए हैं और रैप किए हैं वो थे बेया जी उतरख के रहने वाली, और सीलांत से श्रीमती आनी और ज्योति सरजू मिश्र जी, और अल्फानंद रैन से चांद रघुनाथ खिसला जी। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और बैल भी किए हैं और रैप भी किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिल रहा आने वाला सोमवार को, जहाँ रविवार के गीत गज़ल के कार्यक्रम में भैया यूसुफ के साथ 8 और 10 के दरमियान रात्रि को, जी हाँ रात्रि को। और मेरे बाद आप सुनेंगे विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़, और न्यूज़ के बाद हमारे सहयोगी आपके सेवा में रहेंगे लेकिन करीबन 5 बजे पंडित संजय जी कार्यक्रम में आ रहा है, तो भूलना मत पंडित संजय जी। जी हाँ, पंडित संजय जी कार्यक्रम ले रहे हैं ओवर 5 बजे शाम को। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तो क्या जाते जाते, चलिए हम आपको ये सुना देते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, शुभ शाम।

और हद से ज्यादा तुम किसी से प्यार मत करना दोस्तों, कारण कि जब जाना प्यार करते हैं और प्यार में कभी टकराव जो हो जाता है तो बस आंसू ही बहते हैं, उसके बाद हम और चलते हैं और खबरों का हार्ट सॉन्ग।

बस याद ही याद रह जाती है। और आज हम आप लोग को अनहील यूरमैन से हम आप लोग को दर्द भरी गीत को सुनाएंगे, और खबरों का हार्ट सॉन्ग। अगर आपका दिल टूट गया है, प्यार में धोखा को पाया है, तो ये गीत आपको आप सबके लिए है। हिल फिल्म से सैन खसकाईद प्यार में धोखा पाए से आप रेडियो के करीब रहना और इस गीत को हमारा प्रोग्राम को सुनिए। और अगर हो सके तब आपकी आँख में या आंसू निकल आए तो उसको पोछ देना दोस्तों। तो हम चलते हैं। जो कोई किसी से बेवफा किया है तो बेवफाई भी हुआ है, बहुत बेवफा लोग करते हैं, उस सब के लिए इस गीत है।

प्यार का दोस्तों दर्द भरी खबरों का हर सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाए हैं। किसी के दिल आपने तोड़ दिया है या आपके दिल टूट गया है तो आपको यहाँ पर हम जख्म देते हैं अपने गीतों से।

हम की याद नहीं आई तो अब किसी से हमें क्या कहना है। तो आपको खबरों का हर सॉन्ग के ओर हम जाते हैं। वफा नाराज आई।

और वफाना राज आई तुझे हर जाई खबरों का हार्ट सॉन्ग। आपके दिल अगर टूट गया है या टूटने वाला है या चोट लग गया है तो आपकी आंखों में हम आंसू नहीं प्यार देखना चाहते हैं। इस सॉन्ग से आपकी जो दर्द है उसको हम भरते हैं, तो आओ मिलकर ये इस गीत को सुना जाए।

दर्द भरी खबरों का हर सॉन्ग किसकी किसी के, अगर आपके यानी कि दिल टूट गया है या किसी ने तोड़ दिया है तो मत घबराना, जो टूट जाता है वो एक दिन जुड़ भी जाता है। आपको हम बताते हैं कि तड़प तड़प के इस दिल को लोग याद करते हैं और इस दिल से पुकारते हैं, लेकिन जब तक उसकी समय नहीं आएंगी वो दिल नहीं जुड़ते हैं। तो एक और गीत की ओर चला जाए।

नंदिनी नंदिनी नंदिनी समीर चाह रहा है। पापा नहीं माने, वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। इतनी इजाजत दी है कि तुम उसे जाते वक्त सिर्फ एक नजर देख सको। उठो नंदिनी उठो, समीर हमेशा के लिए जा रहा है। जाकर देखा उसे, फिर शायद जिंदगी में तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी। जाओ नंदिनी।

मोहब्बत में, और ये सुपर हिट सॉन्ग है दोस्तों। और उसके बाद तो हम चलते हैं और दर्द भरी गीतों का प्रोग्राम आज हम आज चलाते हैं।

आती हैं तो रोना पड़ जाती है। दोस्तों ये दर्द भरी सॉन्ग है जिसका दिल टूट गया है, अगर प्यार में धोखा भी मिल चुका है तो सबके लिए ये गीत है।

दोस्तों हम चलते हैं एक मस्त भरी गाना के ओर, लता जी और राजकुमार। और इस फिल्म बहुत पुराना फिल्म है, फिल्म साधना का ये गाना है। लता जी इसमें यानी कि इस गाना को गाया है दोस्तों, और इस गाना आओ मिलकर सुना जाए। कुछ पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे।

मसी हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, ये एक बहुत मस्त भरी पुराना गाना है दोस्तों, और ये है लता जी इसका गाना, इस फिल्म में यानी कि इस गाना को गाया है। और आगे को हम अगला गाना की ओर बढ़ते हैं, और आज हम आप लोग को मस्त भरी गाना से, और जैसे हर हर प्रोग्राम में चलाते हैं, आज भी हम चलाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम और आगे चला जाएं, और ये भी एक पुराना गाना है, सब कुछ सीखा, सब कुछ सीखा है हमने, मैं सिर्फ एक ही बात नहीं सीखा है, और वो क्या है भैया, हम तो है अनारी, और ये अगर अनारी होगा तो क्या सीखेंगे, ये बात हम नहीं कहते हैं, मुकेश जी कहते हैं, आओ मिलकर सुना जाए।

0: सब कुछ सीखा हमने और सिर्फ एक बात जो नहीं सीखा है तो वो है होशियारी। दोस्तों होशियारी, हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और मस्त भरी पुराने गाने से आप लोग को आज हम फिर सेवा करेंगे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और कहते हैं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग तो तुम भी गुनगुनाने लगोगे। तो हमारा आपसे यही बात है कि जो गाना हम यहाँ पर चलाने जाते हैं रवि जी की है फिल्म जो इसमें काम किए हैं वो शमी कपूर आशा परेख ने। और अगर आप ये गाना सुनेंगे तो मुझे यही विश्वास है, यही गारंटी है कि आप भी गुनगुनाने लगेंगे, मुझे यही उम्मीद है दोस्तों। तो आओ मिल के सुना जाए कि जॉनी कौन गाना द्राई करे कि हमें भी बैठ के गुनगुनाने पड़ेगे। तो आओ सुना जाए।
1: तुमने मुझसे यही सवाल किया था।
2: क्या
1: मैं तुम्हें भूल जाऊं तो?
2: तुमने क्या जवाब दिया?

बांध मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाई है दोस्तों, अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और आज भी आप लोग के मस्त भरी पुराने गाने से हम आज आप लोग को सेवा करेंगे। हम चलते हैं, राज कपूर का फिल्म है और मुकेश जी ये गाना को गाए हैं।

उस देश के वासी हम हैं, और वो देश कौन है दोस्तों, जहाँ पे मुकेश रहते थे, और वो है गंगा जहाँ पर बहते हैं, और हम उर देश के वासी है दोस्तों, सूरीनाम के देश के वासी तो हम सब है। और मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाए हैं दोस्तों, जो अगर जो आप मुकेश की सुन चुके होंगे तो हम चलते हैं रफी जी के गाना भी सुनना चाहिए, और वो है इशारों इशारों में क्या होता है, इशारों इशारों में तो कभी दिल चला जाता है, नहीं दिल दिल को चुरा लेता है, दोनों होता है ना। तो आओ मिलके सुना जाए मोहम्मद रफी जी की आवाज।

इशारों इशारों में दिल देने वाले परमान श्री मोहम्मद रफी की आवाज में इस गाना क्या आपने सुना है और आशाम भोसले की आवाज में दोस्तों। और अगर रफी जी जब पिक सुनाया है तो हम तुरंत जाते करोड़ों दिल को चुराने वाले और वो है मुकेश। फिल्म का नाम है श्री 420 नेकंती होंदित 5 & 5 तक का ये फिल्म है जिसमें राज कपूर और नरगिस ने काम किया है दोस्तों। आओ मिलके सुना जाए।

और फिल्म श्री 420 का ये गाना हमने निकाल कर आप लोग को सुना दिए है। नेक दिन 5/5 का फिल्म राजकुमार और नरगिस का इस गाने में गाया है मुकेश जी और लता जी। दोस्तों हम बढ़ते हैं फिर अगला गाना की ओर, वो है परमाशी मोहम्मद रफी का ये गाना है और इसमें काम किया है शायरा बानो राजेंद्र कुमार। फिल्म का नाम है अरमान, फिल्म के नाम है अरमान और ये गाना क्या है धोरो मस्त भरी पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। मिशिक है शंकर जय किशन का और इस गाना को लिखा है हसर जयपुर का ये गाना है और आओ मिलकर सुना जाए।

0: ना।
1: तुम्हारी हर बांस पे है मुझे बहुत नाज दोस्तों। शेरा बानू रजेंद्र कुमार ने फिल्म अरमान में काम किया है और परमाशी मोहम्मद रफी जी के गाना है हसर जयपुर के साथ में। और हम और आगे को चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर हमारे दोस्तों, और ये फिल्म का नाम है और देवानंद उषा किरण फिल्म का नाम है पतिता का। ये फिल्म है दादा हेमंत कुमार और दीदी लजा जी के आवाज़ में। इस गाना को आओ सुनिए।

दादा हेमंत जी के आवाज में आप लोगों इस गाना को सुना है और एक मस्त भरी रोमांटिक हिंदी सॉन्ग है दोस्तों। इसमें काम किया है देवानंद जी और उषा किरण ने। फिल्म का नाम है पतिता दोस्तों। और उसके बाद हम चलते हैं और एक गाना के ओर और वो भी है फिल्म के नाम है, ये भी एक बहुत पुराना फिल्म है, अलबेला का ये गाना है। हमारे दोस्तों लता जी इस फिल्म में इस गाना को गाया है और इसमें भगवान ने बहुत कमाल किया है दोस्तों। आओ मिल के सुना जाए ये गाना क्या है भाई, बहुत पुराना गाना है ये, और सुना जाए।

भोली सूरत दिल के खोटे, और नाम बहुत बड़ा है कितरे को, लेकिन कर्म बहुत छोटे है दोस्तों। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े हैं बाकी दिल से बहुत खोटे हैं हमारे दोस्तों। और हमारे दोस्तों, और ये गाना को जिसके सपने में हम रोज आते हैं, और महेंद्र कुमार और लता जी बताए गए हैं, नई खंती सेफन तक का ये गाना है, आओ मिल के सुना जाए।

जिसके सपने हमें रोज आते रहे और गुना गुनगुनाते रहे, वो कहती कि क्या तू ही रह ले भैया। और जो गाना अब हम आप लोग को सुनाएंगे ये है गोरी तेरी नैनों में हम बस गए हैं, हम बस गए हैं। गोविंदा करिश्मा का ये फिल्म है और ये गाना को गाया है हमारा कुमार शानू, कुमार शानू।

बारिश बन जाना कुणाल कुणाल वर्मा का गाया हुआ ये सॉन्ग है और प्यार भरी मोहब्बत का पैगाम यहाँ से हम और आपके कानों तक पहुँचाते हैं। कि दोस्तों आप लोग को जैसे मालूम है फिर भी हम बता देते हैं, ये है रेडियो फाहौन। हमारा पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबरो 520। हम सिर्फ देहाबी प्लस रेडियो पे आप हमारा फ्रिक्वेंसी है 95.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और नहीं कनाल 8 पर और देहाबी प्लस रेडियो पे हमारा प्रोग्राम आप सुन सकते हैं 24 घंटा। नहीं हमारा वेबसाइट जो है पूरा विश्व में पूरा दुनिया पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं सुन सकते हैं और वो है www.fahon.fm.nl पर। और हम चलते हैं, मंजिल तो एक होंगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। मंजिल तो एक होगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। तलाश खत्म हो जाएंगी मेरा, तलाश खत्म हो जाएंगी मेरी जब तेरी लबों पर मेरा नाम होगा। दत्वसलमो ये है दोस्तों कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती। अगर जब आप दूर हो, आपकी चाहने वाले दूर हो, तो आप इसको जरूर अपने चाहने वालों को सुनाना कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती। बस तेरे पास आने को मेरा जी चाहता है, टूट कर सारी दुनिया की रस्मों रिवाज को तुझे अपना बनाने को जी चाहते हैं। और प्यार की बातें तो करना हमारा काम है। चिरागों में इतना नूर ना होता तो तन्हा दिल मजबूर ना होता। हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो हम चलते हैं, छाया है यो दिल पे क्या नशा है, दिल है तुम्हारा कविता कृष्णमूर्ति का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर हम सब सुना जाए।

0: किशोर कृष्णामूर्ति, कविता कृष्णामूर्ति, शान का गाया हुआ गीत है छाया है, और ये छाया है जो दिल पे क्या नशा है। और कुछ आज हम नई पुराने गीतों से आपको हम आज सेवा करेंगे दोस्तों, कि कहते हैं उनका गुस्सा और मेरा प्यार, उसका गुस्सा और मेरा प्यार एक जैसा है, क्योंकि ना उसका गुस्सा कम होता है और ना मेरा प्यार कम होता है। हमारे सुनने वालों, और गुस्सा में तो प्यार करना भी आता है, और कभी प्यार में गुस्सा करना भी आता है। कि कहते हैं हमसे दूर होकर हमारी पास हो तुम, हमसे दूर होकर हमारे पास हो तुम, हमारी सुनी जिंदगी के आस हो तुम। कौन कहता है हमसे बिछड़ जाएंगे हो तुम, हमारी यादों में हमारे साथ तुम हो, और सदा साथ ही रहेंगे। और ये सिर्फ लफ्ज़ कह सकते हैं दोस्तों, कि कहते हैं जब बारिश के मौसम आते हैं तो बारिश में और अपने चाहने वाले को याद करते हैं लोग, क्योंकि अकेले महसूस होता है। और खास करके विंटर के महीना में, कि ये बारिश का मौसम बहुत तड़पता है, ये बारिश का मौसम बहुत टपट्टा है, वो बस मुझे ही दिल से चाहता है, लेकिन वो मिलने आ भी तो कैसे आवे दोस्तों, उसके पास ना कोई गाड़ी है और ना कोई छाता है। हम चलते हैं कुणाल वर्मा के ओर, रिमझिम से ये सावन। अगर जब हम मौसम की ओर बढ़ते हैं तो रिमझिम का ये सावन और बारिश का, तो ये दोनों तो साथ में चलता है ने हमारे दोस्तों। आओ चला जाए।
1: बचाने तू मुझे, क्यों बचाया?
2: अरे तुम पागल हो गई हो?
1: वो कहता था प्यार करता हूँ, शादी के मंडप से भाग गया साला।
2: तो ये प्रॉब्लम है। ओके बाबा, सॉरी।
0: सॉरी बोलने में आप मत चूक जाना।
2: ट्रेन 6 घंटे में।
0: एक सॉरी से और क्या क्या काम न बन जाते हो दोस्तों।

और दोस्तों ये रिमझिम ये सावन रिमझिम नौ यानी कि जुबिन नौतियाओ और दीक्षा सिंह का कुणाल वर्मा का गाया हुआ सॉन्ग ही कि कहते हैं दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होगी दोस्तों। जब अगर किसी से आप प्यार करते हैं तो आप ये शेर जरूर उसको सुना देना कि दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होंगे, यादों में आपकी शिवा कोई पास और कैसे होंगे। और वो भी कहते हैं कि वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, जिनके लिए दिल में एहसास होता है, चाहे वह कितना भी दूर कर जाए, चाहे वह कितना भी दूर कर दे, दूर रह के भी वो दिल के पास ही रहता है। हमारे प्यारे सुनने वालों और कभी प्यार करने वालों को रास्ते में कभी रुकना नहीं, यानी कि प्यार का जो यानी कि उसका स्नेल हेल्थ दोस्तों बहुत लंबा होता है। कि कहते हैं कि प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं, प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं। मैं भी कल चल के देखा है हमारे दोस्तों, मुझे तो रास्ता ठीक ही लगा है। और हम चलते हैं संजना इस लव, मैं प्रेम की दीवाना हूँ, एक रोमांटिक सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कन्नाथ का ये सॉन्ग है।

Oh, Sanjana, I love you. Sanjana, I love you. हम नहीं कहते दोस्तों, आप अपना संजना को कह सकते हैं। और ये गीत है मैं प्रेम की दीवाना हूँ, रोमांटिक लव सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कुनाथ का और कायस चित्रा का ये सॉन्ग है। और दोस्तों कहते हैं वह कितना भी बदल जाए मेरे मोहब्बत कभी नहीं बदलेंगे, ये हमारा पैगाम है। दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो दोस्तों, दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो, पास रहकर कोई रिश्ता खास नहीं होता। तुम मेरे दिल के इतने करीब हो कि मुझे दूरियों के एहसास नहीं होता। कि कहते हैं जुल्फों पे फूलों को सजा कर रखना, जुल्फों पर फूलों को सजा के आए, चेहरे से दुपट्टा उठा के आए, किसी ने पूछा आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो, हमने कहा शायद आज नहा कर आई हो। तो दोस्तों हम चलते हैं, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है। और सिद्धरात मन मल्होत्रा का ये सॉन्ग है, नेहा शर्मा का गाया हुआ सॉन्ग। आज आप लोग को कुछ नए गीतों के सॉन्ग हम आज आप लोग को सुनाते दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

प्यार तो हमें भी इस गीतों से होने लगा है दोस्तों, और नेहा शर्मा का गाया हुआ ये गीत है, और हम चलते हैं कुछ प्यार भरी और कुछ शायरी की ओर। कहते हैं बहुत लकी हूँ मैं क्योंकि बहुत नसीब वाला हूँ मैं क्योंकि आपके साथ जो मिला है मुझे, और कहते हैं मिलना इफ्तिताक था, मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था हमारे प्यारे दोस्तों। मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था, वो उतना ही दूर चला गई जितना करीब था। हम उनके, हम उसका देखने के, हम उसके देखने के लिए तरस रहते थे हमारे यारो, जिस शख्स ने हथेली पे हमारा नसीब था, जिस शख्स की हथेली पे हमारा नसीब था। और कभी कभी जब उम्र लोग को उम्र जब बढ़ते हैं तो उम्र के साथ ही चलना चाहिए, कि कहते हैं उम्र के रह उम्र की राह में जपत बदल जाती है, उम्र के राह में जय बात बदल जाती है, वक्त की आंधी पे हालात बदल जाती है। सोचा था हूं काम कर करके रिकॉर्ड तोड़ दूं मैं, कम बखत पैसा ही सलारस ही देख के हर ख्याल बदल जाते हैं। अरे भैया जब आमदनी कम है तो ख्याल तो अपना बदलना चाहिए। हम जाते हैं अरिजीत सिंह, श्रिया घोषाल की ओर। शाहरुख खान और दीपक का इस फिल्म में काम किए हैं, मनवा लागे, फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर। और हैप्पी न्यू ईयर में क्या होने वाला है आप सुनिए।

और मनवा क्या क्या, मनवा कहां कहां ना लागे। दोस्तों फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉन अरिजीत सिंह श्रिया घोषाल का, जिस फिल्म में काम किया शाहरुख खान और दीपिका। दोस्तों और प्यार भरी प्रोग्राम यहां से हमारा चलते हैं रेडियो फाहुन के माध्यम से। हर एक काम के लिए आप हमें तार कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07 3 6 5 20 20 4। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा पता है न्यूटन स्ट्रांड न्यूमर 25 देन हाँ शहर से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं। मोहब्बत भरी प्यार भरी प्रोग्राम हमारा यहां से चलते हैं। मोहब्बत का कोई रंग नहीं है हमारे यारो, मोहब्बत का कोई रंग नहीं है फिर भी वो हसीन है। ये तो वैसे ही है ना भाई कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं फिर भी वो हसीन है, उसके सामने दुनिया की हर रंग अरे फिक्का से है। दोस्तों कि मोहब्बत के रंग की तरह खूबसूरत है कि कहते हैं कभी हम मिले तो भी क्या मिले थे, कभी हम मिले तो भी क्या मिले, वही दूरियां वही फासले, ना कभी हमारे कदम बढ़े ना कभी तुम्हारे झियक गई तुम्हारे यादें गई है हमारे यारो। कि कहते हैं दिल दो तो किसी एक को दो, दोस्तों दिल दो तो किसी एक को दो, अरे वो भी किसी नेक को दो, अगर देना है तो किसी नेक को दो, जब तक मिला नहीं जाए और बस मेहनत करते रहो और करते रहो। हम चलते हैं इस कदर तुमसे हमारे, इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है और इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है। लव सॉन्ग दर्शन रावल का न्यू सॉन्ग है फॉन दित्यार मेंस और हम चलते हैं इस गीत की ओर।

और दोस्तों प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हमार चलते हैं और कहते हैं कि इस कदर का ये गीत है तुमसे हमें प्यार हो गया है, इस कदर हम तुमसे हमसे और प्यार हो गया है कि कहते हैं पहले वो मेरा दोस्त थी अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। कभी कभी दोस्त के भी मोहब्बत हो जाते हैं कि पहले वो मेरी दोस्त थी अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। पहले सिर्फ उसे याद करती थी, पहले सिर्फ उसे याद करती थी और अब तो आदत बन चुका है। हमारे यारो रेडियो फोन के माध्यम से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं कि कहते हैं धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, इन सजी महफिल के बहार हो तुम, तरसती हुई निगाहों का इंतजार हो तुम, मेरे जिंदगी का पहला प्यार हो तुम। हम चलते हैं अनुराधा पौडवाल की ओर और सोनू निगम की ओर। आपकी याद आई तो दिल क्या करे।

और आपकी याद आई तो दिल क्या करे, माना कि तुम्हें थोड़ा परेशानी करते हैं, लेकिन प्यार भी सबसे ज्यादा तुझे तो ही करते हैं। खुद भी रोता है और मुझे भी रुला देता है, ये बारिश का मौसम उसके याद दिलाते हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों, दोस्तों हम जानते हैं वादा रहा सनम आई लव यू फिल्म के नाम है खिलाड़ी, इस गीत को गाया है अभिजीत भट्टाचार्य एंड अलका याग्निक। आओ मिलकर सुना जाए इस सॉन्ग।

0: ही करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काय को करे। जब किसी का मन उदास होता है तो भगवान राम यानी राम जी ही उसका बेड़ा पार करते हैं। और लोग बेड़ा पार करने की सभी सोचते हैं लेकिन कर तो एक ही सकता है। तो हम बढ़ते हैं आज का जो विषय है उसकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं उस विषय में।
1: जरूर राजेंद्र जी, विषय का बोल जो आज का वो तो अभी इस हलफ में नहीं करेंगे, हम लोग दूसरा हलफ में विषय के और अभी छलांग लगाएंगे। पर इस हलफ में जो हमारे कार्यक्रम 2 घंटा का होता है ना शांता जी, तो पहले आज विषय में हमारे विशेषज्ञों ने ये रख दिया है कि कैसे बहुत साल पहले लोग और वाहन चालक बोलते हैं ना,
0: हाँ
1: वाहन चालक,
0: वाहन चालक,
1: तो कैसे पहले कैसे हु सेंस ऑफ द इदेख कोमन ओम तखा फ्लीख। तो शांता जी आपको पता कब कब और कैसे ये इस बात पे लोग सोचे कि हम इंसान उड़ सकते हैं?
2: इंसान उड़ सकते

0: वहां से पुष्पक विमान में, पुष्पक विमान था उनके पास, और वो लंका से सब लोग जितने भी बानर रीछ और भगवान राम और लक्ष्मण जी हनुमान जी सहित सब लोग उसमें बैठ के अयोध्या आए थे। और फिर भी उसमें वो ऐसा विमान था कि उसमें जितने लोग भी बैठे बैठे फिर भी एक सीट खाली बचता था,
1: ऐसा
0: ऐसा उसकी विशेषता ये थी। तो जब ये कथा सुनी बड़े बड़े विद्वान लोगों ने और जिन्होंने ये हवाई जहाज बनाया था, उन्होंने यहीं से आइडिया लिया कि अगर उड़ने वाली कुछ चीज होती होगी तो ऐसा हम लोग बना सकते हैं। तो वहीं से उस जहाज का जो है
1: जो शुरू हुआ
0: और आज पूरी दुनिया यहाँ से वहां जा रही।
1: पर मास्टर जी वो बात हो जाता कि वो तो कितने, क्योंकि ये आप बोल कह रहे हो
0: जी
1: सतयुग का बात है ना।
0: हाँ,
1: तो ये सतयुग उसके बाद में
0: त्रेता का बात
1: तो त्रेता के बाद द्वापर आए अब कलयुग में, और अभी उड़ने के तो बस यानी कि जो नई खंती
2: नई खंती
1: में जो दो भाई थे ना
2: जी,
1: दो भाई राइट जो थे, तो उन्होंने पहला बार एक ऐसा चीज बनाए थे जिसे बड़ा गर्व के साथ उन्होंने ये बात को रखे कि हमने आज एक जहाज बनाया जिसे उड़ पाए। और वो सिर्फ मेरे ख्याल से एकदम 12 सेकंड जो आसमान में थे और सैफनंद अर्थक मेहतर जो उड़ पाए थे, तो पर उसी के माध्यम से उसी से और शुरू किए और आज अब देखिए कितने बड़े बड़े जहाज हो गए हैं ना।
2: और तो वो बात ये भी आए के पहुंचे हैं जैसे अभी राजेंद्र जी ने कहा ना कि ये तो अभी तो 100 साल है ना, और जो राम के कथा के वो विमान जो अभी राजेंद्र ने वो तो सालों सदियों पुराना के बाद है,
1: सदियों पुराना
2: के बाद है। और ये मैं भी सुनी हूँ कि जब जो बिब्लियोथेक वहाँ पे भारत के जो था
3: नालंदा
2: तो उस बिब्लियोथेक वो मुगल के युग में जब वो बिब्लियोथेक को जलाने से पहले तो वहाँ से अब आज़ाद नहीं हुआ था भारत, ये हमारे अंग्रेजों और यूरोप वाला, तो वहाँ से ऐसे कई पुस्तकें जो हमारे ऋषि मुनि जो वहाँ बना कर रखे थे, तो वहाँ से ऐसे कई पुस्तकें वहाँ से सब लेकर आए हैं यूरोप में और ऐसे अन्य देशों में
1: और आगे तरक्की भयल है यानी कि टेक्नोलॉजी के,
2: तो वो सब तो संस्कृत में लिखा था। तो अब संस्कृत पढ़ने के लिए तो हमारे गोरेजात भी गए सीखने के लिए संस्कृत पढ़ने, तो संस्कृत पढ़ के तो वो जो किताब लिखा था तो उसको अनुलेख किया है। तो इसी प्रकार से सब ऐसे तो अब ये हमारे यूरोप वाला और ये गोरे लोग कहते कि उन्होंने निकाले।
1: पर राजेंद्र जी देखो शांता जी ने कितना जानकारी हम लोग के दे दिया ना, क्योंकि जो आज हमारे संत मुनियों के लिखे हुए से हम लोग के टेक्नोलॉजी कितना आगे, दुनिया की तरक्की कितना भयल।
2: हाँ, ये जो शब्द मैं कह रही हूँ ये शब्द जो है हमारे भारत के एक विद्वान जो खोजबीन कर और यहाँ पे भी एक हमारे हॉलैंड के एक रेडियो से ये प्रचार की है, तो हमने सुनी तो वही बात मैं यहाँ दोहरा रही हूँ।
1: बहुत अच्छा रूप से। पर शांता जी ऐसा है कि जब हमें जब ये पुष्प क्या कहते हैं राजेंद्र जी पुष्पक विमान ये एक विमान था कुबेर जी का ना।
0: हाँ।
1: और जब इस बात को जब रामानंद सागर ने जो रामायण बनाए थे ना
0: जी
1: ससन ताख्त में, तो जब हमने पहला बार इसको दृश्य देखे कि कैसे बनाया गया ना, तो अब जब इस बात का चर्चा हो रहा है तो इसमें वो करैक्टर का ख्याल आ रहा कि रावण का करैक्टर जो था उसमें, तो क्यों ना पहले हम शांता जी पहले कुछ कार्यक्रम में धुन डालते हैं कि रावण जो जा करके और सीता का हरण किए थे और फिर वहां हम लोग देखे पहला बार कि पुष्पक विमान किस प्रकार से जो अपने संत मुनियों के और जा करके ज्ञान से वो ऐसे आफ बेल्द किए थे ना
2: जी। हाँ।
1: तो राजेंद्र जी क्यों ना एक सुंदर सा पहले हम लोग दृश्य डालते हैं उस ओर।
0: जो दृश्य है उसके बोल बहुत ही अच्छे हैं और यही रात अंतिम यही रात भारी रावण पूजा करता

और इसी बहुत ही अच्छा जो भजन करता है भक्त, रावण शंकर जी का भक्त रहता है, और उसकी वो आखिरी रात होती है, तो उसी आखिरी रात के विषय में रावण की एक झलक इस प्रकार से देखने को मिली।

0: यही रात अंतिम, यही रात भारी।
1: तो जब रावण की रात अंतिम हो गई है तो भारी तो होगी ही। तो बात करते हैं, अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं। पंचवटी यानी पंचवटी का स्थान जो है, जहाँ प्रभु श्री राम, माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण वनवास के समय रह रहे थे, वो जगह पंचवटी नाम से, हमारे मामा जी तो वहां गए भी हैं पंचवटी में। यही सूपनखा आई थी, उस प्लेस जो जगह रहा वहां सूपनखा आई थी, सूपनखा, और भाई और लक्ष्मण से विवाह करने के लिए उपद्रव करने लगी कि हमसे शादी कर लो। लक्ष्मण जी से पहले बोला, फिर वो बोले कि हम तो यति हैं, हम तो नहीं कर सकते। फिर राम जी के पास गए, राम जी बोले हमारे पास, हमारे तो ऑलरेडी सारी सुरा है। इस प्रकार से
2: राजेंद्र जी बात ये हो जाता है वहाँ। अब ये बात को तो हम लोग बहुत देखे ना रामायण में।
1: हाँ, हाँ।
2: जा करके जो सूपनखा नाम ना,
1: हाँ, सूपनखा
2: रावण का बहन ऐसा जा करके और लक्ष्मण जी से ये मांग किया कि मुझसे शादी कर लो।
1: हाँ, पहले राम जी से किया, फिर लक्ष्मण जी से किया, फिर राम जी से, फिर लक्ष्मण जी से, बहुत प्रकार से, अलग अलग प्रकार से बोला था। फिर लक्ष्मण जी ने उनकी नाक कान ही काट ली।
2: शांता जी, आपको पता था?
3: हमने पढ़ी और देखी भी है।
2: पढ़ी और देखी भी।
1: हाँ, रामायण में देखी होगी। रामायण तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा
2: प्रचलन
1: वाला जो।
2: और ये बात को सभी जानते हैं कि सूपनखा जब पहले जब रामलीला हुआ था ना, तो रामलीला होते थे हमारे और गाँव में, और जिस दिन सूपनखा के नाक कटाए वाला दिन होता था तो वो दिन और ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाता था। और खास करके कुछ लोग जो राक्षस बन के, और ऐसे हम लोग बच्चे थे।
1: हाँ।
2: तो मैं थोड़ा से वो गदा से मारते थे ना हम लोग के।
1: हाँ,
2: ताकि हाँ साइट में रहे। और उस दिन बड़ा हंगामा होते थे जिस दिन पंचवटी में जा करके। पर ये बात तो अब आज ये, क्योंकि हम तो थोड़ा डरते थे, वो राक्षस लोग इस प्रकार से बनाया जाता था, भयानक रूप दे देते थे। क्योंकि वो भी एक ऐसा है कि सूरीनाम में कुछ कलाकारों थे जिन्होंने, जिनमें वो कला था कि किस प्रकार से जो मास्क आदि बनाने का ना, कैसे बनाते थे ये इस बात को पता नहीं, पर हर बार कहीं कोई जानवर की तरह नहीं, कोई अलग अलग रूप दे देते थे। ये बात चलो 150 साल पहले लेकर के हमारे भारतवासी जाकर सूरीनाम में चलते रहे, पर आज तलक भी देखो ना कि कितना उस समय पे, जबकि सामान कितना कम थे, और वो लोग ऐसा ऐसा और
3: अपना कल्पना,
2: हाँ, अपने
3: बना देते थे।
2: सही बात।
3: फिर भी रावण के ये खूबियाँ
2: है राजेंद्र जी।
1: जी,
4: रावण के ये खूबियाँ, अगर हम यहाँ बात करते हैं सूपनखा के बारे में ना, तो वो अपने बहन के सम्मान के लिए भगवान से लड़ चुका।
2: बहन जो यानी कि भाई के, अपने बहन के लिए।
4: हाँ, बहन के सम्मान के लिए वो भगवान से भी लड़ चुका, लड़ पड़ा।
2: तो शांता जी, अभी गत दिनों भी देखो हम लोग का भी त्योहारों में त्योहार भी आए, और एक त्योहार भी होता है भैया दूज,
4: दिवाली के
2: कुछ तीन दिन बाद में होते हैं, और वो भी एक भाई और बहन का प्रेम प्यार का बारे में होते हैं ना।
4: जी,
2: उस दिन भाई लोगन बहन के घर जाते हैं, तिलक लगाते हैं बहन, और उन्हें के लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाते हैं ना। पर यहाँ ये वृतांत इसमें थोड़ा से जोड़ दिया गया कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक बहन के लिए भगवान से उन्होंने
4: लड़ने के भी
2: तैयारी हो गई।
4: हाँ।
2: तो दोस्तों ये सोचने वाला बात हो जाता है। राजेंद्र जी, क्यों ना हम आगे बढ़ते हैं ये वृतांत के लेकर।
1: हाँ, वृतांत को आगे बढ़ाते हुए फिर लक्ष्मण जी विवश होकर सूपनखा की नाक यानी नासिका काट दी, और आज उसी स्थान को हम नासिक महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं,
2: जो भारत में वो जो स्थान नासिक।
1: हाँ, वहीं पे नासिका काटी गई थी सूपनखा की।
4: तो ये आज पता चला।
1: हाँ, पुष्पक विमान में जाते हुए सीता जी ने देखा कि एक पर्वत के शिखर पर बैठे हुए कुछ बानर ऊपर की ओर कौतूहल से देख रहे हैं, तो सीता जी ने अपने वस्त्र की कोर फाड़ कर उसमें अपने कंगन बांधकर नीचे फेंके ताकि राम को उन्हें ढूंढने में सहायता प्राप्त हो सके। जिस स्थान पर सीता जी ने उन बानरों को ये आभूषण फेंके थे वो स्थान ऋष्यमुख पर्वत जो आज के हम्पी यानी कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद वृद्ध गिद्धराज जटायु ने,
2: राजेंद्र जी, ऋषि मुख पर्वत वहीं पर यानी कि वानरों के लिए सीता जी ने और जाकर के विमान से और अपना आभूषण,
1: हाँ आभूषण फेंके थे ऋषि मुख पर्वत पे। वो स्थान कर्नाटक में है, उसको बोलते हैं हम्पी,
2: हम्पी स्थान का नाम
1: जी
2: है।
1: इसके बाद वृद्ध गिद्धराज जटायु ने रोती हुई सीता जी को देखा कि कोई राक्षस किसी स्त्री को ब्लाक यानी अपने विमान में लेके जा रहा है। फिर जटायु जी ने सीता जी को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया। रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट दिए।
2: ओ हो हो, पंख वहीं कटा गया,
1: वहीं कटा गया। इसके बाद जब राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते हुए पहुंचे तो उन्होंने दूर से ही जटायु का सबसे पहले संबोधन किया, हे पक्षी कहते हुए किया, और उस जगह का नाम दक्षिण भाषा में ले पक्षी यानी आंध्र प्रदेश में स्थित है।
2: स्थान का नाम आंध्र प्रदेश,
1: आंध्र प्रदेश तो वो स्टेट है लेकिन स्थान का नाम है ले पक्षी।
2: ले पक्षी,
1: हाँ।
2: तो हमारे सुनने वालों भी कितने लोग हैं जो वहां पर जरूर और जा करके दर्शन किए होंगे ना।
1: हाँ, अब समझ में आया कि पंचवटी, हम्पी, ले पक्षी, श्रीलंका सीधा रास्ता। सब लोग समझ ही गए होंगे कि पंचवटी से हम्पी, हम्पी से ले पक्षी और इसके बाद श्रीलंका सीधा रास्ता आता है। सबसे छोटा रास्ता हवाई रास्ता यानी हमारे जमानों में विमान के सबूत, और जब लोग गूगल ऐप पर देखते हैं तो तब पता चलता है कि रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया सत्य इतिहास है जिसमें समस्त वैज्ञानिक प्रमाण आज भी उपलब्ध है और लोगों को ये प्रमाण देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोग तो यहाँ से जाते हैं, अभी हमारे मामा जी भी गए थे वहाँ पे और जहाँ पे भगवान राम रहे, और उसके बाद कई जगहों गए और बहुत सारे लोग मैंने सुना है लोग बताते हैं कि हम श्रीलंका गए वहाँ ऐसा हुआ। तो जो हमारे भारत के लोग पहले सूरीनाम गए, सूरीनाम से नीदरलैंड्स में आए और उनकी जो वो रहते तो यहाँ हैं लेकिन उनका जो ब्लड रिलेशन है वो भारत ही है, और छः छः महीने में या साल भर में एक बार लोग वहाँ ज़रूर जाते हैं। तो इस प्रकार का जाना भी चाहिए और लोग अपने अपने कार्यक्रम में छुट्टी फकांसी लेके इन लोग इन तरफ जाते हैं और इनका आनंद भी लेना चाहिए। यहाँ जाने से बड़ा सुकून मिलता है लोगों को और लगता है कि हाँ ये वो जगह है, तो जो लोग जाना चाहेंगे तो जा भी सकते हैं इन जगहों पर।
2: तो राजेंद्र जी ये बात हो जाता है कि ना कि सिर्फ हमारे भारतीय लोग इंडिया को जाते हैं, ना दुनिया के हर एक कोना से और यहाँ तक इराक, ईरान का लोग भी और सभी देशों से। एक ऐसा देश है भारत जहाँ पर लोग कोई प्रकार से रुकता नहीं, उधर जाने का एक बार ये चले जाते हैं तो बार बार उसके खींचते रहते हैं। पर ऐसा भी होता है कि कितने लोग गए हैं यहाँ से एक बार और जो नहीं पसंद आया तो उसके बाद में फिर दोबारा नहीं जाता, ऐसा भी होता है ना शांता जी?
4: ऐसा भी है, ऐसे कई व्यक्ति भी गए हैं और जिसको पसंद नहीं आई वो दोबारा नहीं जाना चाहते हैं।
1: हाँ, क्योंकि हर व्यक्ति जो है एक जैसा ही नहीं होता है, अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, अलग सोच है, अलग विचार है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, जरूरी नहीं कि एक ही चीज सबको अच्छी लगे। तो जिस प्रकार का जो व्यक्ति है जिसको जो अच्छा लगता है, पूर्ण रूप से व्यक्ति स्वतंत्र होता है। कोई गोवा जाता है तो कोई राम जन्मभूमि जाता है, भारत का ही एक व्यक्ति, तो जिसको जहाँ अच्छा लगता है वो जाता है और उस प्रकार का जैसी जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी अपनी भावना के अनुसार व्यक्ति जैसी रखता भावना वैसे उसका हो जाता है।
4: जी जी।
2: पर राजेंद्र जी, जैसे हमारे खोजी सेना, जैसे आप कहते हैं ना, हमारे खोजी सेना ने हम लोग के लिए यहाँ पर और खोज करके रख दिए है ना, पंचवटी से और जा करके श्रीलंका।
1: हाँ,
2: तो ऐसा एक चित्र बनाइए, एक चित्र मेरे ख्याल से नासा का चित्र है ना, तो ऐसे एकदम सीधे सीधे वो अपना विमान से वहां पर पहुंचे श्रीलंका,
1: सीधा
2: एकदम सीधा।
5: लेकिन ये भी है कहाँ नासिक, कहाँ कर्नाटक और कहाँ श्रीलंका, एकदम नीचे।
2: तो यही बात हो जाता मत चित्र के अनुसार देखा जाए कि देखो एक कार्यक्रम हम लोग बनाए थे ना राम सेतु,
5: हाँ
2: तो उसमें देख बताया गया कि कितना लंबा चौड़ा है वो सागर को पार करना था ना
5: जी।
2: और यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि इतना सो अक्यूरेट कि उस समय पे और जा कर के विमान जो पुष्प विमान है और जा कर के यहाँ से और निकल करके एकदम श्री लंका तलक किस प्रकार से पहुंचे, तो ये एक सोचने वाला बात हो जाता कि अभी कितना चीज है जो अभी तलक लोग खोज में है।
4: वाकई में तो ठीक कहा संजय जी कि लोग अभी खोज में वेतन स्काप इस न्यू आनत सुकतर वेल दी आल बफेस्ट सेन हे फिल बफेस्ट सेन आलस इस बफेस्ट मार ओम दैट मैन हैड नीट वेल एक्सेप्टेर खान से सेल्फ अप ऑन द शुक।
2: अब जैसे नासा ने संदेश रखे थे कि सूर्य में और जाकर के कुछ छेद और उसके अंतर्गत में मंत्र द्वारा मैंने सुना है कि वो तो कितने मंत्र जो हमारे होते तो कितने पुराण
4: जी,
2: तो वो तो कब के संदेश दे चुका है, ये अब आए हैं, अब इसका ज्ञान हो रहा है कि कितना वद अफस्तांत इस तो से द अर्थ एंड सोन इसे इस प्रकार के, और अब संदेशों धीरे धीरे और अक्यूरेट भी और बढ़िया भी, क्योंकि अब आजकल मार्स जुपिटर और यानी कि ग्रहों पे हमारे वैज्ञानिक लोग पहुंच चुके हैं ना,
4: हाँ।
2: और फिर भी कितने चीज है जो आगे से हमारे संदेश में रखा गया और जब अब बफेस्तक हो रहा है, तो राजेंद्र जी क्यों ना हम एक और सुंदर सा
1: शिव तांडव जो है रावण का, रावण द्वारा रचित है, और जब रावण की रावण एक बार अपनी मस्ती में ही शिव कैलाश पर्वत को उठा लिया और फिर पार्वती जी ने बोला कि ये ठीक नहीं है, ज़्यादा उपद्रव, थोड़ा जरा मजा चखाओ रावण को, तो शंकर जी ने उसमें थोड़ा वजन और रखा और रावण के हाथ वहीं फंस गए। जब रावण के हाथ नीचे फंस गए पर्वत के नीचे, तो फिर रावण चिल्लाया शिव जी की, तो वही बोल हैं कि जटाट हुई गलत जला प्रभाव पाओ स्थलीय अपनी बहुत जटा जूट एकदम शंकर जी की स्तुति करके, फिर शंकर जी प्रसन्न हुए इस स्तुति से और रावण के हाथ छोड़ दिए।
4: राजेंद्र जी क्यों ये रावण महाराज जो है क्यों गाय के वो शिव के पर्वत में हिलाए, क्यों के?
1: क्योंकि जब व्यक्ति पे अपनी ताकत का अभिमान हो जाता है तो वो चाहता है कि उसको दिखाया जाए, प्रत्यक्ष किया जाए, तो वही वो दिखाना चाह रहा था और उसकी दिखाई से ही वो हो गया।
4: हाँ, वो अपना दाखेंगे कितना उतना क्रखती रहा ना, उतना हाँ, उतना शक्ति रहा, ताकि हाँ, सब जगह अपन शक्ति प्रमाण कर चुका था, और दाखेंगे अपना रहेगे रहा तब इनक तो के बचल हा कि जहाँ शिव जी के निवास है ओके जाके हिलाए, तो देखो ना उसका ताकत और दाखेंगे। ऐसे भी एक एक सीख भी है ना राजेंद्र जी कि जीवन में ऐसे ऐसे शांत नहीं बैठना चाहिए। मैं नहीं कहती कि कुछ बुराई करो, पर शांत नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए।
1: बुराई क्यों करो जब अच्छाई करने के लिए है?
4: ना ना, मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये तो रावण के जो बुराई कर रहा था ना उसका, मैं ये इस बात पे कहती हूँ कि जीवन में बैठना नहीं चाहिए,
1: हाँ,
4: कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहिए अपना के उद्धार करने के लिए,
2: क्योंकि जीवन में तरक्की होना ही चाहिए।
4: हाँ, देख रावण ने उसका शिव जी के वहाँ पर्वत हिला दे और उसको नाम हो गए, आज तक उसका लोग गाते हैं, उसका तांडव भी हो गए
2: उसका तांडव भी हो गया। और ये बात हो जाता राजेंद्र जी की प्यार और विश्वास दो ऐसा पंछी है, इसमें अगर एक उड़ जाता तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है, तो क्यों ना हम पहले वो शिव तांडव के बढ़ते हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी संदेश बाकी है ना,
1: बहुत बाकी।
2: हो हो, तो चला देते हैं पहले
1: की ओर बढ़ेंगे, लेकिन क्यों ना शिव तांडव पहले चला दिया
2: जाए,
1: क्योंकि लोग भी तो चाहेंगे शिव तांडव क्या है, इंतजार कर रहे होंगे।

0: तो राजेंद्र जी, ये सुंदर संदेश जो आपने रख रहे हैं हम सबके लिए, और ख़ास करके जो रावण का और संदेश है, उसमें कुछ और आपको रखना है?
1: क्यों ना हम थोड़ा सा बात करते हैं ऋषिमुख पर्वत की और रावण के बारे में। हाँ बबली जी, आप बताएंगे।
2: हाँ जी जरूर। बस रावण ने सीता जी का अपहरण पंचवटी नासिक महाराष्ट्र से किया और पुष्पक विमान द्वारा हम्पी कर्नाटक, ले पक्षी आंध्र प्रदेश होते हुए श्रीलंका पहुंचा। आश्चर्य होता है जब हम आधुनिक तकनीक में देखते हैं कि नासिक, हम्पी, ले पक्षी और श्रीलंका बिल्कुल एक सीधी लाइन में है। अर्थात यह पंचवटी से श्रीलंका जाने का सबसे छोटा रास्ता है।
1: हाँ, तो यही रास्ते में जब लोग जाएंगे ऊपर से देखेंगे जहाज से, तो एकदम सीधा दिखेगा। और उस समय जहाज तो नहीं रहा, लेकिन पुष्पक विमान तो रहा। तो उस पुष्पक विमान के अनुसार लोग चलते थे। लोग कहाँ से चलते थे, लेकिन केवल उस समय तो रावण ही चलता था। और बाद में भगवान राम ने वो पुष्पक विमान को श्रीलंका से अपने भारत में लेके आए। और वो पुष्पक विमान रावण का भी नहीं था, वो कुबेर का था। कुबेर से उन्होंने छीन लिया था। और फिर वो हमारे जहाँ पे अभी हमारे मामा जी गए थे, उस जगह पे उतरा।
0: और जहाँ पर तुलसीदास जी ने और घिस घिस करके और
1: चित्रकूट धाम में,
0: चित्रकूट धाम,
1: हाँ, और अयोध्या में वो पुष्पक विमान उतरा था।
3: तो पुष्पक विमान रावण ले लिया था कुबेर।
1: हाँ, कुबेर से रावण ले लिया था। फिर रावण से जब रावण मारा गया, युद्ध में हार गया, मार गया,
3: हाँ।
1: इसके बाद भगवान राम ने सारी सेना बिठा के उसी पुष्पक विमान में अयोध्या की तरफ आ गए थे।
3: तो एक्चुअली में जब हम देखे, जैसे कथा हमने सुने हैं और फिल्म जो देखे हैं, तो रावण ब्राह्मण बहुत महान था, बड़ा था,
1: हाँ,
3: और
1: हाँ।
3: उसके पास ये श्रीलंका जो है, कैसे कहते हैं, लंका जो है, ये खौद महल, वो उनका भी नहीं था।
2: सोने का लंका
3: वो उनका भी नहीं था, राजेंद्र जी।
1: हाँ नहीं, वो तो भगवान शंकर ने अपने लिए,
3: पार्वती
1: ने शंकर जी की आग्रह किया था कि ये कुछ ऐसा जगह होना चाहिए
3: जी,
1: कि हम लोग जब देखो हिमालय में बैठे रहते, कोई अपना महल नहीं, कुछ रहने का स्थान नहीं। शंकर जी ने बोला कि हमारे लिए ये सब चीज नहीं है, हम लोग तो एकदम तपस्या वाले लोग हैं, और तपस्या वाले लोगों के लिए घर नहीं होता है, उनके लिए तो पर्वत और गुफाएं ही होती है।
3: हाँ।
1: तो पार्वती जी नहीं मानी, उन्होंने बोला नहीं नहीं ये तो बनाना ही है। तो उन्होंने फिर जो देवताओं के मिस्त्री थे, उनको बुलाया, विश्वकर्मा जी को, और उन्होंने ऐसे नजर फिराई, और नजर फिराते ही बन गया सोने की लंका। और समुद्र के बीच में पानी में उन्होंने बोला कि ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ कोई न जाए, केवल अलग सी जगह समुद्र में बीच में बना दी। और जब रावण वहाँ पे इस प्रकार से लंका बनाई और फिर उसके उद्घाटन के लिए बुलाया पंडित जी को, तो पंडित जी ने सोचा कि, उन्होंने बोला कि मांगो क्या मांगते हो,
3: शिव जी का।
1: पार्वती जी ने बोला कि मांगो क्या मांगते हैं, तो उन्होंने बोला कि रहने दो, क्या मांगना है होने दो। नहीं, उन्होंने नहीं नहीं अब तो ये तो उद्घाटन, उन्होंने बोला देना ही है, अगर मैंने जो मांगा तो दे दोगे, उन्होंने हाँ दे दे, अगर देना ही है तो लंका ही दे दो मेरे को, तो वो लंका ही मांग ली। फिर पार्वती जी ने बोला कि जा रावण, वो तेरे एक दिन ये लंका जो है ये भस्म हो जाएगी, और इसको एक कोई शंकर जी का अंश ही इसका भस्म कर देगा, क्योंकि हमने अपने लिए बनाई थी और तूने यही दान में मांग ली। इसलिए पंडित लोगों को तनी समझ के दान मांगना चाहिए, जो जो जो उपयुक्त हो वही दान मांगना चाहिए, नहीं तो फिर कोई काम नहीं आता, बाद में मुसीबत देता है। तो इस प्रकार से वृतांत था। अब हमारा समय जो है न्यूज की वो, और उससे पहले, न्यूज से पहले पहले हमारा समय तो चल रहा है, उसको हम पहले पूर्ण कर लें, इसके बाद अपना विषय की ओर बढ़ेंगे। तो रावण ने सीता जी का अपहरण पंचवटी नासिक महाराष्ट्र से किया और पुष्पक विमान द्वारा हम्पी कर्नाटक में पहुंच गए श्रीलंका से होते हुए। आश्चर्य होता है कि हम आधुनिक तकनीक से देखते हैं कि नासिक, हम्पी, लेपक्षी और श्रीलंका बिल्कुल एक सीधी लाइन में हैं। अर्थात ये पंचवटी से श्रीलंका जाने का सबसे छोटा रास्ता है। अब आप ये सोचिए उस समय गूगल मैप नहीं था जो शॉर्टेस्ट वे बता दे।
0: नाफी खातर भी नहीं होंगे ना?
1: ना ना वो तो अब भी नाफी खातर तो अब भी हुआ कुछ
0: नहीं, नहीं ऐसा क्यों मैं क्योंकि ऐसा मैंने क्यों कहा
1: हाँ,
0: क्योंकि
1: हाँ।
0: आज से कुछ साल पहले घर से बच्चा जब पैदा हुआ तो स्कूल जाने लगा तो उनका ये प्रश्न था कि पापा आपके पास पहले कौन सा आईफोन था, एन था या कौन सा आईफोन था, क्योंकि अब तो आईफोन बड़ा ऊंचे नंबर से है ना
1: हाँ, हाँ।
0: तो वो लोग बच्चे लोग सोचते कि पहले कुछ और था
1: और रहा होगा,
0: जैसे कि विंडोज अख्तर नहीं तक पहले चलते थे आप और छोटे होते, ये प्रश्न वो लोग के होते हैं बच्चों के कि कैसे पहले उतना बड़ा था अब और कम हो गया। तो इस प्रकार से जैसे कि आप कह रहे हैं राजेंद्र जी आगे बढ़िए।
1: हाँ तो फिर यही बात है आगे कि सबसे छोटा और सीधा मार्ग कौन सा है, क्योंकि गूगल भी नहीं था कैसे पता चला होगा उस समय। अगर भारत विरोधियों के अहम संतुष्टि के लिए मान भी ले कि चलो रामायण केवल एक महाकाव्य है, कुछ लोग कहते हैं कि रामायण कोई सच नहीं है काव्य है,
0: काव्य जी
1: बताया गया है जो वाल्मीकि ने लिखा, तो फिर ये बताओ कि उस जमाने में भी गूगल मैप नहीं था तो रामायण लिखने वाले वाल्मीकि को कैसे पता लगा कि पंचवटी से श्रीलंका का सीधा छोटा रास्ता कौन सा है। महाकाव्य में तो किन्हीं भी स्थानों का जिक्र घटनाओं को बताने के लिए आ जाता है, लेकिन क्यों वाल्मीकि जी ने सीता हरण के लिए केवल उन्हीं स्थान का जिक्र किया जो पुष्पक विमान का सबसे छोटा और बिल्कुल सीधा रास्ता था। ये ठीक वैसे ही है कि आज से 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी को कैसे पता कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लीलो ताही मधुर फल जामु, यानी 152 मिलियन किलोमीटर। आप समझे ला मिलियन कितना कर बोले ला?
0: बहुत, तो में जीरो काफी होता है।
1: देखो इकाई एक, दहाई दो, सैकड़ा तीन, हजार चार जीरो लगता तो 1000 होता है
0: जी।
1: इकाई दहाई सैकड़ा हजार, फिर 10000, फिर 10000 को 1 मिलियन बोले
0: हाँ जी।
1: तो जब 152 मिलियन हो गया तो इतना दूरी है पृथ्वी से सूर्य की 152 मिलियन किलोमीटर।
0: सही बात।
1: तो कैसे उन्होंने लगाया? युग सहस्त्र योजन पर भानु, युग सहस्त्र योजन मतलब 152 मिलियन किलोमीटर, जबकि नासा ने हाल में ही कुछ वर्षों में इस दूरी का पता लगाया है। नासा जो एक साइंटिस्टों का सेंटर है जहां से सब चीजों का पता लगाया जाता है, तो उन्होंने पता लगाया तो एकदम एक्यूरेट निकला है। तो इसीलिए कहते हैं कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, इसलिए हमारे जो रामायण है, भगवद गीता है, पुराण है, भारतीय, ये ऋषियों मुनियों ने जो घोट घोट के और खींच खींच के और खोज खोज के काम किया है वो आज भी एक्यूरेट है, और विज्ञान अभी उस वहाँ तक नहीं पहुँचा। विज्ञान तो केवल देख रहा है अभी कि कैसा हो रहा है, लेकिन वहाँ वो ऑलरेडी उस समय न होते हुए भी इतनी सुविधा हो चुका था। तो अब हमारा समय जो है न्यूज की तरफ चलता है, बात करते हैं फिर आगे की।
0: जरूर, न्यूज और कमर्शियल की ओर,
1: कमर्शियल की ओर
0: वालों आप हम लोग से जुड़े रहना, क्योंकि अभी न्यूज और कमर्शियल के बाद हम सब फिर दोबारा और आज का ऑफिशियल विषय जो उसे लेकर हम सब आने वाले हैं।
4: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio. Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De Verenigde Staten gaan de toegang van Iraanse luchtvaartmaatschappijen tot landingsplaatsen, tankstations en ticketverkopen blokkeren. Dat meldt de Amerikaanse minister van Financiën. Hij geeft geen verdere details. Volgens de minister stortte de Iraanse economie en munt in door de economische campagne tegen het land. Het warenhuis De Bijenkorf heeft veel last van zuinige consumenten. De klantbestedingen zijn het afgelopen jaar op vergelijkbare basis met meer dan 8% gedaald. De Bijenkorf merkte ook dat zijn webshop minder bezoekers kreeg dan een jaar geleden. Het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort zijn vanaf vanmiddag 2 uur uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt de burgemeester David Molenburg. De aanleidingen voor het uitroepen van dit veiligheidsrisicogebied zijn de onrust en overlast in het Pinksterweekend en de gesprekken met eigenaren van bijna 30 strandpaviljoens. Vakbonden beëindigen hun gesprekken met het kabinet over sociale zekerheid. Dat hebben vakbondsvoorzitters Hans Spekman van FNV en Hans van den Heuvel van CNV gezegd na een gesprek met ministers op het Catshuis. Bezuinigingen op sociale zekerheid blijven te veel boven de markt hangen. En daar zijn de bonden op tegen. En dan het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen eerst nog zonnig bij 26 tot 32 graden. Later in de middag kans op flinke regen- en onweersbuien.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736322747 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Via Fahon Hindustani Radio hai aur hum sab yahan live broadcast kiya ja raha hai. Den Haag shahar se Newtonstraat 25. ये कार्यक्रम जो ज्योति का प्रकाश जिसमें हम सभी मिलकर के और कुछ न कुछ संदेश रखते रहते हैं और शांता जी भी तैयार हो गए हैं कुछ हम सबको सुनाने के लिए. शांता जी, आज का और मौसम के अनुसार तो मौसम तो भी ठीक है ना?
7: मौसम तो ठीक रहेगा अभी.
0: बबली जी, आप मैं देख रहा हूँ कि कुछ सुनाने वाले हैं. हम सब अभी विषय की ओर बढ़ने वाले हैं क्योंकि विषय जो आज का है, राजेंद्र जी, क्या मैं वो विषय के बारे में कह सकता हूँ?
1: जरूर जरूर, विषय के बारे में तो कहना ही चाहिए.
0: एक शाम प्रेमी के लिए. तो एक शाम जो प्रेमी के लिए अभी हम सब सुनाने वाले हैं अपने सभी सुनने वालों के लिए, पर बबली जी भी यहाँ पे कुछ संदेश लेकर उपस्थित है सुनने वालों. और बबली जी, आपका माइक इस समय ऑन है तो आप अपना संदेश जरूर सुना सकते हैं.
2: हाँ जी जरूर. कल दोपहर मैं बैंक में गया था.
0: आए?
3: अच्छा,
0: पैसा निकालने का क्या?
2: नहीं, ये जो मैं आपको सुना रही हूँ उसमें है.
0: अच्छा, एक वृतांत.
2: हाँ जी, वृतांत में है
0: तो सुना दीजिए.
2: वहाँ एक आदमी भी अपने काम से आए थे. वहाँ वह कुछ ढूंढ रहे थे. मुझे लगा शायद उन्हें पेन चाहिए, इसलिए उनसे पूछा तो वह बोले, बीमारी के कारण मेरे हाथ कांप रहे हैं और मुझे पैसा निकालने की स्लिप भरनी है. उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि कोई मदद कर दे. मैं बोला, आपको कोई हर्ज ना हो तो मैं आपकी स्लिप भर देता हूँ. उन्होंने मुझे स्लिप भरने की अनुमति दे दी. मैंने उनसे पूछकर स्लिप भर दी. रकम निकाल कर उन्होंने मुझसे पैसे गिनने को कहा. मैंने पैसे भी गिन दिए. हम दोनों एक साथ ही बैंक से बाहर आए तो वह बोले, सॉरी, तुम्हें थोड़ा कर्ज तो होगा परंतु मुझे रिक्शा करवा दो. इस भरी दोपहरी में रिक्शा मिलना बड़ा कष्टकारी होता है. मैं बोला, मुझे भी उसी तरफ जाना है, मैं तुम्हें कार से छोड़ देता हूँ. वह तैयार हो गए. हम उनके घर पहुँचे. 60x100 के प्लाट पर बना हुआ घर, क्या बंगला कह सकते हैं. घर में उनकी वृद्ध पत्नी थी. वह थोड़ी डर गई कि इनको कुछ हो तो नहीं गया, जिससे उन्हें छोड़ने एक अपरिचित व्यक्ति घर तक आया है. फिर उन्होंने पत्नी के चेहरे पर आए भावों को पढ़कर कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, यह मुझे छोड़ने आए हैं. फिर बातचीत में वह बोले, इस भगवान के घर में हम दोनों पति पत्नी ही रहते हैं.
0: क्या कहे उसने बबली जी?
2: इस भगवान के घर में हम दोनों पति पत्नी ही रहते हैं. हमारे बच्चे तो विदेश में रहते हैं.
0: ऐसा?
2: हाँ जी, उन्होंने अपने घर को भगवान का घर बोला. तो
0: क्या संदेश?
2: मैंने जब उन्हें भगवान के घर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे परिवार में भगवान का घर कहने की पुरानी परंपरा है। इसके पीछे की भावना है कि यह घर भगवान का है और हम उस घर में रहते हैं, जबकि लोग कहते हैं कि घर हमारा है और भगवान हमारे घर में रहते हैं। मैंने विचार किया कि दोनों कथनों में कितना अंतर है और वह बोले भगवान का घर बोला तो अपने से कोई नकारात्मक कार्य नहीं होते और हमेशा सद विचारों से ओत प्रोत रहते हैं। बाद में मजाकिया लिहाज में बोले लोग मृत्यु उपरांत भगवान के घर जाते हैं, परंतु हम तो जीते जी ही भगवान के घर का आनंद ले रहे हैं। यह वाक्य ही जैसे भगवान ने दिया कोई प्रसाद ही है। भगवान ने ही मुझे उनको घर छोड़ने की प्रेरणा दी। घर भगवान का और हम उनके घर में रहते हैं, यह वाक्य बहुत दिनों तक मेरे दिमाग में घूमता रहा। सही में कितने अलग विचार थे। हमको उपरोक्त प्रसंग से प्रेरित होकर अगर हम इस पर अमल करेंगे तो हमारे और आने वाली पीढ़ियों के विचार भी वैसे ही होंगे। अच्छे कार्य का परम सब जब से भी करो वही नई सुबह है।
0: अति सुंदर संदेश जो बबली जी आपने रखे कि सर्वप्रथम कि एक देखो जब शादी होता है ना, पति पत्नी का शादी होते हैं तो जीवन कितना शुरू अच्छा लगता है और फिर बाद में बच्चे आ जाते हैं तो और भी क्या कहते हैं उसे कि फ्रुख्त लकलीफ़ हो जाता है ना। पर समय आने के बाद, समय आने पर और सब जा कर के बच्चे जब समय पे बड़े हो जाते हैं तो फिर पंछी की तरह उड़ जाते हैं।
2: सही बात।
0: और उड़ जाते हैं तो ये होता है कि दिवाली के माता पिता अकेल दिया जलाते हैं, ऐसा हो जाता है। और ये बात हो जाता है कि हमें भी इस बात पे ध्यान देना है कि हमारे माता है, हमारे पिता है, आजकल तो हम सभी के पास हो गया है ये फोन को क्या कहते हैं शांता जी, इसको बोलते हैं स्मार्टफोन ना, तो कम से कम स्मार्टफोन द्वारा उनसे बात कर सकते हैं, शायद थोड़ा दूर होगा पर हमें उन्हें उन पर ध्यान देना। और ये संदेश जो आपने रखे कि बूढ़ा व्यक्ति यानी कि वृद्ध व्यक्ति ये संदेश दिया कि हम भगवान के घर में रहते हैं और हम क्या कहते हैं,
2: हम लोग कहते हैं कि भगवान हमारे घर में रहते हैं।
0: किसी को कहे भाई चलो सत्संग चलते हैं, मंदिर या कहीं भी सत्संग हो रहा है तो बोले कहाँ जाए, ठंडा मौसम है।
2: सबसे बड़ी बात कहेंगे समय नहीं है।
0: समय तो हाँ ये भी हो जाता है। शांता आपके पास समय होता है? हर वक्त समय। राजेंद्र जी जिसके पास तो समय का कमताई फिर भी वो समय बना करके यहाँ हम लोग के साथ रहते हैं।
2: कहते हैं किसी चीज के लिए समय हो चाहे ना हो, सत्संग के लिए समय जरूर निकालना चाहिए।
3: अगर हम कहें कि हमें समय नहीं, तो अगर हम कहें कि हम समय नहीं हमारे पास तो हम नहीं होंगे।
0: तो हम नहीं होंगे। सही बात। राजेंद्र जी और क्या संदेश है? क्यों ना हम एक पहले एक सुंदर सा और गीत की ओर बढ़ते
1: जरूर,
0: क्योंकि जो पिटारा जो लेकर
1: शांता जी का
0: भारी भारी लगा लग रहा था।
1: हाँ और गीत के जो बोल हैं कि तुम ही मेरे मंदिर
3: उसी के धुन
1: श्याम बाबा की धुन पे बहुत ही अच्छा भजन जो शांता जी के पिटारा से निकलता है वो तो खास होता ही है, लेकिन और भी खास हो जाता है जब भजन के माध्यम से होता है। तो सुनते हैं।

0: संभालो कन्हैया, आप संभालो कन्हैया, बहुत ही जो सुंदर फिल्मी तर्ज में गाना जो गाया है उसका कोई धुन तो फिल्मी है लेकिन भजन के माध्यम से संदेश जो है एकदम दिल को छूने वाला है। तो बात करते हैं जो हमारा आज विषय है उसकी ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। श्याम यानी एक श्याम प्रेमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और श्याम प्रेमी यानी जो भगवान के प्रेमी होते हैं, श्याम यानी कृष्ण, तो जो प्रेमी होते हैं उसके, वो अपनी ज़िंदगी की उस चीज़ से जब ये संदेश लोग सुनेंगे तो अपनी ज़िंदगी की जो सोच है यानी जो अच्छी सोच है वो एकदम बदल जाएगी। तो जो हिम्मत है जो लोगों पे वो सुनेंगे और बदलने की कोशिश करेंगे यानी अच्छी तरफ जाने की कोशिश भी करेंगे। किस्मत वाला ही सुधरता है और नहीं तो कौन सुधरता है आज के युग में, इसलिए किस्मत बहुत ज़रूरी है। आखिर आज श्याम से बात हो ही गई, थोड़ी गलतफहमी थी वो दूर हो गई। मैंने पूछा बाबा ये क्या हाल कर दिया, अपने प्रेमियों का बुरा हाल कर दिया, दीदार नहीं कर पा रहे मिलकर तेरे नाम का भजन, कीर्तन भी नहीं कर पा रहे हैं, निराश निशान क्या चढ़ाए भोग भी हम तुम्हें नहीं लगा पा रहे हैं, बहुत मन करता है लगाने को जोर जोर से तेरे नाम का जय जयकार, वो भी नहीं लगा पा रहे हैं, आप भी मंदिर में पट बंद करके बैठे कीर्तन करने के लिए नहीं हो सकते इकट्ठे, आप करो कुछ तो इस समस्या का समाधान, तेरे प्रेमी लगा सके तेरे चरणों में ध्यान। पहले श्याम मंद मंद मुस्काए, एक व्यक्ति ने, एक जो श्याम के प्रेमी थे उन्होंने इस प्रकार का जब भजन किया तो श्याम यानी कृष्ण मंद मंद मुस्काए, मुझे तो वो पहले से ही ज़्यादा खुश नज़र आई। श्याम मुस्का कर बोली तुम तो बहुत भोले हो, बात तुम्हें मैं सारी बतलाऊंगा, थोड़ा ध्यान देना ये पहले कहना चलूंगा, फिर एक एक करके सारी बात बताऊंगा। पट मैंने अपने दरबार के लिए उनकी वजह से बंद, जो कहते थे कुछ भी हो जाए, मुझे 11 पर खाटू जाने से न कोई रोक पाए, हम तो 6 महीने पहले ही सारी टिकट बनवाई, पहले कहते थे बाबा बुलाते हैं, अब कहने लगे हम जाते हैं, मेरे दर की मर्यादा भूलने लगे थे, मेरे दर खाटों की तुलना मकबरों से करने लगे थे, यानी भगवान जो खाटू श्याम है उनकी तुलना मकबरा यानी जो
1: मकबरा बोले तो
0: जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा हुमायूं का मकबरा,
1: हुमायूं का
0: तो मकबरा के मकबरा जैसे
1: वो लाल किले के पीछे,
0: हाँ मकबरा जैसे तुलना करने लगे थे मंदिरों की, इस प्रकार से जो बात आ रही है। दर्शनों के लिए नहीं अपनी फ्रेंड को लेकर घूमने पिकनिक मनाने मेरे धाम में आने लगे थे, मुँह में लेकर पान गुटका दर्शनों को आने लगे थे, निशान और श्याम बणी बिना सोचे समझे बिना शुद्धता बिन भागती भाव से सिर्फ दिखाई को वो चढ़ाने लगे थे, 2-4 बार आगे बैठ देकर रुपया करके दर्शन खुद को बड़ा भक्त बताने लगे थे, मेरे ही सेवकों के

पर चला जाता, बाबा का श्रृंगार कब तक होगा, मुझे बॉक्स में बंद करके लाने वाली उसको अंदाजा बताता। फिर दो चार बड़े प्रेमी आते, मेरे को सजाने को हुक्म सुनाते, कहीं तो कोई पर्दा भी न लगाता, मेरे जब श्रृंगार होता तब तक पांच सात जल्दी करो बहुत टाइम लग दिया लगा दिया, पब्लिक आनी शुरू हो गई, कहते और चले जाते, मेरा श्रृंगार पूरा हुआ ये ऐलान हो गया। फिर होती पूजा की तैयारी, पंडित जी पूजा करवाने को तैयार हैं, लेकिन पूजा करवाने वाला जोड़ा अभी तक फरार है, कोई कुछ नहीं कह सकता, रुपया मोटा ले रखा। पूजा का जोड़ा आया, पंडित जी से जल्दी जल्दी पूजा को निपटाया, जोत की तैयारी हो गई, जोत आने में पल भर की देरी हो गई, सब कहने लगे, बाबा नाराज हो गया, कान पकड़ो अरदास लगाओ 501 रुपया चढ़ाओ। भक्त जी थोड़ी कपूर डाली, जोत आ गई, मेरी जय जयकार होने लगी, जोत लेने वालों की लाइन लगने लगी। ये जो कविता है, ये कविता रूप में आज जो संदेश है, तो जो लोग समझ पा रहे होंगे और न समझे तो यहाँ तार कर सके और पूछ सके कि ये कौन रकम का भाषा तुम बतियाए लहराज। तो कविता रूप में जो लोग जानते हैं समझ रहे हैं, बबली जी तो पूरा समझ ही रही है, संजय जी भी समझ रहे हैं, तो और जिसको नहीं समझ आ रहा तो पूछ सकते हैं। जानकारी रिश्तेदार निभाने लगी, मंडल वाले नए नए कुर्ते पहन, बड़ी बड़ी बिल्ली लगा पटके पहन कर आने लगी, मेरे दर्शन की बात पहले 56 भोग के कूपन मांगने लगी, कीर्तन की शुरुआत हुई, गणेश वंदना से शुरुआत हुई, हनुमान जी की भी बात हुई, मेरे नाम का भी गुणगान शुरू हुआ, छोटे से बड़ा सिंगार आना शुरू हुआ, कुछ नेता भी आए, कुछ बड़े महाराज भी बुलाए, फूल पत्तियाँ उड़ाते हुए उनको मेरे दरबार ले आए, मोटे मोटे फूलों के हार उनको पहनाए, सोपा सजा उनको मेरे दरबार बिठाया, और मेरी तरफ पीठ करके उनको बिठाया, एक को सजा गुरुजी कह रहे हैं, एक को सब गुरुजी कह रहे थे, मुझे ज़्यादा तो उनकी सेवा कर रहे थे, अचानक न जाने उनको क्या हुआ, जोर जोर से गर्दन हिलाने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसने मोर छड़ी जोर से घुमाई, मैंने सोचा ये मेरे दरबार में मेरे सामने कौन सी शक्ति आई, सबका उसकी ओर ध्यान हुआ, बाबा आया बड़ा बाबा आया का शोर हुआ, मैं समझा मुझको याद किया, लेकिन सब कोई उस ढोंगी के चरणों में लंबा लेट हुआ, वो लगा मेरे चढ़ावे को खजाना कहकर बांटने, चमचे लगे गुरुजी के चरणों को चाटने, खैर वो अपनी करने की भोगेगा, मुझे मेरे पंडाल में आने का तर्स तुरंत याद आया, मैंने सोचा सारा कीर्तन मेरे नाम से हो रहा, मोटा मोटा चंदा मेरे नाम से मेरे प्रेमियों इकट्ठा हो रहा, मुझे ही भूल सबका स्वागत जोरदार हो रहा, खैर छोड़ो सिंगर छोटे माहौल बनाने लगे, कुछ भोजन तो कुछ अपने पसंद के सिंगार सुनने आने लगे, पंडाल में भीड़ बढ़ने लगी, मंडल वालों की हलचल होने लगी, स्नैक्स बहुत खा लिया, भोजन की तैयारी करने लगी, बाबा को भोग लगा दो कुछ ही कहने लगी, भोग की थाली लेकर आ गई, सिंगार के भजन भोग के गवाओं ये कहने लगी, अग्नि मुख है भोग ज्योति में लगाने लगी, मेरे मन भी थोड़ा खुश हुआ, बच्चों ने पिता को याद किया, फिर इत्र की बरसात हुई, जोत में इत्र डालने लगी, मैं ये सोच में पड़ गया इनको क्या हुआ, क्या ये सब इस इत्र के पीते हैं, अगर नहीं तो क्या अपने अग्निमुख से उड़ेलते हैं, खुद के शरीर पर डलते ही जलन होती है, मेरे मुख में डालते वक्त सोचा क्या होगा, बच्चे हैं या सोच भूल गया, फिर थोड़ी कीर्तन में ध्यान दिया, मैं सज धर कर बैठा हूँ, मुझे ये गुमान हुआ प्रेमी मेरे मुझे ही निहारेंगे, ये ध्यान हुआ, मेरे नाम का जय जयकार हुआ, 56 भोग देकर डिब्बे कीर्तन में लड़कियों को फंसाते, कीर्तन में सिंगार भजन कोई पूरा न गाता, दो चार लाइन सुनता फिर दूसरा आता, वो भजन कब झूठे किस्से कहानी सुनता, उससे बड़ा सिंगर आता यानी गाने गाने वाला, वो चटकारेदार बातें सुनाकर कभी चीखता कभी चिल्लाता, कीर्तन में भाव भक्ति को भुला
युद्ध भूमि में जैसा माहौल बनाता।

0: हुई। इस प्रकार से जो है आज का जो कविता का कविता से श्याम के बारे में बातचीत चली, तो मुझे लगता कि बहुत सारे लोगों ने वो समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे तार के माध्यम से समझ सकते हैं। संजय जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं?
1: जरूर जरूर, अति सुंदर और संदेश जो आपने रखे राजेंद्र जी, और ये बात हो जाता है कि कविता के माध्यम से आज आपने ये संदेश को रखे। और ये जरूर कहना चाहूँगा कि जीवन के किसी के प्रति की गई भलाई व्यर्थ नहीं जाता है ना। जीवन में किसी के प्रति की गई भलाई व्यर्थ नहीं जाता है, वह कब किस रूप में आपके पास लौट कर आएगी ये सिर्फ ईश्वर जानते हैं। तो हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे, और गीत के बाद फिर हम सब फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
0: हाँ, तो बढ़ते हैं गीत की तरफ। जया किशोरी जी का जो भजन है बहुत ही सुंदर है, और उस सुंदरता के भजन उन्होंने गाया हुआ बड़ा अच्छा है।

0: think? अब हमने चोर को पकड़ लिया।
1: चलो
0: चलो
1: चलो भागो जल्दी।
0: कहानी बनना है ना स्कूल में,

0: जया किशोरी जी ने और ये सुंदर सा भजन हम सबके लिए गीत के रूप में और रखे। और शांता जी, जैसे कि अभी राजेंद्र जी ने वो कविता के रूप में हम सबको ये संदेश सुनाए ना, तो कविता किस, व्हाट इज कविता? ओके, थोड़ा नीदरलैंड्स में तो सुनाओ। तो
1: कविता जैसे मेरे ख्याल से तो हमने तो उसका रिसर्च नहीं की, पर जो रैम होते हैं एक दूसरे से, एक लाइन से दूसरा लाइन पे जो एक जैसे रैम जाए के होते हैं वो उसको कविता कहते हैं। और जब हम देखें तो हमारे जो चालीसा भी है तो वो भी जाकर वैसे ही रैम होता है, और चौपाई भी जो है तो वैसे जाके जैसे शुरू होता है वैसे जाकर दूसरा चौपाई में वैसे ही अंत होता है।
2: अच्छा
0: शांता जी, यानी कि रैमा, देखो अब इस पे जब बात हो जाता है ना, जैसे भारत देश में फिल्म बनते कितने और कितने गाना वहाँ लिखा जाता है, कोई कोई ये कोई 6,500 गाना लिख चुके, कितने उससे भी ज्यादा लिख चुके गाना, तो वो सब रैमा होना चाहिए।
1: हाँ, तब तो करेगा सुंदरता भी आएगा ना,
0: उसमें सुंदरता आ जाता। बबली जी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने कभी कुछ कविता लिखे या नहीं लिखा अभी तक?
2: नहीं नहीं, मैंने कभी कविता नहीं लिखी, सुनी जरूर है, पढ़ी जरूर है, लेकिन लिखी नहीं।
0: पर शांता, शेर शायरी में जो होलांत में और रेडियो स्टेशन से चलता है, तो लोग कहते हैं कि ना सिर्फ आजकल आप गीत और गाते हैं और शेर शायरी में सबसे ज्यादा आप ही गान करते हैं।
2: हाँ जी, मैंने भी सुना है शांता जी बहुत अच्छी शेर व शायरी करते हैं और अपने से लिखते भी हैं।
0: अपने से भी लिखते भी आप?
2: ये चीज हर कोई नहीं कर सकता, ये भगवान की देन है। कोई कोई कविता लिखता है, मेरी हर कोई सिंगर बन जाता, कवि बन जाता, सब नहीं बन पाते।
0: तो शांता जी, इसमें आपके कैसे ये कला है, आपसे कैसे, कुछ बताइए इसके बारे में।
1: अभी तो जैसे बबली जी ने कहा, ये तो भगवान के देन ही भी है।
0: और आप ऐसे ही लिखते रहते हैं, हम सबके सभी आकाशवाणी द्वारा लगभग 188 देशों तक ये कार्यक्रम को जो चलाया जाता है ना।
2: हाँ जी,
1: वो तो है। हाँ,
0: और हम सभी सुनते हैं और हम लोग के भी अच्छा लगता है, सुनने वालों भी। और इसमें भी ये बात, अभी एक श्रीमती जी ने टेलीफोन पे आए और उन्होंने कह रहे थे कि जो आपने जिस प्रकार से और कहते हैं संदेश रूप में, तो अच्छा लगता है सुनने को लिए।
1: तो इसी बात पे एक शेर शायरी हो जाए।
2: हाँ जी,
0: तो इसी बात पे एक शेर शायरी हो जाए, तो इसमें
2: ये भी कोई पूछने की बात है शांता जी?
0: क्यों, माइक आपका तो ऑन है।
1: कहते ना कि नेकी और पूछ।
2: हाँ, सही बात।
1: हाँ, तो कविता ऐसे सुनिए कि हो जाती है गलती, हो जाती है गलती, क्योंकि इंसान है हम, माफ कर देना, माफ कर देना, क्योंकि दिल से बड़े नादान है हम।
2: वाह वाह शांता जी, बहुत अच्छा।
0: क्योंकि दिल से बड़े नादान है हम,
1: तो देखना आप इसमें कैसे रैम होते हैं ना, कि इंसान है हम और नादान है हम।
2: सही बात, इंसान और नादान मिल गया। तो
1: हाँ, तो ये था एक छोटी सी कविता शेर शायरी,
0: एक छोटी सी झलक और
2: शेर शायरी।
0: बबली जी, आप भी कुछ सुनाने वाले थे और मैं देख रहा हूँ कि आपके पास हो गया है।
2: हाँ जी,
0: तो आप भी कुछ सुना ही दीजिए हम सबको, ताकि हम सबके समय पे भी ध्यान देना।
2: हाँ जी,
0: है।
2: जरूर, मेरी तरफ से प्रेरणा जो मैं सुनाने जा रही हूँ।
0: प्रेरणा?
2: हाँ जी,
0: प्रेरणा
2: मीन्स
0: रोशिन का बेटी का नाम?
2: नहीं नहीं, हाँ वो नाम भी होता है प्रेरणा। प्रेरणा
0: हाँ जी,
2: ना ना, इसका मतलब है कि सबक, हम हर किसी सीखना।
1: हाँ,
2: हम हर किसी चीज से कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो इंसान हों।
1: हाँ,
2: हाँ जी, तो संसार में दो प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं शांता जी।
1: जी,
2: पहले अपना फल स्वयं दे देते हैं, जैसे आम, अमरूद, केला, और दूसरे होते हैं जो अपना फल छिपा कर रखते हैं, जैसे आलू। हाँ, अदरक, प्याज,
1: जमीन में जो है।
2: हाँ जी, जो फल अपने आप दे देते हैं उन वृक्षों को मनुष्य व प्रकृति दोनों सुरक्षित रखते हैं, और ऐसे वृक्ष फिर से बारंबार फल देने के लिए तैयार रहते हैं। किंतु जो अपना फल छिपा कर रखते हैं वह जड़ सहित खोद दिए जाते हैं, उनका अस्तित्व फल के साथ ही खत्म हो जाता है। हाँ जी,
0: जैसे आलू और प्याज आदि, वो यही मालक होते हैं ना।
2: हाँ जी, और वो तभी खत्म हो जाते हैं अगर उनको जमीन में से निकाल लो तो।
3: हाँ। वो जो छुपा के अपना रखता है। हाँ। इसमें काफी गहराई वाला संदेश है।
4: बहुत गहराई वाला संदेश बबली जी ने जो दिया है कि कुछ तो अपने फल दिखा के रखते हैं, कुछ छुपा के रखते हैं।
2: हाँ जी,
4: तो जो दिखाने वाले फल है वो तो एकदम कोई भी खा सकता है, लेकिन छुपाने वाला फल तो जो लगाया है वही खा पाएगा, क्योंकि उसको क्या पता चलेगा औरों को कहाँ छुपा रखा है।
2: हाँ जी, ठीक इसी प्रकार मानवता को प्राप्त भी होने वाले फल जैसे धन, विद्या व शक्ति भी कल्याण के कार्य में उपयोग होने से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, तथा वह महान आत्मा इस लोक व परलोक दोनों में सम्मानित होती है। वहीं दूसरी ओर जो मनुष्य अपनी विद्या, धन व शक्ति को अपने स्वार्थ निहित छिपा कर रखते हैं व उपयोग करते हैं, वह कर्म के फल बीज सहित नष्ट हो जाते हैं।
3: तो राजेंद्र जी, इस बात बबली जी ने ऐसा संदेश सुनाया कि मेरा बस ये हो जाता कि राजेंद्र ये तो बिल्कुल आप पे निर्भर है।
4: हाँ।
3: आप कभी आइंडहोफन में लेस देते हो तो कभी अमस्टरडम में लेस देते हो तो कभी यहाँ मंदिर में देते हो तो कभी लुंडन में देते हो, इस प्रकार से आप लगे रहते हो।
4: कभी तो हाँ, लेकिन अभी जो वर्ल्ड योग इंस्टीट्यूट का जो इंस्टीट्यूट है वो तो पेपनवैक में है, लेकिन अभी बाबा जी से बात हुआ कि हम लोग उसको यहीं जो आर्य समाज मंदिर के बगल में जनवरी के बाद बनेगा तो हम लोगों का ज्वाइंट वेंचर रहेगा और वहाँ भी रहेगा इस प्रकार का कार्यक्रम।
3: तो यहाँ भी बड़ी चीज होने वाला,
4: बड़ी चीज होने वाला,
3: जबकि आप लगातार हाँ, लगे हाँ। हुए हैं और हमारे सभी सुनने वालों भी आपका इंतजार में लगे रहते हैं कि कब ये दिन ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम आएगा और आप हम सबके अपना संदेश सुनाएंगे
4: जी।
3: और बबली जी का जो ये फल वाला संदेश, ये बड़ा इसको क्या कहे, धमाकेदार या मजेदार या स्वादिष्टदार।
4: हाँ, बहुत मजेदार।
3: हाँ, क्योंकि बड़ा गुप्त वाला बात हुआ ना, जो छुपा छुपा कर रखते तो वो बस एक ही दान के लिए, जो जैसे एप्पल होता वो ऋतु फल होता ना राजेंद्र जी।
4: हाँ,
3: ऋतुओं में जैसे आम आदि, आम फलों का राजा आम, अमरूद आदि, तो ये हर बार और देते रहते खाना, यानी कि हम सबको फल। और इसी प्रकार से हम मनुष्य के लिए ये संदेश भी है, अपना और ज्ञान अपना और जो बांटते रहे एक दूसरे के साथ, और हम इसी प्रकार से और जा करके पका हुआ फल बन करके रहेंगे।
4: हाँ।
3: तो राजेंद्र जी, क्यों ना एक दूसरा गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर समय का खेल निराला।
4: भोले बाबा शरण में तुम्हारी, इस तरफ बढ़ते हैं, समय का खेल तो निराला है ही।

भोले बाबा शरण में तुम्हारी। तो जैसे ही हमारा लागी छुटेना का समय होता है तो पता चलता है कि हमारा जो समय है वो बढ़ रहा है आगे, तो क्यों ना सब लोगों को सुना दिया जाए कि लागी छुटेना अब तो सनम।

0: अब हम लोगों का समय जो है इजाजत नहीं दे रहा है, तो बबली जी सबसे पहले इजाजत लेगी सब लोगों से।
1: सत्य सूर्य की तरह होता है, जो अधिक समय के लिए ना तो छुप सकता है और ना ही रुक सकता है। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार
0: जी।

0: कहते हैं कि डर से मत डर, डर से मत डर बल्कि कुछ अलग कर, डर से मत डर कुछ अलग कर। तो हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ सुनने वालों कि आपने ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में हिस्सा दी और साथ देने के लिए हम आपको भी बहुत से धन्यवाद कहती हूँ। स्वीकार कीजिए सेविका शांता के भी प्यार भरीश नमस्कार।
1: दूर हूँ फिर भी दिल के करीब निशाना है तेरा। हम लोग रेडियो में यहाँ बैठते हैं फाउन रेडियो में और लोग अपने अपने घर पे या गाड़ी में सुनते हैं, दूर रहें लेकिन दिल का निशाना यानी हम लोगों से जुड़े रहते हैं दिल से, तभी तो हमारी बात को वहाँ तक सुनते हैं। तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगली बार फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय कुछ नया कार्यक्रम लेके। तब तक के लिए सबको नमस्कार।

0: जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। ये कार्यक्रम जो हम सब चलाए आज के, जिसमें भाग लिए शांता खेमाई जी, बबली आसरा जी, हमारे पैनल के पीछे भाई राजेंद्र सिंह जी, और मैं हूँ आपका सेवक संजय। और यही कहना चाहूँगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को एक शुभ दिवस। नमस्कार।
1: हाँ सर।

0: ये कितने का है ना?
1: ये कितने का है?
2: कितना सोना के बाद हम सुनेंगे

मलानी ट्रांस ये गीत जो हमने यहाँ से सुने, सुने वालों कहने के तो मेरा दिल एक है, कहने के तो मेरा दिल एक है, लेकिन जिसको दिल दिया है वो हजारों में एक है। मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम, मेरी सुकून का दूसरा नाम हो तुम। इस बार है दारू पी के डांस, चलो मिलकर सुने।

कि वोई वोई वोई ये दारू पी के डांस करे। मैं कहती हूँ सिर्फ गीत पे रह जा तो अच्छा है कि और आप डांस भी कर सकते हो बगैर दारू पिए। जो इंसान आपको खुश रख सकता है, जो इंसान आपको खुश रख सकता है उससे ज़्यादा अच्छा आपके लिए कोई नहीं हो सकता। इस बार सुनेंगे बैंग बैंग।

सब सुपर हिट गीत आप सुनते हैं सुनने वालों, आपका फोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। और कहते हैं दिखने में वो बहुत गरीब थी, दिखने में वो बहुत गरीब थी साहब, पर उसकी हंसी किसी शहजादी से कम नहीं थी। मुझे तू चाहिए, तेरा साथ चाहिए, जिसे थाम कर मैं पूरी जिंदगी बिता दूं, वो वाला हाथ चाहिए। इस बार हम सुनेंगे

रूपी के डांस, ये सब गीत हमने सुने हैं। और अब की बार देखे तो पानी वाला डांस ये भी होता है, ये मुझे पता नहीं था, पर ये गीत जो है या जरूर से हम अभी मिलकर सुनेंगे। कि और कहते हैं कि प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, प्यार नहीं वो जो दुनिया को दिखाया जाए, प्यार वो है जो दिल से निभाया जाए। क्या समझे? और दिल से दिल मिले या ना मिले, पर हाथ को मिलाना ज़रूरी है भी। ये नहीं कि आपको किसी से प्यार हो या तो वो उनको भी आपसे प्यार हो, ये ज़रूरी नहीं, पर दोस्ती होकर दोस्ती बनाए और आगे बढ़े, ये भी एक तरफ एक प्यार भी होता है। तो यहाँ से सुनेंगे हमने जैसे कहा पानी वाला डांस, ये गीत के

0: पूल में नहाकर तुम और भी नमकीन हो गई है। तो ये था पानी वाला डांस, और इस बार हम आपको लेकर चलते हैं और जरूर से आप सुनेंगे टोनी कक्कर जी की आवाज़ में। पर उससे पहले ये कहूँगी कि अच्छा लिखना ही शानदार नहीं होता, अच्छा लिखना ही शानदार नहीं होता, बल्कि पढ़ने वाले भी समझदार होना चाहिए।
1: Thank you.

अंग्रेजी आते हैं कम ये सुनाए न मरली का तोनी ककर जी ने, और कहते हैं कि सुनो जब तुम हंसती हो ना तब और भी हसीन लगती हो, मोहब्बत तो हमेशा तुझसे ही रहेगी चाहे तुम नाराज रहो चाहे नज़र अंदाज करो, पर मोहब्बत आप ही

0: छोड़ो ना, मुझे अब पकड़ा है छोड़ो ना।
1: फाहोन रेडियो पे जिस पे आप चूने सुने वालों, आपको तमाम खुशियां मिले। जहाँ जैसे भी रहो, जरूर से मुस्कुराते रहना।

हैंगओवर फिल्म किक से सलमान खान की आवाज में आपने भी सुने। इस बार है आपको लेकर चलते हैं, साथ में मिलकर और झूमेंगे सुनेंगे ये मेरा दिल। सुनिधि चौहान जी की आवाज में, फिल्म का नाम दोन। हाँ, अमिताभ बच्चन वाला दोन नहीं बल्कि

ये रिमिक्स सुनिधि चौहान के गाए हुए है दोन, जिसमें शाहरुख खान और करीना कपूर अपना कला दिखाए है। पल के हम सुनते हैं आशा भोसले जी की आवाज़ में।

क्या खूब फरमाए कि अगर तुम साथ हो तो धीरे धीरे गम जो है वो भी फिसल जाता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सौ गड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थ इसका है, हालात चाहे जैसे भी हो, हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। हालात जैसे भी हो, हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एक ही दिन 100 घड़ा पानी किसी पेड़ में डाल दे, तब भी वो पेड़ में फल समय आने पर ही लेगा। आप जुड़े हैं फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो से, मेरे आप सभी को बहुत सारे प्यार मिले।

स्वीट स्वीट स्वीट स्वीट रोमांटिक सॉन्ग आपके लिए यहाँ से चला दिया जाता है। रिश्ते के पहचान, मेरे प्यारे सुनने वालों, रिश्ते के पहचान सुनिएगा। लोग कहते हैं कि सिर्फ एक गलती से, गलत फैमिली से अच्छा से अच्छा रिश्ता तोड़ देती है। गौर से सुनिए, लोग कहते हैं कि सिर्फ एक गलती से, यानी कि एक गलत फैमिली से अच्छा रिश्ता तोड़ देते हैं। एक गलत फैमिली से अच्छा रिश्ता टूट जाता है, तो फिर आप सब बताइए कि जो रिश्ता एक गलत फैमिली से टूट गया, वो रिश्ता अच्छा कहाँ से हुआ? आप ही तो बताइए कि जो रिश्ता एक गलत फैमिली से टूट जाए, वो रिश्ता कहाँ अच्छा हुआ? इसका मतलब है कि वो रिश्ता मौका ढूंढ रहा था सिर्फ एक गलती के लिए, जो नहीं होना चाहिए। रिश्ता सच्चा और अच्छा हो तो जो हजार गलतियां के बाद भी टिका रहे, बना रहे। रिश्ता सच्चा और अच्छा तो वो होता है जो हजार गलतियों के बाद भी टिका रहे, बने रहे। ये मेरे सुनने वालों कि रिश्ता सच्चा और अच्छा वो होता है जो हजार गलतियों के बाद भी टिका रहे, बना रहे।

सुंदर साहब गीत जो यहाँ से हमने श्रवण की है मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में। हम अक्सर सुनते हैं कि कलयुग आ गया है, कलयुग का समय चल रहा है, तो प्रश्न उठता है ये कलयुग लाया कौन, ये कलयुग लाया कौन मेरे दोस्तों। लोग कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, पर लाया कौन ये सवाल उठता है। स्त्री ज्यादा तौर पे स्त्री अपना शर्म भूल गए, पुरुष अपना संस्कार भूल गया, गुरु अपना धर्म, नेता अपना कर्म, नेता अपना कर्म, और तो और इंसान अपनी इंसानियत भूल गए। तो आप बताओ कलयुग लाया कौन। ये सच में एक सोचनीय वाला बात है कि कलयुग लाया कौन।

ओ मोरे रामा, अजब तेरी दुनिया। रफी जी की आवाज में यहाँ से हमने श्रवण कर लिए। जीवन के कुछ नियमों जो जीवन में उतार सके, जीवन के कुछ नियम जो हम अपने जीवन में उतार सके तो जरूर से उतारे। और वो हम यहाँ से एकाध जो है उसको बता देती हूँ। मेहनत से पीछा हटाना नहीं, जरूर हमेशा मेहनत करना, जरूर आगे बढ़ेंगे। मेहनत से पीछा हटाना नहीं मेरे दोस्तों। बदलने वाला दोस्त बनाना नहीं। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ जाना नहीं। अगर दुख आए तो घबराना नहीं। मुस्कुराने की आदत कभी छोड़ना नहीं। सदा मुस्कुराते रहे। आंखें बंद करके दूसरों पर विश्वास करना नहीं मेरे दोस्तों। आंख बंद कर दूसरों पर विश्वास मत करना। सत्य पर रूठे जाए उसे मनाना नहीं, और जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं। सरल से बात यह है।

रफी जी की आवाज में यहाँ से हमने एक बार फिर श्रवण की है। मेरे प्यारे दोस्तों, दूर दूर से आप श्रवण कर रहे फावन हिंदुस्तानी रेडियो को, और आपको हम यहाँ से दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। कल की चिंता छोड़िए यारो, जी हाँ, कल की चिंता छोड़िए, आज में ही जी लो, क्योंकि जिंदगी का जिंदगी से दूर होने में वक्त नहीं लगता। छल कपट और पाप उतना ही करना मेरे दोस्तों, छल कपट और पाप उतना ही करना चाहिए जितना भोगने की शक्ति हो, क्योंकि मेरे दोस्तों कर्म किसी का भी नहीं छोड़ते, कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते।

तेरा मस्त मगन लहराए, सुंदर सा रोमांटिक गीत आपके लिए पेश किया जाता है। द एनख एख्त फाउन जिस पर आप चुने, दूर दूर से आप सुन रहे सुनने वालों, व्हाट्सएप पे बरह आता है और हम यहाँ से आपको भी दिल से धन्यवाद कर रही हूँ। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, मेरे दोस्त जो भी कमाया यही रह जाना है, कर ले कुछ अच्छे कर्म, कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरा जाना है। ये लाइन भी बहुत अच्छा है, ज़रूर से सुने कि रोने से तो आंसू भी पराया हो जाता है, रोने से भी आंसू पराया हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से, जी मेरे दोस्तों, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। इंसानियत दिल में होते हैं, हैसियत में नहीं, ऊपर वाला कर्म देखता है।

अरिजीत सिंह से हाँ यहाँ से हाँ सुने हम कि दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू। हाँ दिल भी है जो मानता नहीं पर मोहब्बत करने चल जाता है। अभिमान अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आप कुछ किया है। यही फर्क है अभिमान और सम्मान में। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। यही अंतर होता है अभिमान में और सम्मान में। ये दो लाइन भी बहुत सुंदर है। सृष्टि और दृष्टि। सृष्टि कितनी भी बदल जाए फिर भी हम सुखी नहीं हो सकते। सृष्टि कितनी भी बदल जाए फिर भी हम सुखी नहीं हो सकते पर दृष्टि जरा सी बदल जाए तो हम सुखी हो सकते हैं।

जिंदगी का सफ़र भी अजीब है मेरे दोस्तों, कि जिंदगी का सफ़र भी अजीब है, बिना कुछ लिए आता है, हर चीज़ के लिए लड़ता है और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाता है।

कबीरा फुल सॉन्ग, फिल्म का नाम ये जवानी है दीवानी। उस फिल्म में रणधीर कपूर जो सुपुत्र है नीतू सिंह, ऋषि कपूर का सुपुत्र है रणधीर कपूर, दीपिका पादुकोण इसमें जो अपना कलाकार दिखाए है। दर्द दर्द मेरे दोस्तों, दर्द वही देता है जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं। दर्द वही देता है जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं। गैर गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर माफ़ी मांग लिया करते हैं। बड़ा कठिन बात है ना कि दर्द वही देता है जिन्हें हम अपना हक देते हैं, अपना समझते हैं। दर्द वही देता है जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं। गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर माफ़ी मांग लेता है। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथों में होता है। जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगता। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगती। तो आप भी बड़े हैं, आप भी समझदार हैं, तो आप जरूर से अपना समझ से समझें।

भाई बहन की आवाज की मिले हो तुम बड़े नसीबों से। नेहा कक्कर, टोनी कक्कर, ये भाई बहन जो सुना दी हमको।

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 2 2 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं फिर आप सबके लिए प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ, जिसका नाम है स्वप्न विज्ञान, यानी सपने। सपने तो हम सबको ज़रूर आते हैं, कभी अच्छे सपने तो कभी बुरे सपने। अच्छे सपनों में हम खुश होते हैं, बुरे सपनों में हम डर जाते हैं। सपने भी बहुत प्रकार के होते हैं सुनने वालों। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि कुछ पूर्वाभासी तथा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्वप्न, कि जिन लोगों को सपने आए उसका उनको पूर्वाभ्यास पहले से पता चल गया था और उनके सपने इतने ऐतिहासिक बन गए कि दुनिया भर में मशहूर हो गए। ऐसे ख्वाब यानी सपने उन्हीं व्यक्तियों को आते हैं जिनका जीवन कुछ आध्यात्मिक रहा हो अथवा जिनमें सत्व गुण की प्रधानता रही हो। इनका समाधान फ्रायड के सिद्धांतों से कदापि नहीं हो सकता। उन स्वप्नों में बड़ी विचित्रता होती है जिनके द्वारा बहुत से व्यक्तियों को भावी घटनाओं का पूर्व ज्ञान हो चुका है तथा आज भी हो रहा है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कम से कम एक दो बार ही ऐसे प्रसंग अवश्य आते हैं कि उसके सपने सच होते हैं। इसके कुछ ही उदाहरण दिए जा रहे हैं। सुनने वालों, ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं कि जिनको सपने आने से पहले ही उसका पता चल जाए कि सपने क्यों आएगा और सपने में क्या क्या चीज़ें उनको दिखाई देंगी।

महाराज हरिश्चंद्र का स्वप्न। भारत के बहुत बड़े राजा हुए हैं जिनका नाम हरिश्चंद्र था और वो सच के देवता कहलाते थे। सुनने वालों, उन्होंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। महाराजा हरिश्चंद्र ने सपने में ही महर्षि विश्वामित्र को अपना संपूर्ण साम्राज्य दान कर दिया था और अगले ही दिन उन्होंने वास्तव में अपना राज्य त्याग दिया। सुनने वालों, महाराजा हरिश्चंद्र जी को ये सपना आया कि इन्होंने अब विश्वामित्र जी को सारा राज्य दान कर दिया और उन्होंने अगले दिन वही सच कर दिखाया और अपना सारा राज्य दान में दे दिया और उसे त्याग दिया। अभिनेता चंद्र मोहन का रेस का घोड़ा। एक प्रसिद्ध अभिनेता स्वर्गीय चंद्र मोहन का घोड़ा रेस में दौड़ने वाला था, परंतु रात को ही चंद्र मोहन को स्वप्न आया कि उनका घोड़ा दौड़ते दौड़ते खड्डे में गिरकर मर गया है और सचमुच उनका घोड़ा ठीक उसी स्थान पर मर गया जहां उन्होंने स्वप्न देखा था। सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। बाइबल में बुद्धिमान का स्वप्न। बाइबल में बालक यीशु ने जन्म पर उन्हें देखने आ रहे बुद्धिमान लोगों में से एक को सपने में हेरोड की तरफ ना जाने का निर्देश मिलता है और वह दूसरे रास्ते से अपने देश लौट जाते हैं। जोसेफ के सपने में एक देवदूत उसे बच्चे और पत्नी के साथ मिस्र भाग जाने का निर्देश देते हैं। इन स्वप्नों के कारण यीशु के प्राणों की रक्षा हो सकी।

वासुदेव का स्वप्न। मथुरा के कारावास से भगवान श्री कृष्ण को बचाकर नंदगांव ब्रिज में पहुंचाने में सपनों का योगदान कुछ कम ना था। उसी रात माया रूपनी देवी वासुदेव के स्वप्न में आकर उन्हें ऐसा करने का आदेश ना देती तो सत्यवादी वासुदेव शायद ऐसा कभी नहीं करते।

लेखकों की रचनाओं की प्रेरणा। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के कई गीतों के भाव स्वप्न में ही प्राप्त हुए थे और बाणभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक कादंबरी भी उनके स्वप्न की ही देन है। सुनने वालों, आप सब जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर बहुत बड़े कवि लेखक हुए हैं जो बंगाल के थे। तो उनको जितने भी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी कादंबरी, और उनका उन्हें ज्ञान स्वप्न में ही पहले हो गया था।

जूलियस सीजर की पत्नी का स्वप्न। शेक्सपियर ने अपने नाटक जूलियस सीजर में एक स्वप्न का जिक्र किया है। रोमान साम्राज्य के ऐतिहासिक लेखक प्लूटक के अनुसार सीजर की पत्नी कानिलिया ने एक रात स्वप्न देखा कि उसके पति सीजर की हत्या हो गई है तथा विरोधियों का षड्यंत्र सफल हो गया है। अगले दिन उसने अपने पति से अनुरोध किया कि आज वह दरबार ना जाएं। उसी दिन दरबार में उनकी हत्या हो गई।

सुनने वालों, आज मैं आपको अलग अलग लोगों के वृत्तांत सपनों में सुना रही हूँ जिनको सपने आए और वह हकीकत में वो सच हुए। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। JW डने का स्वप्न। JW डने ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में अपने एक स्वप्न का वर्णन किया है। वह एक बार स्वप्न में एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा था जो एक द्वीप था और जो ज्वालामुखी के खतरे में पड़ने वाला था क्योंकि उसकी दरारों से भाप उफन कर निकल रहे थे। उसके मन में वहाँ के 4000 निवासियों को बचाने की लालसा जागृत हुई। उसने उसकी यथार्थ संभव चेष्टा की और जितनों को बचाया जा सकता था उसने बचाया। कुछ ही दिनों बाद डने ने डेली टेलीग्राफ नामक पत्रिका में माउंट पीले ज्वालामुखी के विस्फोट की चर्चा पड़ी जिसमें पश्चिम द्वीप समूह में मार्टिनी के द्वीप के सेंट पियर नगर में 40,000 व्यक्तियों को उनकी प्राण रक्षा के लिए जहाज़ों द्वारा उन्हें स्थानांतरित करने का जिक्र था।

भूतपूर्व राष्ट्रपति कनेडी की दुर्घटना। कनेडी को अपने साथ होने वाली दुर्घटना का अभ्यास स्वपन द्वारा एक दिन पहले ही हो गया था। वह टेक्सास की यात्रा पर गए और गोली लग जाने के फलस्वरूप उनकी यह लीला समाप्त हो गई।

यह है फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। आप सब सुन रहे हैं फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डफरिन की प्राण रक्षा। यह सन 1885 यानी आख्तिन फाइफन ताख्तक में भारतवर्ष के वायसराय थे। एक बार आयरलैंड में उन्होंने अपने किसी मित्र के घर पर स्वप्न देखा कि जंगल में जाते हुए किसी व्यक्ति के करहाने की आवाज़ सुनी, यानी रोने की आवाज़ सुनी, जो पीठ पर बड़ा सा संदूक लादकर ले जा रहा था, जो इतना विकराल तथा विभक्त था कि वह डरकर जहां के तहां ठहर गया। डफरिन ने जोर से पूछा, इस बॉक्स में क्या है? इतने पर ही वह व्यक्ति अदृश्य हो गया और डर के कारण उनकी नींद खुल गई। कुछ समय पश्चात उनको फ्रांस में राजदूत के रूप में जाना पड़ा। एक दिन ब्रांड होटल में किसी राजनीतिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब वह ऊपर की मंजिल में जाने वाली लिफ्ट के पास थे तो वह देखकर चकित रह गए कि स्वप्न में देखा गया विभत्स चेहरे का व्यक्ति ही उस लिफ्ट को चला रहा है। वह होटल के मैनेजर के पास गए और उस लिफ्ट मैन के बारे में पूछताछ करने लगे, तो इतने में ही वह लिफ्ट मकान की पांचवी मंजिल तक पहुंचकर टूट कर गिर पड़ी और उसमें सवार सभी मारे गए। स्वप्न के कारण उनकी प्राण रक्षा हो सकी।

अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। युद्ध भूमि में अर्जुन का स्वप्न। माँ भारत में जब अभिमन्यु मारा गया तो उसके पिता अर्जुन ने आवेश में आकर यानी गुस्से में आकर दूसरे दिन सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ का वध करने की कठोर प्रतिज्ञा की। अपने शयन कक्ष में जाकर यानी अपने स्लाप कामर में जाकर श्री कृष्ण के आदेशानुसार महर्षि व्यास द्वारा बताए गए शिव मंत्र का जाप करता हुआ वह निद्रा देवी के अधीन हो गया। निद्रावस्था में अर्जुन ने एक स्वप्न में देखा। स्वप्न में श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तुम पशुपत नामक सहारक अस्त्र से ही कल जयद्रथ को यम सदन पहुंचा सकते हो, इसलिए मन ही मन में शंकर जी का स्मरण करो। भगवान शंकर की कृपा से उनके भक्त होने के नाते यह शस्त्र तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। श्री कृष्ण के सुझाव के अनुसार अर्जुन ने स्वप्न में ही आचमन किया और शंकर जी का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। स्वप्न में ही अंतरिक्ष में उड़ते रहे। उत्तर दिशा में एक सफ़ेद पर्वत देखा। कुबेर सरोवर के दर्शन हुए जिसमें खिला कमल पुष्प देखा। गंगा तट पर साटिक मणियों के पर्वत थे। मंत्रशर पर्वत देखा। ब्रह्मतुंग एवं अन्य काले पहाड़ देखे। रत्नों से भरा समुंदर देखा। फिर एक पर्वत पर भगवान शंकर के दर्शन हुए। प्रणाम सूक्ति उपरांत अर्जुन की अभिलाषा देखकर हंसते हुए बोले, वत्स पास के सरोवर से धनुष बाण ले आओ। वहां पर दो नागों का परिवर्तन देखकर अर्जुन ने उनसे पशुपात अस्त्र देने की प्रार्थना की। शंकर जी ने अभिदान के साथ पशुपात अस्त्र अर्जुन को प्रदान किया। अर्जुन का वह स्वप्न सिद्ध हुआ।

डूबते जहाज का दृश्य। डॉक्टर मैसन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 29 जनवरी यानी कि नेगन देर तक को कप्तान समुद्र का एक जहाज सिडनी से कोयला भर कर चला। 9 फरवरी को उसमें पानी भरने लगा और वह एक गांव में जा बैठे और एक सप्ताह इसी प्रकार बहते रहने के बाद 16 फरवरी को किसी जहाज ने उन्हें बचा लिया। 9 फरवरी को ही कप्तान की 13 वर्षीय कन्या को स्वप्न आया कि उसके पिता का जहाज डूब गया और उसका पिता फटे कपड़े पहने घर आया है। उसने अपनी माँ को जगाकर स्वप्न सुनाया।

ट्रिलर द्वारा वर्णित स्वप्न। श्री ट्रिलर ने अपनी पुस्तक में एक स्वप्न का वर्णन किया है। इंग्लैंड का प्रसिद्ध जहाज टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर अमेरिका जा रहा था। इंग्लैंड में एक व्यक्ति ने उसका एक टिकट खरीदा। जहाज रवाना होने से 10 दिन पहले उसने एक स्वप्न देखा कि जहाज का एक सिरा ऊंचा उठ गया है और उसके यात्री आसपास तैर रहे हैं। न्यूयॉर्क से कोई तार आने पर उन्हें यह यात्रा स्थगित करनी पड़ गई और टिकट वापस कर दिया। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ और 14 या 16 को डूब गया। सुनने वालों, आप सबको तो पता है कि टाइटैनिक के ऊपर फिल्म भी बनी है।

अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। मेरना ने भावी पति को बचाया। पोलैंड की एक लड़की ने मेरना को एक रात स्वप्न आया कि उसका भावी पति, जो सेना में काम कर रहा था, किसी सुरंग में फंसा है जहाँ मोमबत्ती जल रही है, और वह बार बार मेरना का नाम लेकर पत्थर हटवाने की प्रार्थना कर रहा है। डॉक्टरों ने उसे पागल घोषित कर दिया। पर एक दिन वह एक किले के पास से गुजर रही थी कि एकाएक चिल्लाने लगी कि यही वह स्थान है जहाँ उसका भावी पति फंसा हुआ है। पत्थरों को हटाकर दरवाज़ा निकाला जहाँ से निर्बल मैली कुचैली हालत में एक व्यक्ति घिसट कर बाहर निकला, जो फौजी स्टोर की रखवाली कर रहा था, जहाँ एक गोला गिरा था और वह दब गया तथा खाद्य सामग्री और मोमबत्तियों के सहारे जीवित बना रहा। श्री विष्णु महादेव भट्ट सन 1910 में श्री सावकार के दल में एक क्रांतिकारी थे, और सन 1915 में लोकमान्य तिलक, केसरी और मराठा पत्रों के सहायक संपादक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में 3 स्वप्नों का वर्णन किया है जो इस प्रकार थे।

अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। गणेश गीता का ठीक स्थान, उनके एक मित्र श्री डी के साठे BA BSc, एक अच्छे वैज्ञानिक, सोंगली इंजीनियरिंग कॉलेज में गणेश के सच्चे भगत थे। एक दिन उन्होंने देखा कि स्वप्न में कोई अनजान व्यक्ति उन्हें श्री गोध लेकर के घर से गणेश गीता की रेशमी जिल्द खरीदने लाने को कह रहा है, जो ऊपर के कमरे में अलमारी के दूसरे खाने में तीसरे नंबर पर रखी है। चाहे उन्होंने पुस्तक व्यवसाय छोड़ दिया था, फिर भी पुस्तक वहीं मिली। सुनने वालों कि उन्होंने जो पुस्तक उनको चाहिए थी वो उनके घर की अलमारी के ऊपर ही पड़ी थी और उनको वहीं से मिली। सुनने वालों, ये है आप सबका अपना फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और मैं आपको थोड़ा और आगे बताने की कोशिश करूँगी छींक के बारे में। छींक तो हम सबको आती है और छींक को हम अशुभ भी मानते हैं, वो तो आप सब जानते ही हैं। एक नाक दो छींक काम बने सब ठीक, छींक प्रायः सभी दिशाओं की खराब होती है। सुनने वालों, हमारा नाक एक है लेकिन अपनी छींक महाअशुभ होती है, वो तो आप सब जानते हो। सुनने वालों, अपनी छींक राम बन गए हूँ, सीता हरण तुरंत ही भय हूँ, गौ की छींक मरण का संकेत देती है, कोशिश करने पर भी यदि छींक ना रुके तो मनुष्य जिस काम के लिए जा रहा है उसमें विघ्न अवश्य होगा, फिर भी सम्मुख छींक लड़ाई भरावे, छींक दहानी द्रव्य विनाशे, पीठ पाचली सुख अभिलाषे, बाई छींक धन सदा प्रकाशे, ऊंची छींक कहे जयकारी, नीची छींक होए भयकारी। शराब संधनी सर्दी से होने वाली छींक, बच्चे और बूढ़े की छींक अथवा हट से छींकना निष्फल होता है। कन्या धोबीन रास्व वाला विशेष अशुभ होती है। आसन शयन शौच दान भोजन औषधि सेवन विद्याराम और बीज बोने के समय शुद्ध या विवाह में जाते समय छींक हो तो शुभ फलदायक होती है। सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको सुना रही हूँ छींक के बारे में थोड़ी सी, कि जब हम लोगों को छींक आती है तो हम उसे अशुभ मानते हैं। सुनने वालों देखो ना, हम लोग हिंदुस्तानी हिंदू लोग उसे अशुभ मानते हैं और बकरा लोग उसे शुभ मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने जब आई तो देखा जब छींक आते हैं तो कहते हैं खजोन ताइद। मैंने कहा वो छींक आने पर खजोन ताइद कहते हैं कि तुम ठीक ठाक रहो, तुम्हारी सेहत ठीक हो। और हम जब भारत में थे तो छींक आती थी कहते ओहो कहीं बाहर जा रहे हो, पैर झाड़ के जाओ, जाओ रुक जाओ एक सेकंड के लिए। सुनने वालों, ये सब जो मैं आप सबको बता रही हूँ या सुना रही हूँ, ये सब हमने स्वप्न विज्ञान से निकाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं छींक पर कार्य, कि जब हमें छींक आती है हमें कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और उसका फल क्या है। छींक पर कार्य, गमन करना, कि हम जब कहीं जा रहे हैं घर से निकल के तो कार्य में बाधा, उसका फल मिलता है अगर किसी को छींक आ जाए तो। एक से अधिक छींक, कार्य सरलता से संपन्न, कहते जब एक से ज़्यादा छींक आए तो कार्य शुभ हो जाता है। प्रवासी के बाईं ओर अशुभ है, कार्य करने जाना खरीद में लाभ, धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ विधन, अगर छींक आ जाए हम कुछ धार्मिक कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें बाधा आ जाती है। व्यावसायिक कार्य, कि अगर हम वैसी कुछ कार्य करने बाहर जा रहे हैं तो व्यापार में वृद्धि होती है। नए मकान में प्रवेश स्थगित करें।

आधा। इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या है ही, पर व्यक्ति की हर समस्या का समाधान भी उसके पास ही है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा।

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाउंड के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तैयार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो।

फन होम्स हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 20 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

ये फिल्म जो बनाया गया 1977 में 1977 में बनाया गया फिल्म, एक फिल्म जिसमें बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया जैसे कि विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, प्रवीण भाभी, शबाना आजमी, निरूपा रॉय, प्राण और जीवन।

एक फिल्म जो पिक्चराइज किया गया था जिसमें तीन बच्चे जो बिछड़ जाते हैं और फिर पालन पोषण जो अनेक अनेक संप्रदाय में होता है, एक जो जा कर के पुलिस बनते हैं, दूजा कवाली गाते हैं और तीसरा जो जा कर के बार कीपर बनते हैं। तो उसी फिल्म से एक और गीत हम निकालेंगे और आपके लिए रखने वाले हैं।

शिरडी वाले साई बाबा द फिल्म जो बनाया गया 1987 में, कहा जाता है कि 184 मिनट तक, जिनका रन टाइम यानी कि कुछ 3 घंटा का फिल्म जो जिनका और रिलीज डेट 1987 में हुआ था, उस समय जो ये फिल्म बनाया गया था और जिनका लेखक ख़ास करके कादर खान जी ने और ये फिल्म को फिल्म का राइटर कहलाए है, यानी कि उन्होंने फिल्म को जो डायलॉग से अपना और सजाए है और डायरेक्ट जो किया गया है मनमोहन देसाई के जरिए। सुनो वालो, ये एक ऐसा सुंदर फिल्म जो बनाया गया था उस समय के बात है, जो काफ़ी और चला बॉक्स ऑफिस में और जा करके जिनमें बड़े बड़े एक्टर्स अपना सहयोग दिए। इनमें से सबका अपना अपना होता है, तो हमें जो उस समय का एक्टर हुआ करते थे जीवन, जिनका डायलॉग का और प्राण जो होते थे जो उस समय पे और अपना कला से प्रदर्शन करते थे, तो कितना खूबियां होते थे उसके। हम एक और इसी फिल्म से निकाला गया गीत रखने की कोशिश करेंगे।

अमर अकबर एंथोनी फिल्म से निकाला गया जिसमें मुकरी का रोल भी बड़ा अजीब था, प्यार का दुश्मन बना रहा। और ये सुंदर सा फिल्म जो निकाला गया 1977 1977 में, जो एक सुपर डुपर हिट फिल्म बनी। सुन वालो, हम अगला गीत जो आपके एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हुए एक सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ने वाले हैं।

ये फिल्म डायरेक्ट किया गया मनमोहन देसाई। कादर खान को जो जानते थे, जो परिवार में जिसे वो जुड़ा रहता था, तो उनको कहावत ये है कि अपना जब डायलॉग उनके लिखने के समय आते थे तो वो भारत छोड़कर हांगकांग चले जाते थे। वहाँ वो आराम से अपना डायलॉग्स आदि लिखते थे और फिल्म को और सजाया जाता था। सुनने वालों, ये स्क्रीन प्ले जो किए है वो है प्रयागराज शर्मा जी ने। इस फिल्म में म्यूजिक दिए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, अनंत बख्शी के लिखा हुआ लिरिक्स बाय अनंत बख्शी।

ये फिल्म जो पिक्चराइज किया गया पुष्पा शर्मा जी का स्टोरी, पुष्पा शर्मा जी का स्टोरी आईडी, उनके आइडिया से ये फिल्म को और लिखा गया। जिनमें कुछ कलाकारों अब नहीं है दुनिया में, अगर शायद आप अभी ये फिल्म देखे नहीं होंगे तो मैं कौन होता हो आपके सजेस्ट करने के लिए। यूट्यूब पे आप जरूर देख सकते हैं, कुछ 3 घंटा का फिल्म। इसमें ये सीख हमें मिलते हैं कि शायद हमारे और हम अपने भाइयों के साथ बिछुड़ गए होंगे, बहनों के साथ बिछुड़ गए होंगे। आज वो परिस्थिति आ गया कि शायद एक दूसरे को देखने को और तरसते हैं। तो जरूर इस फिल्म को देखें और इस पे जरूर अपना जो 2 घोड़े होते हैं हमारे दिमाग में, एक का नाम पॉजिटिव और दूसरा का नाम नेगेटिव, उनके इसके बारे में सोचने के अवसर दीजिए। क्योंकि कहा जाता है जिसके आप ज्यादा खुराक देंगे वो ही जीतेगा।

सुनने वाला ये फिल्म याराना से निकाला गया ये सुंदर सा गीत, एक फिल्म जो 1981 में रिलीज हुआ, 1981 में रिलीज हुआ ये फिल्म, जिसमें स्टारिंग अमिताभ बच्चन, अमजद खान, नीतू सिंह, तनुजा और कादर खान अपना कला से प्रदर्शन दिए। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि याराना वही होता है। इस गीत को जब हम चलाते हैं तो हमें भी इस बार को हर बार याद आ जाते हैं कि हमारे पुराने रेडियो का कलेखा जैसे महेंद्र भाई, मित्र मनोज और इसी प्रकार से कितने जो दोस्तों अब साथ में नहीं है, तो जो साथ में है उन्हें हम जरूर याद करें और उनसे मिलते रहे, क्योंकि कहा जाता है हम मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। एक और सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

एक और फिल्म जो फिल्म 1981 में बनाया गया था, नसीब फिल्म से एक सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है।

0: आपने तो कहा था कि
1: ठीक ही तो कहा था। फाइव स्टार होटल में रहता हूँ, भूखों को खाना खिलाता हूँ। ये वो साहब है ना, उन्होंने चिट्ठी दी आपको, रात को खाने पे बुलाया।

सुनने वालों, ये गीत जो निकाला गया फिल्म का नाम नसीब, जो 1981 में रिलीज हुए 1 मई 1981 को, अ बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर हिंदी रोमांटिक म्यूजिकल मूवी जिसका डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी ने बड़े बड़े एक्टरों के साथ और इसमें काम किए, जैसे कि अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, रीना रॉय, किम प्राण, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर।

कहते हैं कि दोस्ती इंतहाम लेते हैं दोस्तों, पर ऐसा ना हो, क्योंकि कहा जाता है कि चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं मिलता, अपने किरदार से इंसान खुद महकता है।

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 6 2 2 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

वक्रतुंडा महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। रूबरू मिलने का मौका नहीं पा रहा, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाउन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए हम सब फिर एक बार उपस्थित हो गए हैं स्टूडियो में, और आज जो कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर, ज्योति का प्रकाश में आज एक विशेष व्यक्ति से हम सब बातचीत करेंगे जो अपने जीवन में बहुत सा सफर किया है। उन्होंने दुनिया के बहुत से देशों में सफर किया है, और खास करके हॉलैंड से उन्होंने अपने गाड़ी से भारत को गए हैं। तो अभी उसके साथ हम सब जुड़ जाएंगे। श्रीमान क्रिस दफरिस उनका नाम है, और उनसे जुड़ जाएंगे। पहले हम उसी गीत की ओर बढ़ेंगे जो हर सप्ताह हम सब रखते हैं, हरिओम सरन का, तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तो उसके बाद में हम सब क्रिस जी के साथ जुड़ जाएंगे।